107.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी की एफएम प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। आज गुरुवार है, ज्येष्ठ मास की 21वीं तिथि, शक संवत 1948, तदनुसार 11 जून 2026। प्रातः के 5:55 हो चुके हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

मन की चंचलता में संसार है और मन की स्थिरता में परमात्मा। परमात्मा की आराधना भक्ति संगीत की साधना कार्यक्रम पुष्पांजलि।

गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु यानी कि ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु अर्थात संरक्षक और महेश्वर अर्थात शिव संहारक की दिव्य त्रिमूर्ति का प्रतीक है। गुरु केवल एक मानव शिक्षक नहीं बल्कि उन्हें परम ब्रह्म का साक्षात अवतार माना जाता है, जो सभी द्वैत से परे परम वास्तविकता है। इसीलिए गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा और कृतज्ञता सदैव बनी रहे, तभी आप उसके ज्ञान से आपका जीवन प्रकाशित होगा। इसी मंगल कामना के साथ आइए प्रारंभ करें भक्तिमय कार्यक्रम पुष्पांजलि। आकांक्षा आपके साथ 100.7 FM रेनबो पर। पुष्पांजलि का प्रथम पुष्प अर्पित है प्रथमेश्वर श्री गणेश के चरणों में।

सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी रोग मुक्त रहे और सभी का जीवन मंगलमय बने। कोई भी प्राणी इस जग में दुख का भागी ना बने। माधव कहते हैं कि जब मनुष्य सिर्फ स्वयं की चीजों, स्वयं के रिश्तों के लिए प्रेम का भाव रखता है, दया का भाव रखता है, तो वास्तव में वह प्रेम होता है। परंतु यदि मनुष्य संसार की प्रत्येक

जीव प्रत्येक चीज के लिए दया और प्रेम का भाव रखता है तो वह करुणा कहलाती है। और यही करुणा संपूर्ण जगत में संतुलन बनाए रखती है। जब हम सभी का कल्याण चाहेंगे तभी तो इस जग का कल्याण होगा, हमारा कल्याण होगा।

दीपक चाहे मिट्टी का हो या सोने का, महत्व इस बात का है कि वह अंधकार में प्रकाश कितना देता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का महत्व उसके कुल, धन या रूप से नहीं, बल्कि उसके चरित्र, कर्म और ईश्वर के प्रति उसके शुद्ध भाव से होता है।

बड़े भाग पाइप सत्संगा, विनही प्रयास हो ही भव भंगा। महान भाग्य या बड़े पुण्यों के उदय होने पर ही

बड़े भाग पाए सत्संगा, विनही प्रयास हो ही भव भंगा। महान भाग्य या बड़े पुण्यों के उदय होने पर ही सत्संग की प्राप्ति होती है, और इस सत्संग के प्रभाव से बिना किसी कठिन प्रयास के ही मनुष्य के सभी सांसारिक कष्टों का नाश हो जाता है। उसे मानसिक शांति मिलती है, अर्थात यदि जीवन में कभी भी सत्संग का अवसर मिले तो उसे ईश्वर की विशेष कृपा समझकर स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यही वह सरल मार्ग है जो हमें मानसिक शांति और परम गति की ओर ले जाता है।

कोई शबरी खिलाए तो वो झूठे भेर खा लेते हैं, कोई साथी हो संकट में तो वो बाली से टकराए, वो जिनके नाम का पत्थर समंदर पार कर जाए, वो जिनके तप से संसार में संध्या सवेरे हैं, वही करुणानिधि, वही राम हम सबके हैं, वही राम हम सबके हैं।

परमार्थ के मार्ग पर चलते हुए कभी भी ये चिंता न करना कि आपके साथ कौन खड़ा है। जब आप धर्म और सत्य के पथ पर होते हैं, तब स्वयं ईश्वर आपके साथ अदृश्य रूप से चल रहे होते हैं। भरोसा रखिए, विश्वास रखिए उनकी योजनाओं पर, आपकी इच्छा से कहीं अधिक बेहतर होंगी।

भजन रूपी पुष्प आप अर्पित कर रहे हैं आकांक्षा के साथ कार्यक्रम पुष्पांजलि में। ईश्वर के अंश होने के कारण हम परम आनंद को पाने के अधिकारी हैं, चेतना के उस दिव्य स्तर तक पहुंचने के अधिकारी हैं, जहां विशुद्ध प्रेम, सुख, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता और शांति है। संपूर्ण प्रकृति भी तभी हमारे लिए सुखदायी हो जाती है। इस स्थिति को केवल अनुभव किया जा सकता है। यह स्थूल नहीं है, अति सूक्ष्म है। परम की अनुभूति अंतर को अनंत सुख से ओतप्रोत कर देती है। और परम तक ले जाने वाला कोई सद्गुरु ही हो सकता है। सर्व भाव से उस सच्चिदानंद के शरण में जाने की विधि वही सिखाते हैं। हम देही नहीं हैं, देही है, जिसे शास्त्रों में जीव कहते हैं। जीव परमात्मा का अंश है, उसके लक्षण भी वही हैं जो परमात्मा के हैं। वह भी शाश्वत, चेतन और आनंद स्वरूप है। प्रभु कृपा सदैव हम पर बनी रहे, इसी मनोकामना के साथ मुझे यानी कि आकांक्षा को दीजिए कार्यक्रम पुष्पांजलि से अनुमति।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: सुबह के 7 बज चुके हैं। 102.2 FM पर आप कनेक्ट हो चुके हैं FM रेनबो कानपुर के साथ।

वेलकम वंस अगेन ऑन गुड मॉर्निंग शो एंड टुडेज प्रोग्राम हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं द थॉट ऑफ द डे सोशल मीडिया हाइलाइट्स अ ग्लिम्प्स इनटू हिस्ट्री नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज सिटी अपडेट्स स्पोर्ट्स हेडलाइन एंड द वेदर फोरकास्ट सो बी विद अस एंड एंजॉय गुड मॉर्निंग कानपुर

So before we continue the show, जान लेते हैं what is coming up in today's program. 8:30 पर आप इंजॉय करेंगे ओल्ड मेलोडीज प्रोग्राम सुरों की पुरानी महफिल में. 9:00 आपके लिए हम लाएंगे प्रोग्राम रस बहार. नौ बजकर 45 में विविधा में आज का अट्रैक्शन लोक रंग और 11:00 हम हाजिर होंगे आपका फेवरेट प्रोग्राम हम नवाले कर, जिसमें आज हमारी को होस्ट होंगी आजे निधि. दिन में 3:00 रोज की तरह सुनेंगे आप प्रोग्राम म्यूजिक आर. एंड नाउ वी आर बैक विद गुड मॉर्निंग.

0: की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: Well, you are tuned into Good Morning Kanpur on 102.2 FM Rainbow Kanpur, and I'm your host RJ Lakshmi. And so before we dive into today's update, share karte hain thought of the day. Gautam Buddha ne kaha, if you have to choose between being kind and being right, choose being kind and you will always be right. अगर आपको दयालु होने और सही होने में किसी एक को चुनना हो तो दयालु बने, आप हमेशा ही सही रहेंगे।

और चलिए डालते हैं एक नज़र व्हाट इज ट्रेंडिंग अक्रॉस सोशल मीडिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक्सेंडल पर पोस्ट किया कि जनसेवा ही सुशासन की सबसे बड़ी कसौटी है। विनम्रता, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा के साथ निरंतर कार्य करने वाला व्यक्ति ही जन विश्वास अर्जित कर सकता है। यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने एक्सेंडल पर कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 12 वर्षों के सफलतम कार्यकाल पर समस्त प्रदेशवासियों की तरफ से अनंत शुभकामनाएं। उन्होंने कहा, इस गौरवपूर्ण अवसर पर हम पुनः यह विश्वास व्यक्त करते हैं कि उत्तर प्रदेश आपके प्रेरक नेतृत्व में और सतत मार्गदर्शन में विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण हेतु पूर्ण समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करता रहेगा तथा राष्ट्र निर्माण में अपना सर्वोत्तम योगदान देता रहेगा। और पुलिस कमिश्नरेट कानपुर की तरफ से एक और एक्सेंडल पर शेयर किया गया है मैसेज। आरएसएस सरसंग चालक श्री मोहन भागवत जी के शहर आगमन पर आज दिनांक 11/6/2026 को समय है 12 बजे से 6 बजे तक। सभा में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागी और भीड़ के दृष्टिगत यातायात डाइवर्जन जो होगा वो इस तरह से होगा। उन्होंने इसकी सूचना दी है कि करबला चौराहा से कोई भी वाहन कंपनी भाग चौराहा की तरफ नहीं जा सकेगा। ऐसे वाहन मछुआ रोड मैनावती मार्ग होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे। कंपनी बाग चौराहा से कोई भी वाहन करबला चौराहा की तरफ नहीं जा सकेगा। ऐसे वाहन रावतपुर या थाना नवाबगंज चिड़ियाघर होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे और गंगा बैराज से कोई भी वाहन करबला चौराहा की तरफ नहीं जा सकेगा। ऐसे वाहन एनआरआई सिटी बनियापुरवा यस कोठारी मैनावती मार्ग होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे। सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि वे यातायात नियमों का पालन करें एवं किसी भी असुविधा की स्थिति में ट्रैफिक कंट्रोल हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। नंबर उन्होंने दिया है 9305104340 9454402413। सभी वाहन चालकों से अनुरोध किया है कि सड़क पर चल रही एम्बुलेंस को प्राथमिकता देते हुए उसे तुरंत रास्ता दें। आपकी जागरूकता, आपकी संवेदनशीलता और आपकी त्वरित प्रतिक्रिया किसी के अनमोल जीवन की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

दोस्तों बात कर लेते हैं 11 जून को क्या हुआ, यानी आज के दिन 11 जून 1897 में द ग्रेट फ्रीडम फाइटर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ था। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। 11 जून 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट एस्टैब्लिश हुई और इससे पहले इसे आगरा हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता था। 11 जून 1921 में ब्राज़ील में महिलाओं को इलेक्शन में वोट करने का अधिकार दिया गया और 11 जून 1935 में एडविन आर्मस्ट्रांग ने फर्स्ट टाइम एफएम का प्रसारण किया। जून 1987 को मार्गरेट थैचर 160 ईयर्स में लगातार तीसरी बार ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बनने वाली पहली महिला बनी। और 11 जून 1955 में पहले मैग्नीशियम जेट एयरप्लेन ने उड़ान भरी।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की बढ़ती डिमांड को देखते हुए एनस्केल नॉर्वे के नार्विक में एक ह्यूज डेटा सेंटर एस्टेब्लिश कर रहा है। आर्कटिक सर्कल के पास बन रहा ये प्रोजेक्ट यूरोप के सबसे बड़े एआई डेटा सेंटर्स में एक होगा। भारत और नेपाल के बीच यूपीआई लिंक लॉन्च हुआ। इससे दोनों देशों के लोगों के लिए पैसा ट्रांसफर करना आसान होगा। इसके साथ ही भारत ने नेपाल को 72 हेल्थ फैसिलिटीज और 12 कल्चरल हेरिटेज प्रोजेक्ट्स भी सौंपे। इसके अलावा काठमांडू यूनिवर्सिटी एंड डिजिटल इंडिया भाषणी के बीच समझौता हुआ। और अब लौटते हैं अपने देश में, जहां शिमला के रिज पर इंटरनेशनल समर फेस्टिवल 2026 का आगाज हो गया है। समर फेस्टिवल की सांस्कृतिक संध्या में 320 आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स ने पार्टिसिपेट किया और हिमाचली लोक संस्कृति की शानदार झलक दिखाई।

Listening, good morning Kanpur, and let's zoom in from the global stage. बात करते हैं अपने शहर की amazing updates की, यानी कानपुर cardiology की, जहाँ cardiologist Dr. S.K. Sinha और उनकी टीम ने दुनिया में पहली बार pacemaker वाले मरीजों पर 49 days में ऐसी novel study की है जिससे 60% heart failure patients के इलाज की नई राह खुल गई है। इस स्टडी को ग्लोबल रिकॉग्निशन देते हुए यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी ने भी पब्लिश किया है।

और चलिए आपको लेकर चलते हैं खेल के मैदान में एंड कैच अप विद द लेटेस्ट। बारह जून यानी कल से इंग्लैंड में हो रहा है आगाज विमेंस T20 वर्ल्ड कप का, जिसमें फर्स्ट टाइम 12 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसमें 5 प्लेयर्स ऐसी हैं जो पहली बार T20 वर्ल्ड कप खेलेंगी। एंड क्रिकेट लवर्स के लिए गुड न्यूज, भारतीय दर्शकों के लिए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने 3 T20 मैचों के लिए बदला टाइम। 11 बजे रात को शुरू होने वाले मैच अब 1 घंटे पहले 10 बजे स्टार्ट किए जाएंगे। वन डे सीरीज 14 जुलाई टू 19 जुलाई के बीच खेली जाएगी।

तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, कानपुर में वक्त हो गया है वाइंड अप का, सो कीप स्माइलिंग, स्टे पॉजिटिव एंड मेक टुडे काउंट. लक्ष्मी इज साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, टेक केयर, जय हिंद.

0: साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना एनडीए सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। पश्चिम एशिया संघर्ष में तनाव के बीच अमरीकी सेना ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की और देश से ओलंपिक के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने का आग्रह किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है, विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे।
3: बैठक में देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत करने और अस्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इन चर्चाओं में शासन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, अभिसरण, साझेदारी और डेटा आधारित प्रणालियों सहित प्रमुख सहायक तत्वों का उपयोग करते हुए एक कार्यान्वयन प्रारूप तैयार करने पर बल दिया जाएगा।

0: इसके साथ ही अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक परिणामों पर नजर रखने के लिए एक तंत्र भी स्थापित किया जाएगा, जिससे जवाबदेही और मापन योग्य प्रभाव सुनिश्चित हो सके। समावेशी मानव विकास पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ राज्य के दृष्टिकोणों को संरेखित करने पर विशेष बल दिया जाएगा। नीति आयोग की शासी परिषद 26 से 28 दिसंबर 2025 के दौरान आयोजित मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है।
2: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
1: भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित विश्वभर के नेताओं से मिले बधाई संदेशों के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा करेंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
4: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है वो हमारा फैमिली 5 है जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं, जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
3: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। देश भर में अब तक लगभग 10,82,00,000 लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले

0: इम्तियाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
1: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने लॉन्च करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
0: पारंपरिक ईंधन जैसे कोयले और लकड़ी के धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10 करोड़ 55 लाख से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, जो जन कल्याण और समावेशी विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। एक रिपोर्ट।
4: भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई। आईसीसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आर्थिक गतिविधियों को लेकर नया उत्साह और सकारात्मक माहौल दिखाई दे रहा है। इससे राज्य के आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश के लिए एक आकर्षक केंद्र के रूप में उसकी पहचान और मजबूत होगी। भारतीय वाणिज्य मंडल की स्थापना वर्ष 1925 में उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला और अन्य व्यापारिक नेताओं ने की थी। यह देश के सबसे पुराने उद्योग संगठनों में से एक है। समाचार से कृष्णकांत।
2: पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमरीका ने कल ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। अमरीकी सेना ने बताया कि ये हमले ईरान की लगातार आक्रामक गतिविधियों के जवाब में किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
5: अमरीकी हमलों का ये दूसरा दिन है। इससे कुछ घंटे पहले ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि बातचीत में गतिरोध के लिए ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने कहा कि ईरान धमकी और दबाव के बीच किसी तरह की बातचीत नहीं करेगा। इस बीच ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि ओरमुज जलडमरू मध्य को सभी जहाजों और तेल टैंकरों के लिए बंद कर दिया गया है। संघर्ष के कारण वैश्विक तेल बाजार पर भी असर पड़ा है। कच्चे तेल की कीमत $93 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
2: मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ वर्षा का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में NDA सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा।
6: फीफा विश्व कप का यह अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीमें भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीमें शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। अन्य 45 टीमों ने 2 वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में चार चार टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीमें सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेंगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और

0: 31 नॉकआउट मुकाबले होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं चिराग झा।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
2: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर आयोजित अभिनंदन बैठक में उनका बयान दिया है। कांग्रेस ने अपनी नाकामियों का ठीकरा हिंदुओं पर फोड़ा। लोकसत्य ने श्री मोदी का बयान दिया है, भारत अब आत्मनिर्भर सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र बन रहा है। झटका शीर्षक से हिंदुस्तान लिखता है, मार्च के बाद 20% तक महंगा हुआ जरूरत का सामान, रसोई का खर्च करीब 1,000 रूपये तक बढ़ा। दैनिक भास्कर ने नीट पेपर लीक मामले में एनटीए अधिकारियों की संसदीय समिति से मुलाकात को सुर्खी बनाया है। संसदीय समिति के सामने एनटीए ने रखा सुरक्षा प्लान, समिति ने कहा हमें अमेरिका और चीन जैसे देशों से सीखना चाहिए। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में पीओके की पीड़ा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है इस्लामाबाद ने पीओके में निर्दोष नागरिकों के साथ जैसी बर्बरता दिखाई है उससे क्षेत्र की वास्तविक स्थिति फिर से दुनिया के सामने उजागर हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर में मानवाधिकारों की दुहाई देने वाले पाकिस्तान का पीओके में रवैया उसके दोहरे मापदंडों की ही कलई खोलता है। दैनिक ट्रिब्यून की खबर है 30 साल पहले लापता पर्वतारोही के अवशेष भारत लाएगी आईटीबीपी। माउंट एवरेस्ट पर 1996 के दुर्भाग्यपूर्ण अभियान के दौरान खो गए थे लांस नायक दोर्जे मोरूप। नवभारत टाइम्स ने फीफा विश्व कप को अहमियत दी है। फुटबॉल का महासंग्राम आज से 10 दावेदार 10 सुपरस्टार। राजस्थान पत्रिका ने WHO की रिपोर्ट प्रकाशित की है, खराब खान पान से हर रोज 42 लाख बीमार, 4100 मौत।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना एनडीए सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। और प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू चेयर 11th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग इन न्यू दिल्ली टुडे। Prime Minister says lifting more than 25 crore people out of poverty during past 12 years of NDA government shows that its policies are correct and moving in right direction. Indian Chamber of Commerce plans to channel investments worth 1 lakh crore rupees into West Bengal. IMD forecasts heavy rainfall in places over northeast, sub-Himalayan West Bengal, Odisha, Kerala and Mahi today. US military strikes multiple targets in Iran in latest escalation of tensions in West Asia. And Prime Minister Modi praises performance of Indian sportspersons and urges the nation to set ambitious targets for Olympics. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will chair the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan Cultural Centre in New Delhi today. In line with the Prime Minister's vision of Team India for a Viksit Bharat, this year's theme, Inclusive Human Development for Viksit Bharat 2047, focuses on the well-being and development of every Indian, regardless of age, region, gender or socio-economic background. The Governing Council meeting will deliberate on the approach to realize this vision and translate it into concrete, measurable outcomes for every citizen across the country. A report from our correspondent.
4: Measures for promoting entrepreneurship, enhancing skilling and creating sustainable employment opportunities across the country will also be deliberated upon in the meeting. The discussions will further focus on collectively charting an implementation roadmap that leverages key enablers including governance, digital public infrastructure, convergence, partnerships and data-driven systems alongside a structured mechanism to track short, medium and long-term outcomes ensuring accountability and measurable impact. A key thrust will be on aligning state visions with the national vision on inclusive human development, reinforcing a unified and collaborative approach towards equitable and sustainable growth. The Governing Council of Niti Aayog will also focus on the recommendations of 5th National Conference of Chief Secretaries.

वक्त हो चुका है 8:30 यानी सुरों की पुरानी महफिल प्रोग्राम का, जहां हम आपको लेकर चलते हैं उस सुनहरे दौर में जब गीत केवल सुने नहीं जाते थे बल्कि दिलों में बस जाया करते थे। तो लीजिए पेश है सुरों की पुरानी महफिल। फिल्म का नाम फकीरा, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें, गीतकार और संगीतकार रवींद्र जैन।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम आ गले लग जा, और किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें, गीतकार साहिर लुधियानवी और संगीतकार आर डी बर्मन।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम शुरू की पुरानी महफिल, और चलिए अब आपको सुनाते हैं एक और खूबसूरत गीत। फिल्म का नाम पराया धन, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें, म्यूजिक आर डी बर्मन का, लिरिसिस्ट आनंद बख्शी साहब।

इजे सुनिए प्रोग्राम का अगला गाना, फिल्म का नाम कुर्बानी, मनहर उदास की आवाज़ें और आनंद कुमार की आवाज़ें, म्यूजिक कल्याण जी आनंद जी का, लिरिक्स इंदीवर के।

दोस्तों आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुरों की पुरानी महफिल और अब आप तक पहुंच रहा है एक और खूबसूरत सा गाना। फिल्म का नाम श्याम तेरे कितने नाम। आवाज है जसपाल सिंह की, म्यूजिक रविंद्र जैन का और गीतकार अनजान।

इसी उम्मीद के साथ कि सुरों की पुरानी महफिल ने आपकी यादों को फिर से महका दिया होगा। अब मुझे यानी लक्ष्मी को दीजिए इजाज़त, कुछ ही पलों में हम फिर हाजिर होते हैं रसबहार प्रोग्राम के साथ। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, एफएम रेनबो कानपुर पर एक बार फिर आप सभी का तहे दिल से स्वागत। रसबहार प्रोग्राम के साथ हाजिर है आपकी रेडियो दोस्त लक्ष्मी। आज रसबहार में बातें एक ऐसे रस की जिसकी खुशबू हम सबकी ज़िंदगी में खुली है। खुशियां, कामयाबी, बरकत और सुकून। इन अ सेंटेंस, हाउ कैन वी मेक लाइफ मोर ब्यूटीफुल एंड जॉयफुल।

दोस्तों, ज़िंदगी एक ऐसा सफ़र है जिसमें कभी धूप तो कभी छाँव, कभी खुशियों की बहार तो कभी चुनौतियाँ। हर दिन हर सुबह अपने साथ एक नया पैगाम लेकर आती है। वेल, वी ऑफन सर्च फॉर हैप्पीनेस इन बिग अचीवमेंट्स एंड मटीरियल सक्सेस। वहीं ज़िंदगी की खूबसूरती उन छोटे छोटे लम्हों में बसती है जिन्हें हम अक्सर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नज़रअंदाज कर देते हैं।

दोस्तों, सुबह की ताज़ी हवा, अपनों के चेहरों पर स्माइल, पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स, दोस्तों की महफिल और बच्चों की खिलखिलाहट, यही तो वो नेमते हैं जो हमारी ज़िंदगी को रोशन करती रहती हैं। एवरी मॉर्निंग टेक ए मोमेंट टू अप्रिशिएट द ब्लेसिंग्स यू ऑलरेडी हैव, योर फैमिली, योर हेल्थ, योर लव्ड वंस एंड द अपॉर्चुनिटी लाइफ हैज गिवन यू। हमारी भारतीय संस्कृति में रसों का बड़ा महत्व है, कभी प्रेम का रस, कभी करुणा का, तो कभी शांति का रस। आज के रस बहार में हम खोल रहे हैं जिंदगी के खुशी, सार्थकता और सुकून के रस को, जिसे डिफाइन करता हुआ एक और गाना पहुंच रहा है आप तक।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: पर आप सुन रहे हैं FM रेनबो कानपुर। प्रोग्राम चल रहा है रस बहार और प्रोग्राम में आपके साथ है लक्ष्मी। और दोस्तों, लाइफ तब और खूबसूरत बन जाती है जब हम शिकायतों से ज्यादा शुक्रगुजारी करना सीख लेते हैं। हम अक्सर उन चीजों के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास है ही नहीं, और उन अनमोल चीज़ों को भूल जाते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी हैं पहले से। ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए कहीं ना कहीं नज़रिया बदलने की ज़रूरत होती है। जब हम हर सिचुएशन में कुछ अच्छा सीखने लगते हैं तो मुश्किलें भी हमें कुछ नया सिखाकर गुजर जाती हैं।

102.2 FM पर आप कनेक्ट हैं FM रेनबो कानपुर के साथ। आज के रस बाहर में बातें हो रही हैं जीवन में खुशी, सुकून और मोहब्बत का रस खोलने की, मेरे यानी लक्ष्मी के साथ।

those to helping others is another beautiful way to enrich your life. Because खुशी पाने का सबसे आसान तरीका है किसी और की खुशी की वजह बन जाना. अगर किसी के चेहरे पर स्माइल लाने का मौका मिले ना, तो उसे हरगिज मत जाने दीजिएगा. बिकॉज एक मीठा सा लफ्ज, एक छोटी सी हेल्प और जरा सी सिंपैथी किसी का पूरा दिन रोशन कर सकती है.

पता है दोस्तों, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मुश्किल दिन भी गुजर जाते हैं और अच्छे दिन भी। इसलिए हर लम्हे को जी भर कर जिए। हर दिन कुछ पल खुद के लिए निकालिए, कोई किताब पढ़िए, पौधों से बातें कीजिए, अपने बच्चों के साथ खेलिए या फिर अपने बुजुर्गों के पास बैठकर उनकी कहानियाँ सुनिए। बिकॉज हैप्पीनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज़ अ वे ऑफ लिविंग। क्योंकि अंत में ये खूबसूरत यादें ही हमारी ज़िंदगी में बची रह जाती हैं। इन्हीं खूबसूरत ख्यालों के साथ बढ़ते हैं एक और ब्यूटीफुल ट्रैक की तरफ।

दोस्तों, अपने जीवन को बहुत ज़्यादा उलझाइए मत। लाइफ को सार्थक बनाने के लिए बहुत सारे पैसे होना ज़रूरी नहीं, बल्कि छोटी छोटी अच्छी आदतों को कल्टीवेट करना ज़रूरी है। जो आपके पास है उसके लिए कृतज्ञ होना। स्पेंड सम टाइम विद नेचर, नर्चरिंग रिलेशनशिप्स एंड नेवर स्टॉप लर्निंग एंड ग्रोइंग। लाइक अच्छा साहित्य पढ़ना, लर्न अ न्यू स्किल एंड नेवर फॉरगेट द पावर ऑफ स्माइल। स्माइल कॉस्ट नथिंग एक्चुअली, बट आपके चेहरे की मुस्कुराहट आपके चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर देती है।

दोस्तों, लाइफ में सब कुछ अच्छा चलता रहे उसमें सबसे अहम रोल होता है हमारे स्वास्थ्य का। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है ना, तो आप ज़िंदगी के हर क्षण को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। अपनी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ की केयर करना फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। सो ईट हेल्दी फूड, स्टे एक्टिव, गेट इनफ रेस्ट एंड मेक टाइम फॉर रिलैक्सेशन। योगा क्लासेस ज्वाइन करिए, जो आपकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकता है। एंड फाइनल सॉन्ग इज कमिंग अप ऑन योर रेडियो सेट।

सो गाइस स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव एंड अपनी ज़िंदगी को हर दिन थोड़ा और खूबसूरत बनाते रहिए। इसी के साथ अपनी दोस्त लक्ष्मी को रस बाहर प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। कुछ ही पलों में लेकर हाजिर होते हैं लोक रंग।

0: के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: 102.2 FM पर आप सुन रहे हैं FM रेनबो कानपुर। विविधा के अंतर्गत लीजिए सुनिए कार्यक्रम लोक रंग। आइए सुनते हैं मालिनी अवस्थी की आवाज में कार्यक्रम का पहला लोकगीत।

0: इसी के साथ लोक रंग कार्यक्रम संपन्न होता है। नमस्कार दोस्तों, अगला प्रसारण आप सुनेंगे हमारे लखनऊ केंद्र से।
1: एक आवश्यक सूचना सुनिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के लिए नामांकन आरंभ हो चुके हैं। ये पुरस्कार वीरता, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले बच्चों को दिए जाते हैं। 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है, इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। इस हेतु नामांकन awards.gov.in पर स्थित राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। पुरस्कारों के लिए

स्वनामांकन और अनुशंसा दोनों पर विचार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर जाएं। एक बार फिर से सुन लीजिए awards.gov.in। सूचना समाप्त हुई।

नमस्कार, सुबह के 10 बजे हैं, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी और एनडीए ने हमेशा राष्ट्र के विकास को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने महिला आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, नागरिकता संशोधन अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता और वन रैंक वन पेंशन जैसे महत्वपूर्ण निर्णय राष्ट्रीय हित में लिए हैं और भविष्य में भी ऐसे साहसिक निर्णय जारी रहेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने कल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया है। प्रदेश में कुल 29.01 लाख मतदाता बढ़ गए हैं। इसके साथ ही अब कुल मतदाताओं की संख्या बढ़कर 12,58,00,000 हो गई है, जबकि 2,03,00,000 नाम काटे गए हैं। मतदाता वृद्धि के मामले में बलिया प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। यहां पर 1,60,376 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश सरकार ने कल वाराणसी में एक बौद्ध मंदिर और अतिथि गृह के निर्माण के लिए भूटान सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग और भूटान के अधिकारियों के बीच समझौता ज्ञापन के अनुसार परियोजना के लिए वाराणसी में 2 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। समझौते पर उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के विशेष सचिव मृदुल चौधरी और भूटान सरकार की उप मिशन प्रमुख और प्रतिनिधि सुश्री ताशी पेल्डेन ने हस्ताक्षर किए। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने भूटान को यह भूमि मात्र 1 रुपए के नाम मात्र किराए पर 30 वर्षों के लिए पट्टे पर दी है। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद आज 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत आ रहे हैं। वे आज बाजार घाट पर गोमती पुनरुद्धार कार्यक्रम में भाग लेंगे। अमरोहा में कल गंगा एक्सप्रेसवे पर एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिससे कार में सवार 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से 3 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं प्रदेश के कई स्थानों पर रात से ही मौसम में बदलाव देखने को मिला है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली, जौनपुर, अंबेडकर नगर के साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश की शामली, सहारनपुर, अमरोहा और आसपास के क्षेत्र में तेज हवा के बाद हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 11 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आई लग गई यार, घुटना गया लगता है।
2: भाई अब मैच का क्या होगा?
1: अब तो डॉक्टर ही बचाए।
3: खेल के दौरान छोटी चोटें कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं लगता, पर चरक हॉस्पिटल के होते हुए टेंशन नहीं।
4: जहां जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट्स आपका रखते हैं पूरा ख्याल।
3: साथ ही जॉइंट प्रिजर्वेशन और पेन रिलीफ के लिए आजमाइए GFC PRP और स्टेम सेल थेरेपी।
4: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल करें 666-4444।
5: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोजे कंडा।

जी हाँ दोस्तों, 10:04 का वक्त हो रहा है और ये वक्त हो चुका है सुपर हिट सॉन्ग्स का, वो प्यारे से म्यूजिकल ट्रैक, सुपर हिट ट्रैक्स जो आप हमेशा सुनते आए हैं और आपकी हैं पसंद। तो एंजॉय कीजिए इस म्यूजिकल ट्रैक को विद योर दिल आरजे निखिल।

enjoy this super hit musical track from the movie Bewafa. 10:09 का वक्त सुपर हिट सॉन्ग्स का ये प्रोग्राम सुनते रहिए FM रेनबो विद्युदल आरजे निखिल.

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
2: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
1: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
4: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
3: पाए पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
4: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
5: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
6: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
5: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
6: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
5: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
6: 8700001-4242।

अगेन वन मोर सुपर हिट म्यूजिकल ट्रैक फ्रॉम मूवी कयामत। 10:37 का वक्त आपके साथ आपका दिल आर्चे निकला। आप सुन रहे हैं 107.7 FM रेनबो। स्टे ट्यून्ड।

0: 10:55 का वक्त एंड अगेन सुपरहिट म्यूजिकल ट्रैक फ्रॉम मूवी सैयारा। तो दोस्तों ये जो टाइम है सुपरहिट प्रोग्राम को वाइंड अप करने का टाइम है, लेकिन ये प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक बजता ही रहेगा जब तक 11 नहीं बजते।
1: बस

0: ऐसे।
1: लेकिन हम आपको बता दें कि 11 बजे न्यूज के बाद हमारा अगला प्रोग्राम आएगा संदेश आपके गीत हमारे, जहां आप हमें संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल ओपन है एंड हमारा ईमेल है fmakashwani@gmail.com। इस पर आप हमें कोई भी प्यारा सा संदेश भेज सकते हैं और हम FM रेनबो के माध्यम से उसे हर जगह पहुंचाएंगे जहां जहां तक आवाज जा रही है रेनबो की। तो अगर आप कोई संदेश किसी को भेजना चाहते हैं, किसी को कहना चाहते हैं, ऑन एयर कुछ कहलवाना चाहते हैं, तो प्लीज हमें जरूर ईमेल करें fmakashwani@gmail.com पर। स्टे ट्यून्ड विद द दिल आरजे निखिल।

0: नमस्कार श्रोताओं, आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम हमनवा में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं हूं आरजे लक्ष्मी और आज हमारे साथ हमारी को होस्ट हैं आरजे निधि।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं आपके साथ आज फिर से हूं और आज हमारी को होस्ट, जैसे उन्होंने बताया, ये लक्ष्मी जी आपके साथ सुबह से थी और काफ़ी फ्रेश लग भी रही हैं और उनके साथ मैं भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ
0: जी। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और इससे पहले बात कर लेते हैं आपसे निधि जी, आप तो इस समय आ रही हैं और मौसम का क्या हाल चाल है बाहर?
1: मौसम का अगर मैं कहूँ तो जैसे लुका छिपी वाला हिसाब हो रहा है आज, थोड़ा सा कभी धूप आ रही है कभी छांव आ रही है और लेकिन आज उतनी तपिश मुझे फील नहीं हुई है, महसूस नहीं हुई है जब मैं आ रही थी यहाँ पर, क्योंकि बीच बीच में थोड़ी सी छांव भी आ रही थी और हवाएं भी थोड़ी सी राहत देने वाली थी, उतनी ज्यादा गर्मी नहीं थी जितनी की हर रोज हो रही है।
0: अर्ली मॉर्निंग थोड़ी सी बारिश भी हो गई थी शायद, हाँ। पता नहीं आपको पता लगा कि नहीं लगा, बारिश हुई थी, बट वो जरा सी जो बारिश होती है वो उल्टा और गर्मी बढ़ा देती है उसको।
1: हाँ, ह्यूमिडिटी ऑफ कोर्स बढ़ जाती है लक्ष्मी जी काफी, लेकिन हाँ आज थोड़ा सा जब आप बाहर निकलते हैं ना, कमरे के अंदर तो आपको लगता है लेकिन जब आप घर से बाहर होते हैं तो थोड़ा सा ठीक महसूस हो रहा था आज कंपैरेटिवली। हाँ,
0: जब मैं मॉर्निंग में आ रही थी तो उस वक्त जो चांद था मॉर्निंग का, वो सुबह 4 बजे वो दिखाई दे रहा था और जैसे ही मैं उसको देखती थी तो वो बादलों के बीच में छुप जाता था, तो लग रहा था कि बारिश होने वाली है, बादल आ रहे हैं धीरे से, आ रहे हैं जा रहे हैं, तो लेकिन खैर पहुँचते पहुँचते स्टूडियो में बारिश हो ही गई। और यहाँ तक कि हम महिलाओं की अगर बात करें निधि जी, तो हम लोग का तो ये होता है कि हम लोग कहीं से भी खुश नहीं हो पाते हैं देखा जाए तो, मतलब चाहे कुछ भी कर दें, अब इतनी तेज गर्मी है तो गर्मी है, तो उसमें भी अब अगर बारिश हो गई है तो वो तो भी मुंह बना ही रहता है कि मतलब बारिश क्यों हो गई, ये कोई टाइम है बारिश होने का, कपड़े नहीं सूख रहे, ये है,
1: मुझे
0: है।
1: क्या लगता है केवल लेडीज की बात नहीं है, ये हम सभी के साथ है और बड़ा ही मतलब कॉमन ह्यूमन फैक्ट है कि जब हमें कहीं निकलना हो और उस समय बारिश हो जाए तो उस समय बारिश बड़ी खलती है,
0: खलती है।
1: और जब हम गर्मी से तप रहे हो उस समय अगर बारिश हो जाए तो हमें बड़ी अच्छी लगती है।
0: खासतौर से महिलाओं की इसलिए बात हमने करी कि महिलाओं के ऊपर जो बहुत सारा काम होता है घर का, तो कभी कुछ सुखाना है, कभी अनाज सुखाना है, कभी कपड़े सुखाने हैं, तो वो जो बार बार एक्स्ट्रा उनका काम बढ़ जाता है उससे वो परेशान हो जाती हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो किसी भी मौसम से अल्टीमेटली हम लोग खुश नहीं रहते हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती है,
1: बहरहाल हम फिर भी जो है लेडीज उसे मैनेज कर लेती हैं। और लक्ष्मी, आज हमारा एक टॉपिक जो है वो इसी पर ही है, सशक्त नारी बेहतर समाज।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है,
1: इसीलिए नारी को सशक्त कहा गया है कि वो हर चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती है, तो मुझे लग रहा है बाकी के टॉपिक्स भी हम बताते चले अपने दोस्तों को।
0: बिल्कुल।
1: अच्छा हाँ, एक चीज और हम कहना चाहेंगे कि एक जो हमारा टॉपिक है और हमारे जो श्रोता अभी अभी जुड़े हुए हैं हमसे, तो हमेशा ही हमें अपनी मेल करते हैं, तो एक टॉपिक हम पहले आपको बता देते हैं कि वो है युवा पीढ़ी में कम होती हुई एकाग्रता, कि हम देख रहे हैं आजकल के जो यंग एडल्ट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा अटेंशन स्पैन की कमी पाई जा रही है, तो इस पर आप अपने विचार अपनी बात हमसे शेयर कर सकते हैं। और हमारा ईमेल आईडी आपको पता ही है, AIRKANSOMEDIA@gmail.com
0: जी,
1: है ना।
0: और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले की, और

0: जो हमारा दूसरा सब्जेक्ट है, दूसरा विषय है, वो है सशक्त नारी बेहतर समाज।
1: बिल्कुल, और इसके बाद एक हमने अभी आपको टॉपिक बता ही दिया, युवा पीढ़ी में कम होती है एकाग्रता, जिस पर आपके हमें विचार चाहिए, और फेसबुक पर भी हम मौजूद हैं आकाशवाणी कानपुर के नाम से, तो अगर आप उसमें भी अपनी हमें बात भेजना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं। साथ ही आज लक्ष्मी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की भी जयंती है, तो हम आज उन्हें भी याद करेंगे अपने प्रोग्राम के जरिए।
0: और ज्ञान विज्ञान का जो सेगमेंट है उसमें हम बात करेंगे लोगों की आंखों का रंग अलग अलग क्यों होता है।
1: बिल्कुल, बड़ा अच्छा सा टॉपिक है, और एक रेसिपी तो हमारी रहती है एंड में, जो कि हमारे कहना चाहिए हमनवा प्रोग्राम का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट
0: इंटरेस्टिंग
1: है,
0: और बहुत खास सेगमेंट है जिसका इंतजार हमारे श्रोताओं को भी रहता है बराबर।
1: तो बिल्कुल, अब मुझे लगता है लक्ष्मी जी बिना देर किए हुए पहले हम एक बढ़िया सा गाना उनके लिए प्ले करते हैं और फिर उसके बाद हम अपनी बातों को जारी करेंगे।

0: और निधि, अगर हम अपने दिल का हाल बताएं ना, तो खेलना जैसे बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। ना जाने कितने खेल थे कि हम लोग देर शाम तक खेलते रहते थे, हमारे मम्मी पापा को पता भी नहीं चलता था कितनी रात तक, मतलब इतने सारे खेल जिनमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता था, बहुत सारे ऐसे इनोवेट हो जाते थे खेल की छोटी छोटी चीज़ों से। और घर में लैंडलाइन फ़ोन हुआ करता था, जिसे बगैर इजाज़त के हम रिसीव भी नहीं करने दिया जाता था, हम लोगों को मना किया जाता था कि नहीं, कोई फ़ोन नहीं उठाएगा, सिर्फ फादर जो हैं घर के वही उठाएंगे फ़ोन, या भैया लोग उठाएंगे। और होमवर्क कंप्लीट जब हो जाता था, मेन सबसे बड़ी चीज़ ये होती थी कि होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद कोई कुछ बोलेगा नहीं, तो फिर कितनी देर खेल सकते हैं। तो उसके पास बस इंतज़ार रहता था भाई सहेलियाँ बुलाने आ जाएँ, क्योंकि एक मौका मिल जाता था कि सहेलियाँ आई हैं तो भेजेंगे भेजेंगे, और हम लोग खेलते थे।
1: भाई आपने जो सीन क्रिएट किया है ना, तो पूरा मुझे अपना बचपना याद आ गया है कि बस इसी तरीके का नज़ारा सभी घरों में मुझे लगता हुआ करता था कि हम जहाँ हमारी, और खास तौर पे जब ये छुट्टियाँ होती थी गर्मी की
0: छुट्टियाँ होती
1: तो
0: थी,
1: हम सुबह से लेके फिर ना हमें धूप सताती थी ना हमें कुछ लगता था, यहाँ तक कि अंधेरा होने तक हम खेलते ही रहते थे। और मतलब बहुत, और इसी बहाने लक्ष्मी हम लोग की बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज हो जाती थी
0: राइट।
1: लेकिन अब आज का अगर हम दौर देखें, आज का जो डिजिटल दौर आ गया है, उसमें बच्चे भी देखिए ज़्यादातर तो अपने उसमें ही बिजी रहते हैं, फ़ोन पर लैपटॉप पर ही उनको सारा गेम वेम सब मिल जाता है। मतलब अगर हम बोलें तो फिजिकल एक्टिविटीज़ के नाम पर उनके पास कुछ भी नहीं, और
0: हाँ फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो है,
1: बिल्कुल ज़ीरो है, और हम लोगों के पास भी इतना वक्त नहीं है। लक्ष्मी जी बिल्कुल आपने ये सब जितनी भी बातें कही हैं वो बिल्कुल हमें अपना बचपन याद आ गया है, और यही सारी बातें होती थी हर घर में कि भाई कितना ही हम
2: बहुत सारा, जब आप खेल खेलते हो बचपन में और धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं लक्ष्मी, तो क्या होता है कि धीरे धीरे हमारा वक्त ख़त्म होने लग जाता है, मतलब हम खेल के लिए उतना वक्त नहीं निकाल पाते हैं ना। तो ये आज इसकी बड़ी कमी है डिजिटल दौर में, जबकि अब सबको पता है कि जो खेल है वो आपकी रचनात्मक लचीलापन और सामाजिक कौशल को विकसित करता है, क्योंकि जीवन भर आप उससे सीखते ही रहते हैं, और एक टीम वर्क जो होता है ना, वो भी भावना हमारे अंदर आती है, है ना।
0: कई कम्युनिटीज में बच्चों के लिए पब्लिक स्पेस अनहेल्दी होने की वजह से खेल के अवसर भी बहुत सारे, बहुत जगह पे कम होते जा रहे हैं। राइट टू प्ले हर बच्चे का अधिकार है, जैसा कि सब जानते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट जस्ट अ फन, बल्कि बच्चे के डिवेलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है।
2: बिल्कुल, और लक्ष्मी इसीलिए संयुक्त राष्ट्र सभा ने बच्चों के विकास और सीखने के लिए उन्होंने खेल की जो भूमिका है उसको स्वीकारा, और उसे मान्यता देने के लिए और बढ़ावा देने के लिए जो आज का दिन है यानी 11 जून उसको इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले के रूप में उन्होंने इस्टैब्लिश किया है। और इसके लिए मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया था,
0: और 11 जून यानी आज हम पारा प्ले को सेलिब्रेट करने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले को सेलिब्रेट करते हैं। और ये दिन है लोगों में अवेयरनेस रेज करने का कि खेलना किस तरह से बच्चे के डेवलपमेंट और वेल बीइंग के लिए इम्पोर्टेंट है, साथ ही हम सब मिलकर ये सुनिश्चित

0: करें कि हर बच्चा राइट टू प्ले का पूरा लाभ उठा सके। एंड इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले 2026 का थीम है प्रोटेक्ट प्ले प्रोटेक्ट चाइल्डहुड।
1: बिल्कुल, और इस तरीके की जब हम थीम रखते हैं तो निश्चित तौर पर ये होता है कि उस क्षेत्र में विकास किया जाए। और ये जो थीम है वो हमें रिमाइंड कराती है कि हैप्पी एंड हेल्दी चाइल्डहुड के लिए खेलना कितना ज़रूरी है, और हम एक ऐसी दुनिया को बनाने में मदद करें जहाँ पर हर बच्चे के खेलने का जो अधिकार है उसका सम्मान किया जाए और उसे पूरा किया जाए।
0: दैट्स व्हाई गवर्नमेंट बिजनेसेस और स्टेक होल्डर्स जो है उनको शामिल होने के लिए अवेयर किया जाता है कि ऐसी सर्विसेज को स्केल अप करें जिसमें ऐसे पेरेंटिंग प्रोग्राम्स को इंक्लूड करें जो प्ले को प्रमोट करें। यानी कि 3 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं उनके लिए प्री स्कूल और खेल के माध्यम से सीखने की सुविधाएं एक्सेस करें। साथ ही ये भी इंश्योर करें कि हर बच्चे को सेफ इंक्लूसिव और वेल मेंटेन प्ले एरिया मिले।
1: बिल्कुल लक्ष्मी, देखिए खेलना जो है वो ना सिर्फ हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है बल्कि हमारी मेंटल हेल्थ भी इससे बहुत इम्प्रूव होती है। खुद को हम एक्टिव रख सकते हैं और स्ट्रेस कम करने में भी बहुत हेल्पफुल है। और मैं तो कहूँगी कि सिर्फ बच्चे ही क्यों, बड़ों को भी हर रोज़ अपने रूटीन में भले ही 10 मिनट निकालें लेकिन खेलें कूदें ज़रूर, क्योंकि देखिए इससे जो हमारे सामाजिक रिश्ते हैं वो भी बहुत मजबूत बनते हैं कहीं ना कहीं, है ना।
0: एग्जैक्टली, एट द सेम टाइम खेल बच्चों को क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस, टीम वर्क, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने में भी हेल्प करते हैं। बच्चे आपस में प्रॉब्लम सॉल्व करना भी सीखते हैं एंड कोऑपरेशन और कैसे सक्सेस एंड डिसअपॉइंटमेंट दोनों को हैंडल कैसे करना है ये भी कर लेते हैं। ये सब खेलों के जरिए ही सीख जाते हैं। और आज अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पर ये छोटा सा रेजोल्यूशन हम लें कि हर दिन खेल के लिए कुछ टाइम ज़रूर निकालें, जैसा कि निधि जी ने कहा, चाहे बच्चों के साथ हो या दोस्तों या परिवार के साथ, आज ही नहीं बल्कि हर दिन खेल को अपनी दिनचर्या का हिस्सा ज़रूर बनाएं।
1: क्या बात है, और बस इसी के साथ एक बढ़िया सा हम बच्चों के खेल वाला गाना प्ले कर देते हैं।

0: माय डियर लिसनर्स, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम हमनवा, और जिसमें आज मेरे साथ स्टूडियो में है मेरी दोस्त एंड होस्ट आरजे निधि। और निधि, अब हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व की जो केवल एक परिवार या एक व्यक्ति से नहीं बल्कि पूरे समाज के विकास से जुड़ा है, और वो है सशक्त नारी।
1: बिल्कुल, और लक्ष्मी जी, अगर देखिए नारी सशक्त है तो समाज का विकास निश्चित है। और कहा जाता है कि भाई, अगर एक पुरुष शिक्षित होता है तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन जब एक महिला शिक्षित और सशक्त होती है तो पूरा परिवार और आने वाली पीढ़ियां भी सशक्त बन जाती हैं।
0: यानी यहाँ पर सशक्तिकरण का अर्थ निधि केवल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है, बल्कि अपने डिसीजन जो है वो खुद लेने का कॉन्फिडेंस, अपने ड्रीम परस्यू करने का कि फ्रीडम होनी चाहिए, एंड द अपॉर्चुनिटी टू लिव विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट आल्सो।
1: क्या बात आपने कही है कि देखिए, जो नारी है वो केवल घर की जिम्मेदारियों को निभाने वाली नहीं है, बल्कि वो समाज की निर्माता है। वो समाज में, हम कहें कि जो संस्कार बच्चे में आते हैं ज़्यादातर, क्योंकि बहुत सारा समय जो है बच्चे का वो माता के साथ ही, उसकी मदर के साथ ज़्यादा बीतता है आमतौर पर, भारतीय समाज में तो खास तौर पर, तो हम कह सकते हैं कि वो संस्कारों की वाहक भी है और बदलाव की प्रेरक शक्ति है ना।
0: बिल्कुल सही बात है। और जब नारी सशक्तिकरण की बात हो रही है तो मुझे महान कवियत्री महादेवी वर्मा की कविता जाग तुझको दूर है जाना याद आ रही है निधि।
1: क्या बात है,
0: जिसका एक छंद हम यहाँ पर कहना चाहेंगे, बड़ा प्रभावशाली है कि कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी, हार भी तेरी बनेगी मानिनी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। तो कहने का मतलब यह है कि अगर उन्होंने कहा है महादेवी वर्मा जी के इस छंद में कि दुखद अतीत को अगर भूल जाना चाहिए, और आंखों के आंसू तभी सच्चे और सार्थक होते हैं जब अपने लक्ष्य को पाने का संकल्प हो। और मानिनी यानी कि सेल्फ रिस्पेक्टिंग वुमेन को वो कह रही हैं कि अगर तुम संघर्ष के रास्ते पर फेल भी हो जाते हो तो वो हार भी तुम्हारी विजय की पताका बन जाएगी, बिकॉज सच के लिए लड़ते हुए मिली हार भी हाईली रिस्पेक्टेड होती है।
1: बिल्कुल लक्ष्मी जी, और हम तो ये कहेंगे कि हार जो है ना वो भी हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है। और बहुत ही, ये जो अभी आपने कविता पढ़ी है महान कवित्री महादेवी वर्मा जी की, तो उनकी जितनी भी कविताएं रही हैं उनमें ज़्यादातर में आप देखिए तो नारी की संवेदना को बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने उभारा है। आत्मसम्मान है ना उनका, मतलब दिखा, उनकी कविताएं जो है उसमें दिखाते हैं कि नारी का जो आत्मसम्मान है वो क्या वैल्यू करता है। उसमें आप इंडिपेंडेंस की भावना देखते हैं, उसमें आप इंटरनल स्ट्रेंथ जो होती है, इस टाइप की बात बहुत ही

0: गहराई के साथ सुनाई पड़ती है। और इसीलिए देखिए, महादेवी वर्मा जी को साहित्य में एक नारी चेतना की सशक्त आवाज मानते हैं।
1: सो एक ट्रूली प्रोग्रेसिव सोसाइटी वही है निधि जी, जहाँ वुमेन बेखौफ होकर अपने सपनों की उड़ान भर सके, हर महिला सम्मान और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सके। सो जब भी हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हम एक उज्जवल और समृद्ध भविष्य की बात कर रहे होते हैं। देयरफॉर सपोर्टिंग वुमेन्स एम्पावरमेंट इज नॉट जस्ट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज एन इन्वेस्टमेंट इन अ बेटर टुमारो।
0: That's why Lakshmi, when women rise, society rise with them, है ना?
1: Exactly.
0: और आज जो है सशक्त नारी बेहतर समाज, जो हमारा विषय था, इस पर अपने विचारों के साथ हमसे जुड़ी हुई हैं हमारी एक बहुत ही जागरूक महिला हैं ऋतु निगम जी, तो हम उनकी बात आप तक पहुंचाते हैं, उसे सुनिए।
2: नमस्कार, मैं ऋतु निगम आज आप सभी से नारी सशक्तिकरण के बारे में बात करना चाहती हूँ। बचपन से ही मैंने अपने घर में सुना और स्कूल में याद कराए जाने वाले निबंधों में भी याद किया कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तब तो केवल याद किया और परीक्षा में अंक प्राप्त कर लिए। जब युवावस्था की तरफ बढ़ी तब सोचा आखिर उस वाक्य का अर्थ क्या है और उसकी क्या उपयोगिता है। अगर आज के परिदृश्य में देखें तो हम उसे नारी सशक्तिकरण से जोड़ सकते हैं। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। भारतीय समाज में तो शक्ति की पूजा होती है, तो यदि नारी सशक्त होगी, पूजनीय होगी, अर्थात समाज, परिवार, घर के लिए पॉजिटिव एनर्जी से भरी हुई होगी, तभी तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड से काम करेगी और समाज को बेहतर बना पाएगी। क्योंकि प्रत्येक बच्चे की प्रथम गुरु तो माँ ही होती है, तो बचपन में याद की ही वो सूक्ति ही मेरे जीवन का प्रेरणा स्रोत बन गई। मैंने अच्छी शिक्षा प्राप्त की और एक कदम समाज को बेहतर बनाने की ओर बढ़ाया, और वह कदम था शिक्षिका के रूप में एक पब्लिक स्कूल में कार्यरत होना। इससे मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हुई और साथ ही बच्चों को पढ़ाकर समाज को बेहतर बनाने में भी योगदान दिया। परंतु मनुष्य की इच्छाएं कहाँ ही खत्म होती हैं। मैंने अपने अंदर छिपे हुए एक हुनर को पहचाना और वो हुनर था मेरी कुकिंग स्किल्स। इसका पता शायद मुझे समाज से ही लगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति मेरे बनाए हुए भोजन, चाहे वो मीठा हो या नमकीन, या अचार हो या पापड़, सब खाकर तृप्त होते थे और तारीफ करते थे। तो लगभग आज से 8 साल पहले मैंने ऋतु द रसोईया के नाम से ब्लॉग लिखना आरंभ किया और यूट्यूब चैनल की भी शुरुआत की, पर घरेलू जिम्मेदारियों और व्यस्तता के कारण उसे निभा नहीं सकी। फिर वही कीड़ा कि मैं सशक्त नारी तभी हूँ जब मैं समाज को कुछ दे पाऊँ, मेरे दिमाग में रेंगने लगा। आजकल मैं एक छोटा सा क्लाउड किचन ऋतु द रसोईया के नाम से ही चलाती हूँ, जिससे मेरी थोड़ी बहुत आय भी होती है और साथ ही मैं 3 से 4 महिलाओं को रोजगार भी प्रदान कर पा रही हूँ। आजकल मेरे बनाए हुए चीज़ों की डिमांड भी थोड़ी बहुत बढ़ने लगी है और ये मुझे सपोर्ट भी करता है, आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी, और मैं समाज को किसी न किसी रूप से बेहतर बनाने का कार्य कर पा रही हूँ। अंत में मैं यही कहूँगी कि यदि हमारे देश की नारी सशक्त होगी, वह सशक्तिकरण चाहे शिक्षा के रूप में हो या आर्थिक हो, तभी हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। यदि समाज बेहतर होगा तो निश्चय ही देश भी उन्नति की ओर अग्रसर होगा।
0: तो लक्ष्मी जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, एक आत्मनिर्भर सशक्त महिला ऋतु निगम जी, जो अपने साथ साथ और महिलाओं को भी बहुत आत्मनिर्भर बना रही हैं और उन्हें रोज़गार भी दे रही हैं। तो इसी के साथ उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा गाना सोच के रखा हुआ है और उम्मीद करते हैं कि उन्हें पसंद आएगा।

0: लक्ष्मी, हम तो ये कहेंगे कि जैसे इस गाने में जो हीरोइन है वो बिल्कुल उड़ रही है, उनके जो सपने हैं वो कहीं उड़ रहे हैं, तो हम बस यही कहेंगे कि हमारी जितनी भी नारियां हैं उनके भी सपनों को ऐसे ही उड़ान मिले।
1: अच्छा निधि जी, जैसे मैं ये गाना सुन रही थी तो इसमें रेखा जी ने जो एक्ट किया है, तो ये एक लाइन आई थी बीच में, नींद सी रहती है, हल्का सा नशा रहता है, तो शायद इनकी भी नींद पूरी नहीं होती थी, तो कुछ हमारा इसी तरह से।
0: ये बात तो आपने बड़ी सही सी जोड़ दी है यहाँ पर। तो बिल्कुल कुछ कुछ ऐसा ही कहते हैं ना, बेख्याली में आजकल की हमारी जो युवा पीढ़ी है उसका भी दिमाग रहता है। यकीनन हम ये ज़रूर कहेंगे कि भाई देखिए, हाईटेक तो हो रहे हैं वो, हमारे जो यंग एडल्ट्स हैं वो बहुत हाईटेक हैं, टेक्नोलॉजी में बड़ी जल्दी वो महारत हासिल कर लेते हैं, लेकिन यही चीज़ देखने में आ रही है कि वो उनके अंदर कहीं ना कहीं अटेंशन स्पैन यानी कि एकाग्रता की कमी भी देखी जा रही है। और लक्ष्मी, हमने इसी बात पर प्रोग्राम के स्टार्टिंग में अपने दोस्तों से बोला भी था कि आप हमें इस बारे में अपने राय, अपनी मेल्स भेज सकते हैं, और हमारे पास एक मेल आ भी चुकी है, लेकिन हम अपने बाकी भी दोस्तों से कहना चाहेंगे कि आप भी अगर इस बारे में अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो हमसे ज़रूर शेयर कर लीजिए। हमारा जो ईमेल आईडी है वो आपको पता है, AIRKANSOMEDIA@gmail.com, और फेसबुक के जो आकाशवाणी कानपुर के नाम से भी हम फेसबुक पर मौजूद हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब आप उसे टाइप करेंगे तो AKASHVANI आकाशवाणी एंड देन कानपुर KANPUR पर आपको हमें मेल भेजना है, तो हमें आपका इंतज़ार है। तो बस अब हम आपसे बाकी के कारणों के बारे में बहुत सारी बातें करने वाले हैं, और लक्ष्मी जी के पास बहुत सारे कारण हैं आपसे शेयर करने के लिए, बात करते हैं।
1: कारण तभी बनते हैं जब हम किसी चीज़ को इग्नोर करने लगते हैं निधि, तो अल्टीमेट वो कारण बन जाते हैं, वो कॉज बन जाते हैं जो हमें कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। अब मेन कारण के, जब आपने कारण की बात की, तो डिजिटल गैजेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आजकल लोग यूज़ कर रहे हैं, उनकी लाइफ स्टाइल पूरी तरह से चेंज हो रही है, साउंड स्लीप नहीं हो रही है, मेंटल स्ट्रेस, अब जब स्लीप नहीं होगी तो मेंटल स्ट्रेस तो रहेगा ही।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: और होता क्या है कि टाइम ही खराब हो जाता है पूरा, अगर हम रात को देर तक जाग रहे हैं तो हमारा अगला दिन पूरा खराब होने वाला है सीधा, क्योंकि नींद पूरी नहीं होगी और हम लेट उठेंगे तो पूरा रूटीन
0: बिगड़
1: जाएगा। और दूसरा यह है कि आजकल के यंग एडल्ट जो हैं बहुत रात तक सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, से उनकी नींद पूरी नहीं होती, रीजन तो मेन यही है, और इसका सीधा इफेक्ट जो है उनके कॉन्सेंट्रेशन पर पड़ता है।
0: बिल्कुल लक्ष्मी जी, आजकल के जो बच्चे हैं, इवन हम लोग भी बहुत देर देर तक हम रील्स देखते रह जाते हैं या फोन पर बार बार नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं, तो उससे भी बहुत डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। और एक जो चीज और भी है आज की युवा पीढ़ी में, वो है मल्टीटास्किंग की आदत, मतलब एक ही समय में चार काम वो करना चाहते हैं और करते भी हैं, कि मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं तो उसी समय उनका लाउड म्यूजिक भी चल रहा है, वो भी सुना जा रहा है, बीच बीच में फ्रेंड्स को मैसेज

0: भी चल रही है ना, और भी बाकी के बीच बीच में उठ उठ करके काम कर रहे हैं, तो ये जितनी भी चीजें हैं ना वो माइंड को फोकस नहीं करने देती है ना,
1: और साथ साथ बैठे जंक फूड भी खाते जा रहे हैं, स्नैक्स भी चल रहे हैं, तो वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं होने के कारण फिर बहुत सारी जो डिजीज है वो क्रिएट हो जाती है बॉडी के अंदर। और फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज इससे कम तो होती है, एक्सरसाइज के लिए स्पेशली टाइम निकालना पड़ रहा है आज की जनरेशन को। जब पहले के टाइम पे तो ये था कि एक्सरसाइज खेल खेल में हो जाती थी, हम लोग को एक्स्ट्रा कुछ इतना बताना नहीं पड़ता था, और इससे दिमाग जो हमारा जो है उसको पर्याप्त पूरी मतलब अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिससे वो कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पाता है।
0: बिल्कुल,
1: ऊपर से करियर बनाने की एक अलग है, क्योंकि पहले और आज की जनरेशन में ये फर्क एक निधि जी बहुत बड़ा है कि पहले हमारे पास सीमित ऑप्शंस थे कि भैया गवर्नमेंट सर्विस में जाना है, या हमको बिजनेस संभालना है, फादर का बिजनेस है, या पढ़ के कुछ टीचर वगैरह बनना है, तो बहुत कम थे। लेकिन आज इतने सारे ऑप्शंस हैं, उतने ही ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ गया है, और इसी वजह से इतना मेंटल स्ट्रेस बच्चों में दिखाई दे रहा है, और जो हमारे यंग जनरेशन हमारे यूथ है उनमें कॉन्सेंट्रेशन की कमी आ रही है।
0: बिल्कुल, कंसंट्रेशन की कमी है, और साथ में अभी जो आपने बात करी है कि एक तो देखिए कैरियर बनाने की चिंता है, साथ में जो पीयर प्रेशर है ना, जो साथ वाले बच्चे हैं तो उनका भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट प्रेशर रहता है कि अच्छा वो बन गया है, उसका सिलेक्शन हो गया, हमारा नहीं हुआ है, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं तो कहीं ना कहीं उनकी कॉन्सेंट्रेशन में कमी होती चली जा रही है। लेकिन लक्ष्मी, सारी समस्याओं से हम बच सकते हैं, और एक बड़ा ही आसान सा उपाय है जिसके बारे में हम हमेशा ही बात करते हैं, सब जानते हैं, और वो क्या है, डिजिटल डिटॉक्स है ना, कि उस समय में अपने आप को थोड़ी देर ज़रूर बिल्कुल स्क्रीन फ्री रखना है, किसी भी तरीके का मैसेज, रील, शॉर्ट्स, ये कुछ भी चीज़ें नहीं देखनी है, मतलब कोई भी कॉल भी अगर कोई इमरजेंसी कॉल है तो आप अटेंड कर सकते हैं, बट कोशिश करें कि उस समय में आप बिल्कुल अपने आप को फ़ोन से दूर रखें, है ना।
1: एक्चुअली इसके लिए जो आप बता रही हैं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है विल पावर का होना। विल पावर अगर है इतनी स्ट्रांग तभी उसको हटा सकते हैं, क्योंकि बच्चों की तो आप छोड़िए, बड़े नहीं इस चीज को कर पा रहे हैं, तो जब बड़े नहीं करेंगे तो बच्चे उनको देखकर कैसे उसको फॉलो करेंगे। दूसरा इसी का एक, अभी रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि कनाडा में उन्होंने बच्चों के लिए अंडर 16 एज के बच्चों के लिए एक छोटा सा फ़ोन वहाँ पर इनोवेट किया है, जिसमें बच्चों का उसमें इंटरनेट नहीं है, और पेरेंट्स उसमें कुछ ऐसे फीचर्स रख सकते हैं, कुछ ऐसे नंबर्स डाल सकते हैं जो बच्चों के पास रहेगा, और पेरेंट्स उसको हैंडल भी कर सकते हैं, और बच्चे उससे फोन कर सकते हैं, सब चीजें कर सकते हैं, बट उसमें कोई भी इंटरनेट नहीं, नेट फैसिलिटी नहीं है।
0: तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और मुझे लगता है ये बातें हमें सीखनी जरूर चाहिए, है ना, कि भाई आप अगर ये सारी चीज़ें हम बाहर की सीख रहे हैं तो इसको भी सीख लें, और साथ ही साथ जैसे अभी आप कह ही रही थी कि भाई यंगस्टर्स जो हैं वो इतना जो देर रात तक फ़ोन देखते रहते हैं, तो वो उस आदत के बजाय अगर वो 7 से 8 घंटे की साउंड स्लीप ले लेंगे तो अगले दिन दिमाग और शरीर दोनों ही बहुत दुगनी रफ्तार से दौड़ेंगे। लेकिन एक चीज़ और भी मैं बताना चाहूँगी कि जो एक टेक्निक है वो आजकल बहुत ही ट्रेंडी हो रही है इस संबंध में, वो है पोमोडोर टेक्निक, है ना, तो उससे एकाग्रता बढ़ती है। तो ये जो चीज़ें हैं वो बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि टाइम मैनेजमेंट भी आप सीखते हैं इसके लिए।
1: आई थिंक ये बहुत ही पॉपुलर और काफ़ी इफेक्टिव टेक्निक है जो कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए और टाइम मैनेजमेंट के लिए है। तो इसमें होता क्या है कि ये टेक्निक काम कैसे करती है, एक्चुअली सबसे पहले ये एक टारगेट सेट करना होता है हमें, जिसे हम पूरा करना चाहते हैं, कोई भी टारगेट है जो हम उसे पूरा करना चाहते हैं, और फिर 25 मिनट का अलार्म सेट करना होता है, और ये आपका एक पोमोडोर हो गया।
0: मतलब 25 मिनट की जो अवधि है वो एक पोमोडोर मानी जाती है ना?
1: हाँ, मान ली जाती है।
0: और फिर उसमें क्या है कि जब तक आपका टाइमर नहीं बज जाए तब तक आपको कोई भी किसी तरीके का डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, जैसे अभी हमने बोला कि भाई कोई कॉल्स नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन योर टारगेट, है ना। और फिर उसके बाद आपको अपना जो एक पोमोडोर जो अभी आपने बताया, यानी 25 मिनट के बाद आपको 5 मिनट का ब्रेक ले लेना है, है ना, और इस 5 मिनट में आप थोड़ा सा उठ लीजिए, स्ट्रेचिंग कर लीजिए, डीप ब्रीदिंग कर लीजिए, अपने पानी पी लीजिए जा करके, है ना, लेकिन स्क्रीन नहीं देखना है।
1: एग्जैक्टली, और डोंट यू थिंक ये एक फैमिली टीम वर्क टाइप का है, अगर पूरी फैमिली एक साथ नहीं करेगी तो, अगर सिर्फ बच्चे से कह दिया गया और हम और आप या घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं वो फ़ोन लिए बैठे हैं और बच्चे को बोल रहे हैं कि नहीं ये करो, पढ़ाई करो, बच्चों फ़ोन को टच नहीं करो, तो ये वहाँ पर नहीं इफेक्टिव होती मेरे ख्याल से। फैमिली टीम वर्क होना

0: चाहिए, जिससे एक घर में एक डिसिप्लिन बने कि हाँ ऐसे ऐसे करना है, इतने टाइम से इतने टाइम तक
1: आपको अपना
0: हमें फोन
1: काम कर।
0: नहीं टच करना है, फोन को डिपॉजिट करके रख देंगे लॉकर
1: हाँ सही
0: में।
1: बात,
0: तो
1: सही
0: ये
1: बात
0: भी
1: है।
0: होता है, क्योंकि वो एक लत होती है ना, लत
1: हाँ
0: जब आदत लत में कन्वर्ट हो जाती है तब बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये किसी भी चीज़ की आदत हो सकती है, तो फिर हम अपनी विल पावर को भी स्ट्रांग नहीं कर पाते, हम अपने आप को भी नहीं जो है संभाल पाते हैं उसको करना ही, कि अरे बस 5 मिनट ही है, थोड़ा सा सोशल मीडिया रील स्क्रॉल
1: बिल्कुल
0: कर ली, थोड़ा सा देख लिया, लेकिन वो 5 मिनट जाके वो 2 घंटे हो जाते हैं, क्योंकि वो इतने इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग होते हैं कि हमको लगता है अच्छा एक और एक और एक और।
1: बिल्कुल। और लक्ष्मी इसीलिए तो जो है पोमोडोर बनाया ही इसीलिए गया है कि आपको टाइम सेट हो कि भाई आपको 25 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना है ना। और फिर आप इसी बात को दोहराते चले जा सकते हैं। और एक जो पोमोडोर की हम लोग ने एक 25 मिनट की अवधि बताई है, मुझे लगता है कि उसको हम थोड़ा सा उसकी टाइमिंग अपने आप अपने
0: फिफ्टीन
1: काम के
0: मिनट
1: हिसाब
0: कर
1: से,
0: सकते हैं।
1: हाँ अगर
0: हाँ
1: शुरुआती दौर में आप
0: भाई,
1: 15 कर
0: हमारे
1: लीजिए।
0: प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कि आप बहुत छोटे से चीज को शुरू करिए, आप एकदम से 10 चीजें ना करिए, आप एक
1: एक
0: ही चीज
1: चीज़
0: एक दिन
1: करिए
0: में करिए,
1: बिल्कुल,
0: तभी हम बढ़ सकते हैं
1: हाँ
0: आगे।
1: 15 मिनट से आप शुरू करिए। या आपको लग रहा है आप मैथ के कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, कोई कोडिंग कर रहे हैं और आपको लगता है 25 मिनट का टाइम जो है वो सफिशियंट नहीं है, तो आपने उसे 50 मिनट का कर लिया। लेकिन जब आप ब्रेक लेंगे तो वो भी उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, है ना। यानी कि अगर आप 50 मिनट का एक पोमोडोर बना रहे हैं तो आप 10 मिनट का ब्रेक ले
0: मतलब
1: लीजिए।
0: अगर
1: तो
0: हम 15 मिनट भी करते हैं तो उसके बाद जो हमें रियलाइज होगा कि इससे कितना
1: हाँ
0: फायदा हुआ
1: फायदा हो रहा
0: हमको,
1: है।
0: कितना मेरा टाइम जो है इतना स्पेंड हो जाता था, वो कितना हमने अपना टाइम बचाया, अपना सेव किया टाइम, तो फिर आगे और जो है वो मोटिवेशन मिलता
1: बिल्कुल
0: है कि हम
1: मोटिवेशन
0: और
1: मिलता
0: करें, और थोड़ा
1: है।
0: सा
1: हाँ
0: टाइम जो है और बढ़ाएं उसको, टाइम जो लिमिट है उसको और बढ़ाएं।
1: अच्छा लक्ष्मी, देखिए जैसे हमने कहा था ना कि भाई इस बारे में आप अपनी हमें राय भेजिए या अपनी बात लिखिए हमें, तो देखिए एक मेल आ गई और ये हमारे रेगुलर लिसनर है भैया मोनू सेठ जी, और लिखते हैं कि आज की युवा पीढ़ी शैक्षिक दबाव और सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग और लगातार दूसरों से तुलना करने और भविष्य को लेकर अनिश्चितता के कारण भारी मानसिक तनाव का सामना कर रही है। और बिल्कुल सही लिखा है, और थोड़ी सी इन्होंने बात भी लिखी है, मुझे लग रहा है अगर आप शॉर्ट में इसे पढ़ देंगी।
0: इन्होंने अपने बचपन के गेम्स के बारे में बात की है, क्रिकेट या जो इनके,
1: गुल्ली डंडा
0: और
1: है।
0: हाँ
1: हाँ बिल्कुल
0: कंचे वंचे खेलने का जो उस टाइम होता था, तो बहुत तेज धूप होती थी तब भी घर से गायब रहते थे, और जो है खाना खाना भी भूल जाते थे, नहीं लगती थी भूख प्यास, और जब मम्मी ढूंढने लगती थी तो दोस्त लोग बोल देते थे कि मम्मी आ रही है छुप जाइए, तो इधर उधर ढूंढने के बाद उन्होंने पूरा अपना एक बचपन बताया है कि माँ बाप जो एक धमकी देते हैं कि चलो खाना नहीं मिलेगा अब
1: हाँ, या
0: खेलो
1: मार
0: वहीं
1: भी
0: खाओ
1: पड़ जाती
0: जाकर,
1: थी उनको
0: तो कई, अच्छा
1: तो।
0: इन्होंने ही बिल्कुल सही चीज लिखी कि कई बार पेरेंट्स कहते थे ना कि हाँ ठीक है टाइम पे नहीं आए खाना नहीं मिलेगा, तुम जहाँ खेल रहे हो तो वहीं
1: वही
0: खाओ
1: खेलो।
0: जाके, और वहां पे खा भी लेते थे पहले टाइम पे, हम लोग पड़ोस में ही ज्यादातर हम लोगों का
1: हाँ
0: टाइम चलता था, और पड़ोस में आंटी लोग खिला भी देती थी खाना।
1: और इसमें अभी बताइए कितनी अच्छी बड़ी बात है, इन्होंने लिखी है कि आज बड़ा हो गया हूँ, बिजनेस है अपना छोटा सा, और फिर भी वॉलीबॉल या क्रिकेट 2 घंटे रोज खेल लेता हूँ। बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि देखिए क्रिकेट में उनको ज़्यादा आनंद आ रहा है, लेकिन आप भी अपना कोई भी गेम खेल सकते हैं। तो अच्छी ये बात हमसे शेयर करिए, और हम देखेंगे अगर लक्ष्मी अभी हमारे पास, मुझे लगता है एक इतनी सारी हम बातें कर रहे हैं तो एक बढ़िया सा गाना भी हम ज़रूर प्ले कर दें अपने दोस्तों के लिए, और फिर उसके बाद हम बाकी की मेल्स पढ़ेंगे।
0: अच्छा निधि, 1 मिनट में गाना गाने के पहले एक मेल और आ गई है, उन्होंने ये भेजी है मुजम्मिल अहमद जी ने, तो
1: क्या
0: ये
1: बात
0: भी
1: है,
0: मैं
1: ये
0: पढ़
1: भी
0: देती
1: बड़े
0: हूँ।
1: समय से इनका मुझे मेल का
0: हाँ
1: इंतजार था, और लिखा है उन्होंने।
0: इन्होंने, जी इन्होंने लिखा है, देर तक जागना नींद का पर्याप्त मात्रा में ना लेना कारण है एकाग्रता की कमी का, एक टाइम में कई काम करना, इससे बचने के लिए जब भी काम करें हर घंटे में 5 मिनट का ब्रेक लें, एक टाइम में एक ही काम करें, योग और ध्यान करना चाहिए। बिल्कुल सही बात लिखी मुजम्मिल जी आपने, और हम इसी विषय पर आज चर्चा कर रहे हैं, और इससे पहले हम आगे बढ़े एक प्यारा सा सॉन्ग हम अपने
1: और हमारे
0: श्रोताओं को
1: जितने भी
0: सुना
1: दोस्त
0: रहे
1: इस
0: हैं।
1: समय हमसे जुड़े हुए हैं उनका हम बिल्कुल धन्यवाद अदा करना चाहेंगे। और लीजिए सुनिए बहुत ही प्यारा सा गाना।

0: तो लक्ष्मी जी, हमें लगता है कि चाहे कितनी भी कंफ्यूजन की स्थिति हो, लेकिन कहना यही चाहिए ऑल इज़ वेल। लेकिन हाँ, उसके लिए प्रयास ज़रूर करने चाहिए, है ना। तो अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ लेते हैं, क्योंकि वक्त हमारे पास बड़ा कम है।
1: हाँ, और आज हम बात करने वाले हैं इंसानी आँखों के बारे में। और आँखों के बारे में, जैसा कि निधि जी है कि हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री के शायर हैं, उन्होंने आँखों पे बहुत कुछ, बहुत गाने लिखे हैं, गीतकारों ने बहुत गाने लिखे हैं। तो कितनी आँखें ज़रूरी होती हैं जीवन के लिए, उसके उस पर हम बात करेंगे। लेकिन हम उस पर बात इसलिए नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि आंखों का रंग, जो आंखों का, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लू होता है, तो इसके पीछे का साइंस क्या है एक्चुअली?
0: बिल्कुल। और लक्ष्मी, इसका जो मेन कारण है वो यही है कि शरीर में जो मेलानिन मौजूद होता है, यानी कि वो पिगमेंट जो कि हमारी आंखों का रंग डिसाइड करता है। साथ ही साथ आप देखते होंगे किसी के बालों का कलर भी ऐसे ही अलग अलग होता है, थोड़ा लाइट ब्राउन या ब्लैक, है ना। तो उसी तरीके से ये हमारी स्किन का भी कलर डिसाइड करता है और हमारी आंखों का भी रंग। तो जिसकी आंखों की जो आयरिस है, यानी पुतली है, अगर उसमें मेलानिन ज़्यादा है तो उसकी आंखें आपको काली या भूरी दिखाई पड़ेंगी। और जिसकी आंखों में मेलानिन कम होगा, उसकी आंखें आपको नीली दिखाई पड़ेंगी।
1: और नीली आंखों के लिए एक और फिजिक्स का कॉन्सेप्ट होता है, वो अप्लाई होता है इसी के साथ, स्कैटरिंग का।
0: हाँ,
1: स्कैटरिंग यानी
0: रेले
1: जैसे,
0: स्कैटरिंग,
1: हाँ,
0: करेक्ट।
1: जैसे आसमान का रंग नीला दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य की सफेद रोशनी जो होती है, वो जब एंटर करती है वायुमंडल में, तो इस पर बात भी हुई थी हमारी कि 7 कलर्स में वो स्कैटर हो जाती है, फैल
0: बिल्कुल
1: जाती है। चूंकि नीले रंग की वेवलेंथ सबसे कम होती है, इसलिए इसकी स्कैटरिंग जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक वैसे ही नीली दिखने वाली आंखों के साथ भी ऐसा ही होता है।
0: बिल्कुल। और एक जो हरे रंग की भी आंखें आपने कभी कभार देखी होंगी, तो उसमें जो मेलानिन की मात्रा होती है वो मीडियम होती है, मतलब ना ज़्यादा कम है ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा है। और एक चीज़ और इस पे अप्लाई होती है, वो है जेनेटिक्स, है ना, कि जो हमें अपने पेरेंट्स से जो जीन्स मिले हैं, तो उसमें देखना पड़ता है कि उससे कितना मेलानिन बच्चे में ट्रांसफर हुआ है, उसके हिसाब से उसकी आंखों का रंग होता है ना।
1: हाँ, एक्चुअली पेरेंट्स का कुछ भी, अगर हेरिडिटी कुछ कोई भी किसी भी चीज़ की आ रही है बच्चों में हो।

0: होती है, तो बॉडी में कई तरह की चीज़ें हो जाती हैं जो अगर पीछे से अगर हमारी जनरेशन को कंटिन्यू कर रही है। इसलिए तो हर बच्चों को आंखों के रंग के लिए मेनली दो जीन्स मिलते हैं, एक माँ से और एक
1: पिता
0: पिता
1: से,
0: से।
1: बिल्कुल
0: एक डोमिनेंट होता है और दूसरा रिसीविंग करने
1: रेसेसिव
0: वाले
1: होता है ना, मतलब
0: हाँ,
1: थोड़ा कम वो प्रभावी होता है कम।
0: और ये काले भूरे या नीले रंग में जो भी ब्लैक ब्राउन या कलर या डोमिनेंट जो जो प्रभावी होता है, इसलिए ऑफ स्प्रिंग जो होता है बच्चे में ब्लैक ब्राउन किसी तरह का मतलब जो आईज होती हैं, बट अगर पेरेंट्स में दोनों की ही आंखें नीली हैं तब बच्चे की आंखों का रंग भी नीला ही
1: नीला
0: होगा।
1: ही होगा बिल्कुल, है ना। और जो कि भाई बात वही है ना कि जो स्ट्रांग होगा वही चीज आगे आएगी, तो जो प्रभावी है कलर वही आगे आ जाएगा, और अगर दोनों ही नीली हैं तो फिर उसमें प्रभावी और अप्रभावी कुछ है ही नहीं, दोनों ही आ जाएंगी। और कई बार ऐसा भी देखने में आया है लक्ष्मी कि माता पिता में से दोनों में से किसी का भी रंग नीला नहीं है और फिर भी बच्चे की आंखें नीली है, तो उसके पीछे भी एक रीजन ये है कि जो हमारे एंसेस्टर्स में कभी ये नीले रंग की आंखें रही होंगी जो कि रेसेसिव थी, जो कि अप्रभावी था वो कलर, लेकिन बाय द जनरेशन वो बाद में उभर करके आ गया है ना। तो बहुत सारे इसके कारण है, तो कुल मिलाकर के बस हम यही कहेंगे कि जो आंखों का रंग है, जो अलग अलग कलर की आंखें हैं, उसके लिए मेलानिन की मात्रा और जेनेटिक्स जिम्मेदार है। तो बस हम यही कहेंगे कि देखिए समय बढ़ता जा रहा है और आंखों के लिए एक बड़ा ही खूबसूरत सा गाना है, उसको हम प्ले करते हैं और फिर उसके बाद हम आगे की बात पे बढ़ेंगे।

0: तो लक्ष्मी जी, अब हमें क्योंकि वक्त बहुत कम है तो जल्दी से हमें अपना एक और बात कहनी है, और आज के बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है वो, तो बिल्कुल आप बताइए कि आज हम क्या बताने जा रहे हैं।
1: तो श्रोताओं, आज हम श्रद्धांजलि स्वरूप स्मरण कर रहे हैं एक ऐसे कवि, शायर, हिस्टोरियन, राइटर एंड इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के फ्रीडम फाइटर को, जिनका जन्म 1897 में उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में निर्जला एकादशी के दिन यानी 11 जून को हुआ था, और मात्र 30 वर्ष की उम्र में 1927 को कृष्ण एकादशी के दिन ही वो शहीद हो गए।
0: बिल्कुल, और ये थे हमारे पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी, जिन्होंने राजपूत परिवार में जन्म लिया था, और हालांकि बहुत इनको गहन अध्ययन था वेदों और उपनिषदों का, तो इसलिए उन्हें पंडित कहते थे, लेकिन बिस्मिल जो था वो उनका उपनाम था
1: जी। और निधि, पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी की जब मैंने बायोग्राफी पढ़ी तो उनमें 11 नंबर कई जगहों पर आया इनका। उन्होंने 11 जून को जन्म लिया, उनका क्रांतिकारी जीवन 11 वर्षों का रहा, और जिस दौरान उन्होंने बुक्स लिखी अपनी और उन्हें पब्लिश भी किया, और यही नहीं 11 बुक्स उनके जीवन काल में पब्लिश हुई, और बिस्मिल जी को संयुक्त प्रांत आगरा और लखनऊ सेंट्रल जेल की 11 नंबर की बैरक में रखा गया, और

0: इतना ही नहीं है कि जब इनका भारत सरकार ने बिस्मिल की जन्म शताब्दी में 19 दिसंबर 1997 को एक बहुरंगी स्मारक डाक टिकट जारी किया, उसी समय भारतीय रेलवे ने शाहजहांपुर से 11 किलोमीटर दूर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल रेलवे स्टेशन का निर्माण किया।
1: तो बिल्कुल राम प्रसाद बिस्मिल जी ने इतने सारे काम किए हैं कि मतलब हम सभी जानते हैं, मुझे लगता है एक नवगठित पार्टी भी उन्होंने बनाई थी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, है ना। तो ये भी हमारे देखे कानपुर में हुई थी, एक तो सबसे बड़ी बात ये है। और रेवोल्यूशनरी जो घोषणा पत्र था उसका प्रकाशन उन्होंने 1 जनवरी 1924 को किया था।
0: और इन्होंने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने नारा दिया था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, जो बिस्मिल के बलिदान के बाद क्रांतिकारियों का मंत्र बन गई थी। और इसी के साथ इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, जो इनकी पुस्तकें प्रकाशित हुई उसमें चीन की राजक्रांति, अरविंद घोष की कारावास कहानी, अशफाक की याद में जॉर्ज वॉशिंगटन और अमेरिका कैसे स्वाधीन हुआ।
1: बिल्कुल, बहुत सारी आपने बताई हैं पुस्तकें। और इनकी जो पहली किताब पब्लिश हुई थी वो 1916 में हुई थी, 1916 में, और वो था अमेरिका की स्वतंत्रता का इतिहास, है ना। तो फिर उसके बाद उनकी जब जन्म शताब्दी हुई तो फिर से उसे प्रकाशित किया गया था 96 और 97 में। तो बस अब हम यही कहेंगे कि भाई उनकी जन्म शती पर हम उनको शत शत नमन कर रहे हैं, उनको स्मरण करते हुए, और उनके जो देश के लिए बलिदान उन्होंने दिया, जो इतने सारे काम किए, वो मतलब उनको मुझे लगता है हर दिन स्मरण करने का दिन है लक्ष्मी, है ना। और देखिए इनके नमन के साथ साथ हमारे अब सभी श्रोताओं ने भी उन्हें नमन किया होगा, लेकिन अब हम पहुंच गए हैं अपने लास्ट सेगमेंट, जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, और वो होता है हमारा रेसिपी का। तो आज हम क्या बताने जा रहे हैं अपने दोस्तों को, वो है मैंगो हलवा। जी हाँ, तो आम का आपको हलवा बनाना है।
0: मैंगो हलवा है, तो मैंगो हलवा कैसे बनेगा और उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए वो हम जल्दी से बता देते हैं निधि जी, बाकी आप प्रिपरेशन बता दीजिएगा।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोताओं, पके हुए आम का पल्प 1 कप ले लेना है, सूजी या ओट्स या रागी 1/2 कप ले लेनी है, जो आप जैसा आपको अच्छा लगे, और देसी घी 1/4 कप या 2 या 3 चम्मच, दूध 1.5 कप, और गुड़ या चीनी जो आप प्रेफर करें डालना, इलायची पाउडर 1 टी स्पून, और चॉप ड्राई फ्रूट्स जो आपको अच्छे लगते हो, पिस्ता, बादाम, काजू, किशमिश, जो भी
1: क्या है ना,
0: वो सब डाल लीजिए। और भी बहुत सारे आते हैं ड्राई फ्रूट्स, उसमें भी आप मखाने भी डाल सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बहरहाल आप प्रिपरेशन बताइए।
1: बिल्कुल, तो बस जल्दी से हम आपको बताते हैं कि कढ़ाई में घी गर्म करना, और जैसे आप नॉर्मल हलवा बनाते हैं उसी तरीके से आपको रवा आपने अगर लिया है वो ले लीजिए, अगर आप इसको थोड़ा और न्यूट्रिशियस बनाना चाहते हैं तो आप ओट्स ले सकते हैं या रागी ले सकते हैं, और मीडियम फ्लेम पर आप इसको भून लीजिए गोल्डन ब्राउन होने तक, और इसके बाद आप उसमें गुड़ का पानी चाहे तो ऐड कर लें, ज़्यादा अच्छा रहता है, थोड़ा न्यूट्रिशियस रहता है, या अगर आपने खाली पानी भी लिया है तो वो आप डाल सकते हैं, या आपने अगर दूध लिया है तो भी आप उसे डाल सकते हैं उसमें, लेकिन धीरे धीरे डालिएगा ताकि लम्स नहीं पड़े, ताकि उसमें गांठे नहीं पड़े, है ना। और इस रवे को या जो भी चीज़ आपने डाली है उसको तब तक पकाना है जब तक कि वो फूल ना जाए, जैसे जब सूजी होती है वो रवा फूल जाता है, तब तक आपको उसे पकाना, अच्छे से पक जाए। और उसके बाद अगर आप गुड़ का पानी डाल चुके हैं तो आपको चीनी नहीं डालनी है, लेकिन अगर आपने गुड़ का पानी नहीं डाला है तो आप उसमें चीनी मिला दीजिए, और फिर उसके बाद आप मैंगो पल्प डाल दीजिए, और मैंगो पल्प आपके आम पर डिपेंड करता है, वैसे तो 1 कप हम आपने बताया ही है, और खट्टापन भी जैसा हो आम का उस हिसाब से आपको थोड़ी सी चीनी घटा बढ़ा लेनी है, और बस इसे आप पकाते रहिए तब तक जब तक कि ये घी ना छोड़ दे, है ना। उसके बाद बस आप फ्लेम को बंद करिए और मेवे डाल दीजिए, थोड़े से मेवे अलग से रख लीजिए ताकि गार्निशिंग हो सके, है ना।
0: बहुत अच्छी रेसिपी है, और हमारे श्रोता बहुत ध्यान से सुन भी रहे थे, और हमारी महिलाएं अपने हिसाब से घटा बढ़ा लेती हैं, उनको आता है बस एक तरीका
1: नहीं, ये हम लोग इसलिए सिखा रहे हैं कि जो पुरुष वर्ग सुनता है वो भी सीख जाए और बना के खिलाए,
0: कि एग्जैक्टली उतना ही डालना है उतना। तो हम लोगों की तो आदत ऐसे बनाते बनाते खाना हो जाती है कि
1: तो भाई हमें लगता है कि रेसिपी सबने ही सीख ली होगी, और अब हम इस प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। तो आज हम नवा प्रोग्राम से निधि और मेरी को होस्ट जो है
0: लक्ष्मी को दीजिए इजाजत। नमस्कार श्रोताओं।

नमस्कार। दोपहर के 12 बजे हम सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहले न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही है बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया है। प्रदेश में कुल 29.01 लाख मतदाता बढ़ गए हैं। इसके साथ ही अब कुल मतदाताओं की संख्या बढ़कर 12.58 करोड़ हो गई है जबकि 2.03 करोड़ नाम काटे गए हैं। मतदाता वृद्धि के मामले में बलिया प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। यहां 1,60,376 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश सरकार ने कल वाराणसी में एक बौद्ध मंदिर और अतिथि गृह के निर्माण के लिए भूटान सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग और भूटान के अधिकारियों के बीच समझौता ज्ञापन के अनुसार परियोजना के लिए वाराणसी में 2 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने भूटान को यह भूमि मात्र 1 रूपये के नाम मात्र वार्षिक किराए पर 30 वर्षों के लिए पट्टे पर दी है। मिर्जापुर में मड़िहान क्षेत्र के देवरी कला स्थित डॉ. जगदीश सिंह पटेल पैरा वेटनरी कॉलेज ऑफ फार्मेसी को प्रदेश सरकार ने डिप्लोमा इन वेटनरी फार्मेसी और डिप्लोमा इन लाइव स्टॉक एक्सटेंशन पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति प्रदान कर दी है। दोनों पाठ्यक्रमों में 100-100 सीटों सहित कुल 200 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव पशुधन विभाग मुकेश कुमार मेश्राम द्वारा जारी आदेश में पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति दी गई है। सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के कुछ प्रकारों पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा है कि इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को मजबूत करना है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए FM रेनबो घंटे तरन्नुम के साथ।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: दिल दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है।
4: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।

और अक्सर लोग पूछते नजर आते हैं कि भाई आपका क्या होगा, भाई मेरे तो बहुत बुरे हाल हैं, गर्मी इस कदर है, ये है वो है, लेकिन सच में लोग इतना परेशान हैं, इतना बेहाल हैं और पसीना पोंछते नजर आते हैं, घर में जाते हैं तो देखते हैं, और मान लीजिए अगर लाइट चली जाए या मान लीजिए आपको कहीं से ठंडक का एहसास ना हो तो मूड इतना खराब होता है, इतना खराब होता है कि बस उसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और अच्छी बात भी बुरी लगती है, मतलब कोई अगर प्यार से मुस्कुरा भी रहा और भाई इतने दिनों बाद, तो मूड नहीं बनता है कि आप कहें कि हाँ हाँ ठीक है, और आपको ऐसा लगता है कि भाई ये गर्मी, ये उमस, ये कब जाएगी, कब जाएगी। और घर, घर एक ऐसी चीज़ होती है दोस्तों कि जब इंसान थका हुआ आता है, बहुत टेंशन से आता है या बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रेस उसको परेशान कर रहा है, वो कहता है भाई अब जल्दी से घर जाएं, घर में जाके जो सुकून का एहसास होता है ना वो कहीं और नहीं होता। लेकिन भाई देखिए गर्मी है और गर्मी गर्मी गर्मी, अक्सर ये लोग कहते हैं इतनी गर्मी पड़ी, आज से पहले इतनी गर्मी कभी नहीं पड़ी, लेकिन लोग भूल जाते हैं जाड़ा आता, लोग कहते हैं इतना जाड़ा पड़ा, आज से पहले इतनी ठंडक तो कभी पड़े ही नहीं, बारिश होती, लोग कहते हैं आज से पहले तो इतना कुछ हुआ ही नहीं, और फिर हम लोग भूल जाते हैं और फिर जिंदगी अपने जो मामूल है ना उस पर चलना शुरू हो जाती है। यानी जो जिंदगी है उसको जो जीने का तरीका है, उसको जो जीने का ढंग है, वो तो आपको भले बदलना होगा, लेकिन लोग से अगर आप ये कहिए, लोगों से कि भाई जिंदगी को जीना छोड़ दें तो कैसा है, ऐसा नहीं है। तो कोई भी वेदर हो, कोई भी मौसम हो, घर जो है ना वो घर ही होता है, घर जो है वो

0: सुकून अलग ही देता है। अब गर्मी का मौसम है, पूरे जोरों पर है, तेज धूप, बढ़ता हुआ टेम्परेचर और गर्म हवाएं। वैसे कल से थोड़ी ठंडी हवाएं चल रही हैं। ये जो गर्म हवाएं हैं, ये जो गर्मी है, ये हमारी सेहत को तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं, बल्कि हमारे घर को भी काफ़ी हद तक असर पहुँचाती हैं। इसलिए आज हम बात करेंगे कि गर्मी में घर की देखभाल कैसे करें ताकि हमारा घर एकदम कूल, एकदम ठंडा, साफ सुथरा और एकदम सुरक्षित भी बना रहे, ये भी बहुत ज़रूरी है। अब कहते हैं ना कि घर ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईंट और सीमेंट का बना है, ये सिर्फ मकान नहीं है बल्कि हमारी खुशियां और सुकून का आशियाना होता है। इसलिए उसकी देखभाल हर मौसम में जरूरी है, खासकर आजकल के मौसम में, गर्मियों में। तो सबसे पहले बात कर ली जाए, भाई देखिए अपने को तो हम लोग ठंडा कर लेते हैं, लस्सी पी लेते हैं, शरबत पी लेते हैं, बेल का शरबत है, कुछ भी ठंडा पानी है, लेकिन घर को कैसे ठंडा रखा जाए। ये एक सवाल है कि घर को कैसे ठंडा रखा जाए, और वो भी गर्मी के दिनों में। दिन के वक्त खिड़कियां, दरवाजे, इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले आपको मोटे मोटे पर्दे डाल देने हैं, इतने मोटे पर्दे कि जो धूप की तपिश है ना वो अंदर तक नहीं आने पाए। दूसरी चीज ये है, दूसरी चीज क्या है कि कुछ ऐसे कलर रख लिए जाए। हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि नहीं अब उठा के पूरा कमरे ही पेंट करवा लीजिए, ना, कुछ ऐसे कलर घर में उस कमरे में रख लिए जाए जहां पर आप आराम फरमाते हैं, वहां पे कुछ ऐसे सूदिंग कलर, जैसे कि लाइट ग्रीन है, जैसे कि लाइट पिंक है, उस कलर के कुछ चीजें ऐसी सजा ली जाए जो आपके दिल को सुकून दे, आपको ठंडक पहुंचाए, और साथ ही साथ जो आपके घर का जलवा है ना वो ऐसे ही, एकदम ऐसे ही बना रहे। फिलहाल शो मी योर जलवा आप तक।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

ऐसी अदा होनी चाहिए आपके घर की कि लोग फिदा हो जाएं। अब जैसे हमने आपसे बात करी कि भाई एक एरिया ऐसा होना चाहिए जिसमें थोड़ी सी हरियाली नजर आए, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया को हरियाली देना पसंद करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में आप किसी भी कोने में चले जाइए, कहीं ना कहीं आपको हरियाली जरूर नजर आएगी। अब जैसे कि अगर बात करें ग्रीन लुक देने की, तो बहुत ही सिंपल सा अगर आप डेकोर करते हैं ना, तभी जो आपकी बालकनी है ना वो बहुत ज्यादा खिल उठती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि वॉल डेकोरेशन आपने किया, उसके साथ साथ जो बाकी स्टेयर्स हैं उनको आपको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना। जब सीढ़ियों से इंसान चढ़ के जाता है छत पे, फिर छत से उतरता है, खटखट नीचे आया था, और लास्ट में जब आप साइड में देखते हैं सीढ़ियों के साइड में हरियाली अगर नजर आती है, यानी एक हरियाली से भरा हुआ कोई चीज आप ऐसी लगा देती है, भले ही वो आर्टिफिशियल क्यों ना हो, लेकिन एक गुड लुक देती है, एक एक गुड फील कराती है आपको। और इसके लिए क्या है ना कि जो सेंटर है उसमें आप अगर ग्रीन इंडोर प्लांट से पूरी जो स्टेयर केस है उसको आप अगर लगाते हैं, तो जो आपकी स्टेयर केस है ना उसको पिक्चर परफेक्ट लुक मिलेगा। अब चलिए थोड़ी सी सजावट की बात भी कर ली जाए। जाहिर सी बात है कि हरियाली की बात हो गई, बैठने की भी बात करते हैं, सिटिंग एरिया की बात करते हैं, या फिर बालकनी में अगर आप बैठते हैं तो फिर वहां पर अगर आप केन फर्नीचर रखते हैं तो भाई बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ही हल्का सा है, आप उठा के उसको कहीं पर इधर से उधर भी कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि जो दीवारें हैं, जो वॉल है, वहां पर आप छोटे छोटे फ्रेम्स लगा सकते हैं, एक हिस्से को जैसा कि हमने आपसे कहा ग्रीन लुक दे सकते हैं। सिंपल डेकोर से जो आपकी बालकनी है ना वो बहुत ज्यादा खिल उठेगी। छोटे छोटे आपने फ्रेम्स लगा दिए, दो अलग अलग साइज के फोटो फ्रेम्स लगा दिए हों तो एक बड़ी फोटो फ्रेम को लगा दीजिए, उसके बाद ऊपर और छोटे नीचे फ्रेम लगा दीजिए, और अपनी जो खूबसूरत सी पिक्चर है, फैमिली पिक्चर है, उसको भी उसमें आप लगा सकते हैं। इसे क्या होता है ना कि आर्ट भी आपकी जो आपके दिल में आ रहा है कि भाई थोड़ी सी क्रिएटिविटी भी दिखा दें, और बाद में जब आप ठंडे सुकून बैठती हैं, कोई भी चीज़ का शरबत पी रही हैं, चाय पी रही हैं, तो फिर आप देखती हैं अच्छा ऐसे लगते थे, मेरी शादी हुई थी तो ऐसे थे, इनके पापा ऐसे थे, मेरे बच्चे ऐसे थे, ये सारी चीज़ें जो है ना जब आप देखती हैं तो एक अलग सुकून होता है, एक ठंडी सांस इंसान भरता है। देखिए ठंडा की बात आई ना, तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको आप शामिल कर सकती हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि फ्रेम कलर और जो मटेरियल है दोनों जो हैं वो आपके रूम के जो डेकोर है उसके अकॉर्डिंग हो, तभी अच्छे लगेंगे। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि तरन्नुम ने आज कहा कि भाई जितनी भी आपके एल्बम में फोटो लगे उनको निकालिए, फ्रेम में लगाइए और पूरी दीवारों को सजा दीजिए। थोड़ा सा अच्छे से आप देखिए, अगर आपको बहुत ही लाइट कलर पसंद है तो आप उस तरह के फ्रेम ले सकती हैं। अगर आपको लग रहा है कि भाई थोड़ा सा कह सकते हैं ना कि मिक्स एंड मैच वाला भी जमाना है। अब स्टेयर्स में वॉल गैलरी की बात कर लेते हैं। स्टेयर्स की वॉल्स की डेकोरेशन में क्या होता है ना कि कुछ जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका सिलेक्शन बहुत ही ध्यान से करना चाहिए। कुछ बातों का आपको देखिए ध्यान रखते हैं ना तो आपका जो घर का ये वाला जो हिस्सा होता है ना वो एकदम यूनिक बन जाएगा। जैसे आपको क्या करना है कि जो बड़ी पिक्चर है उसको स्टेयर केस के सेंटर में हैंग कर दीजिए आप। इससे क्या होगा, जो फोकल पॉइंट है ना वो क्रिएट होगा। आखिर घर का जो कोना है ना वो एक कैनवस ही तो है। अब कुछ लोग कहते हैं भाई मेरे घर में सीढ़ियाँ बहुत कम हैं, बहुत छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं। अब सीढ़ियाँ कम हैं या छोटी हों तो आप साइड की जो वॉल्स है उसमें एकदम समान जो शेप वाले होते हैं ना छोटे छोटे फ्रेम्स, उनको आप थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगा सकते हैं। इसमें क्या होता है ना कि एक सिमेट्री दिखेगी। तो बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में आ रही हैं, मेरे जहन में आ रही हैं, और हमें ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें हम आपसे शेयर कर दें तो आज तो पक्का, नहीं तो अभी

देखिए जून में छुट्टियां चल रही हैं, बच्चे भी घर में हैं, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत दिनों तक आप अलमारी में या कहीं पर सहेज के रखे हुए हैं, उनको निकालिए, थोड़ा सा लव दीजिए उनको। बच्चे भी आपके साथ काम कराएंगे, कोऑपरेट करेंगे आपको, बच्चों को भी तमीज आएगी कि हाँ घर को कैसे सजाया जाता है, कैसे संवारा जाता है, और आपका जो बसेरा है ना वो सबसे हट कर नजर आएगा। फिलहाल लव मी थोड़ा और ट्रैक आप तक, 12:25 प्रोग्राम शत्रुपा तरन्नुम है आपके साथ, सुनते रहिए।

0: गाने हैं बेमिसाल, प्रोग्राम है लाजवाब।
1: जानकारी से सराबोर, मनोरंजन से ओतप्रोत,
2: जोर का झटका है जोरों से लगा, लगा।
0: अंदाज है सबसे निराला,
1: क्योंकि ये है 100.7 FM रेनबो की पाठशाला।
3: ओ गॉड,
0: स्टे ट्यून्ड टू चैनल सतरंगी रे।
4: बाकी सब फर्स्ट क्लास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। 100.7।
5: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।

0: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

किया होता है या यहाँ वहाँ यूज किया होता है, अब आप उसमें क्या करते हैं, उसमें एक अच्छा सा नजर बट्टू बना सकते हैं, फिर उसके अंदर थोड़ी सी मिट्टी भर सकते हैं, उसके अंदर आप कोई ऐसी बेल उगा सकते हैं, और उस जो पॉट है आपको उसको आप ऐसी जगह पे, कोई ऐसा कोना जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये बेल जो है जब निकलेगी तो ये निकल कर कहाँ जाएगी, निकल कर जाहिर सी बात है कि कहीं ऐसी जगह पे आप उसको सजाना चाहेंगी जो खूबसूरती भी बढ़ाए और बेहतरीन भी नजर आए। अब मान लीजिए घर में कहीं ना कहीं ऐसा आईना है जहाँ पे आप जब एंटर करती हैं, आईने को देखती हैं, मुस्कुराती हैं, थोड़ा सा लग जाती हैं, और कोई ऐसा भी आईना है जो बेचारा ऐसे ही पड़ा हुआ है, मतलब उसको कोई ध्यान देने वाला नहीं, सिर्फ लोग उसको अपने में, अपने आप को उसमें देखते हैं लेकिन उसको कोई नहीं देखता कि वो क्या चाह रहा है, वो भी तो सजना चाह रहा है। तो कोई ऐसा पॉट है जो आपके पास रखा है, उसमें आप नजर बट्टू बना दीजिए, आजकल बहुत ट्रेंड कर रहा है, उसके बाद उसमें आप बेल लगा दीजिए, फिर वो बेल जब धीरे धीरे बड़ी होगी तो जो मिरर है आपका उसके साइड को वो कवर कर लेगी, जब वो हरा भरा आईना जो होगा उसमें जब आप सुबह सुबह तैयार होंगी और आईने में जब आप उसे देखेंगे, आईना भी इतरा रहा है, आप भी इतरा रही हैं, वो भी खूबसूरत लग रहा है, आप भी खूबसूरत लग रही हैं, घर भी अलग इतरा रहा है, यानी सब लोग इतरा रहे हैं, क्यों, क्योंकि सब लोग बड़े खूबसूरत नजर आ रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप थोड़ा सा दिमाग लगा के उसको शामिल कर सकती हैं। मान लीजिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो वास है वो बहुत पुराना हो गया है, उस पर थोड़ी सी आप अपना कलाकारी कर लीजिए, थोड़ा सा पेंट कर लीजिए, पेंट करने के बाद उसके अंदर भी आप पौधे लगा दीजिए, कुछ नहीं है तो आप आर्टिफिशियल प्लांट्स उसमें लगा सकती हैं, लेकिन उसका एक्चुअल में जो यूज है ना वो तो एटलीस्ट हो जाएगा ना, जब उसका आप यूज कर लेती हैं, आप खुद अपनी चीजों को जब इस्तेमाल करती हैं, दूसरे इससे पहले कि दूसरे आप उस चीजों को वेस्ट समझ के फेंक दें। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए, जो चीज घर की औरतें करती हैं, महिलाएं करती हैं, और बच्चे जब वो देखते हैं तो उनके दिमाग में भी नए नए आइडियाज आते हैं। तो ये जो कुछ आइडियाज हैं, जब आप बच्चों को साथ में लेके बैठेंगी, थोड़ा सा बच्चों को काम में लगाएंगे, बच्चे भी बड़े होते होते ये सारी चीजें जो आपकी क्या बोलते हैं हुनर है उसको देखेंगे, आपका जो स्टाइल है उसको देखेंगे, तो वो भी अपनी जिंदगी में इसको जरूर शामिल करेंगे। और अब जो जिंदगी में वक्त है वो भी बहुत आगे आगे बढ़ता जा रहा है, आपको बता दें, यस 12:38 हो चुके हैं, प्रोग्राम चल रहा है शत्रुपा, सुनते रहिए स्टेशन ऑफ द नेशन 100.7 FM रेनबो।

0: मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं एक व्यवसायी हूँ और मेरी दुकान में चलता है सिर्फ एक ही चैनल FM रेनबो।
1: आई एम संध्या त्रिगुनी। बच्चे तो दीवाने हैं मेरी टीचिंग के, मगर मैं दीवानी हूँ रेनबो FM की।
2: मेरा नाम आदित्य है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। पढ़ते वक्त हरदम मेरे साथ FM रेनबो निभाता है, मुझे एंटरटेन करता है, ताज़ा जानकारियाँ भी देता है। That's why I love FM रेनबो।
3: ये तो सुन रहे हैं FM रेनबो और आप
4: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
5: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

जी 12:47 हो चुके हैं और सच में वक्त यहाँ पर आकर बिल्कुल पता नहीं चलता है। मतलब घंटे जो है ना वो ऐसे लगते हैं जैसे ऐसे सेकंड्स जो है वो बीत गए हों। और आज हम बात कर रहे हैं कि भाई आप अपने घर को कैसे सजा सकते हैं। घर सिर्फ एक छोटा सा है, यानी GHAR घर, या फिर अगर आप हिंदी में कहें तो घा और घर, लेकिन इसके अंदर इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी चीजें हैं कि अगर एक चीज भी आपने मिस कर दी, एक चीज पर भी आपने ध्यान नहीं दिया, तो फिर भाई बहुत परेशानी उठानी पड़ सकती है। अब देखिए सजावट की बात हो गई, लेकिन अब गर्मी है, ये बिल्कुल मत भूलिए कि गर्मी से हमने बात शुरू की थी। और गर्मी में क्या होता है ना कि कीड़े मकोड़े जो हैं वो भी तो भाई कहीं ना कहीं जाएंगे, तो घर में तो आएंगे भाई, आपके भी घर में आएंगे, मेरे घर में भी आएंगे। अब गर्मी उनको भी लग रही है, अब ऐसे में क्या है, मच्छर हैं, मक्खियां हैं। देखिए मक्खियां समझ में नहीं आता आ कहां से जाती हैं, इधर आम कटेगा, इधर मक्खियों के जो हस्बैंड है ना मक्खे वो भी चले आते हैं, और इतने ज्यादा आते हैं, इतने ज्यादा आते हैं कि लोग सोचते हैं कि भाई कैसे जो दशहरी का है लुत्फ लिया जाए। तो चलिए भाई मच्छर है मक्खियां हैं, अब जब मच्छर आ रहे हैं मक्खियां आ रही हैं तो कॉकरोच के पीछे रहे वो भी आते हैं। अब घर में क्या होता है ना कि ये परेशानियों का कारण बन सकते हैं, इसलिए घर के आसपास अगर पानी जमा हो रहा है तो बिल्कुल मत होने दें। खिड़कियों पर आपको जाली अगर लगवानी है, नहीं लगवानी है अगर आपको लोहे की जाली, तो फिर आप जो आजकल आर्टिफिशियल चल रही है बहुत ही हल्की वाली जालियां चल रही है उनको भी आप लगा सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि नियमित सफाई का बहुत ध्यान रखना जरूरी है। अब नियमित सफाई में क्या है, नीम का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, काफूर यानी कपूर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारी नेचुरल चीजें ऐसी हैं, ऐसे ऐसे अरोमा हैं जिनको आप इस्तेमाल करके अपनी जो ये जो कीड़े मकोड़े हैं ना बिना बुलाए मेहमान इनको आप दूर कर सकते हैं। अब क्या है कि भाई गर्मी है तो जो घर का इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उन पर भी गर्मी का असर पड़ता है, ऐसा थोड़ी नहीं कि आपको गर्मी लग रही है उनको नहीं लग रही, इसलिए बहुत ज्यादा लोड लेने वाले जो उपकरण हैं जैसे कि रेफ्रिजरेटर है, एसी है, कूलर है, उसकी सही वायरिंग है कि नहीं है, उसका जो वेंटिलेशन है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, किसी भी तरह की अगर आवाज आ रही है, मान लीजिए आप प्रेस कर रहे हैं अजीब तरह की आवाज आ रही है, आप सोच रहे हैं अरे होगा हमें तो देर हो रही है प्रेस कर लेते हैं, तो क्या है कि कभी कभी ऐसी चीजें हैं जो बताती हैं कि भाई हम परेशान हैं अंदर से हमें कुछ करो। तो किसी भी तरह की अगर स्पार्किंग होती है या ओवरहीटिंग नजर आपको आ रही है तो फौरन आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिशियन से कॉन्टैक्ट करना है। अब दूसरी चीज ये है कि घर की छत, अब छत की भी बात कर ली जाए, भाई घर में जो छत है उसमें भी बहुत जरूरत है कि घर की देखभाल कर ली जाए, छत की देखभाल कर ली जाए। देखिए पानी की जो अहमियत है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए घर की जो पानी की टंकी है, पहली बात तो ये कि अगर ओवरफ्लो हो रही है तो उसको उससे बचाइए, पानी की बहुत ज्यादा अगर आप जाया कर रहे हैं, पानी को बर्बाद कर रहे हैं तो ये भी बहुत नुकसानदेह है। दूसरी चीज ये है कि जो घर की पानी की टंकी है उसकी सफाई कराना भी बहुत जरूरी है। और आजकल क्या है ना कि अगर काई वाई लगने का डर है, गंदगी का डर है ना, तो सबसे इजी ट्रिक है वो आपको हम बता दें, हर साल हम बताते हैं कि जामुन की जो लकड़ी होती है उसको अगर आप अपनी पानी की टंकी में डाल देते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से आप महफूज रह

सकते हैं, बहुत सेफ रह सकते हैं। दूसरी चीज क्या है ना कि जो पानी प्रदूषित होता है ना वो भी नहीं होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप, पहली बात कि जो आपकी पानी की टंकी है उसकी सफाई करना जरूरी है। दूसरी चीज जामुन की लकड़ी आप उसमें डाल दीजिए। दूसरी चीज ये है कि घूम फिर के हम कहाँ आते हैं, क्योंकि वक्त हो चला है ऐसा कि भाई खाना बन रहा है, सीटियाँ आ रही हैं, चावल कहीं पे चढ़े होंगे, कहीं पे जल्दी जल्दी सैलड काटी जा रही होगी, कहीं पे लोग सोच रहे होंगे आज कुछ खिचड़ी बनती है, चार उसके साथ बूंदी रायता सैलड और साथ ही साथ घी का तड़का। हाँ क्या बात है, मुँह में पानी आ गया। अब किचन की, भाई किचन का रुख करते हैं, किचन की बात करते हैं, तो गर्मियों में खाने पीने की जो चीज़ें हैं ना वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। इसलिए हमेशा रेफ्रिजरेटर की जो सफाई है वो आपको ध्यान से रखना है, उसका सही जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन करना है, बहुत ज़रूरी है। बचा हुआ जो खाना है ना उसको खुले में बिल्कुल नहीं रखना है। फल सब्जियों को धोकर बहुत अच्छे से रगड़ रगड़ कर धो लीजिए, उसके बाद ही उसको फ्रिज में जगह दीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें घर को घर बनाने में कामयाबी देती हैं और घर को घर जैसा फील कराती हैं। तो भाई 12:52 हो गए हैं, अब घर की बातें हो गई हैं, अब खाने की बात कर ली जाए। और इसी से रिलेटेड मेरे जहन में एक सवाल आया कि आपसे पूछ लिया जाए कि अगर इस दुनिया में अंडा और आलू ना होता तो आप क्विक सब्जी कैसे बनाते, मतलब झटपट कौन सी रेसिपी आप बनाते हैं। आप हमें शेयर कर सकते हैं fmakashwani.lucknow@gmail.com पर मेल करके। सवाल मेरा आज का ये है, जो प्रोग्राम है नेक्स्ट जिसका नाम है होटो पे तेरी बात, उसमें मेरा सवाल यही है कि अगर इस दुनिया में अंडा और आलू ना होता तो आप कौन सी ऐसी डिश है जो तुरंत तैयार करते। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग से जो जवाब है वो मेरे पास पहुंचने वाले हैं। फिलहाल हम यहाँ पर अभी स्टे कर रहे हैं और आपको भी क्या करना है, स्टे कनेक्टेड कहाँ विद रेनबो 100.7 FM सुनते रहिए।

नमस्कार। दोपहर के 1 बजे हैं, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में देशभर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। चर्चा में शासन, डिजिटल, सार्वजनिक ढांचे और साझेदारी सहित प्रमुख मुद्दों के समुचित कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बैठक में शामिल हैं। आगरा से सटे राजस्थान में भरतपुर रियासत के नरेश राजा सूरजमल द्वारा

265 वर्ष पूर्व आगरा किले पर की गई जीत की याद में प्रदेश सरकार उनके शौर्य को विजय दिवस के रूप में मनाकर याद करेगी। कल आगरा किला परिसर में जहांगीर महल के सामने स्थित लॉन में कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह भाग लेंगे। पर्यटन विभाग को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से आयोजन के लिए अनुमति मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर वाराणसी में विभिन्न विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं के शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में गिरिजा देवी सांस्कृतिक संकुल चौका घाट में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पीएम स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाना है। वहीं उन्नाव में भगवत नगर विधानसभा क्षेत्र में आज मोदी योगी सरकार आपके द्वार महाजनसंपर्क अभियान चलाया गया। इस दौरान विधायक आशुतोष शुक्ला ने लोगों से सीधा संवाद किया और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। अभियान के अंतर्गत विधायक ने बस्तियों में वंचितों और दिव्यांगजनों से मुलाकात कर जरूरतमंद दिव्यांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई। शाहजहांपुर में योग दिवस 2026 के सफल आयोजन को लेकर जिला प्रशासन और आयुष विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आज स्पोर्ट्स स्टेडियम शाहजहांपुर में विशेष योग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें खेल प्रशिक्षकों को कॉमन योग प्रोटोकॉल का प्रशिक्षण दिया गया। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए FM रेनबो घंटे तरन्नुम के साथ।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: जी 1:03 हो चुके हैं, प्रोग्राम शुरू हो चुका है होटो पे तेरी बात। और आज हमने आपसे सवाल किया है कि अगर इस दुनिया में अंडा और आलू ना होता तो आप कौन सी ऐसी डिश है जो झटपट बना लेते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि कुछ ही देर में आप सुनेंगे इलाकाई खबरें और आपके इस सवाल के जवाब का हमें है बेसब्री से इंतजार। आप हमें मेल कर सकते हैं fmakashwani@lucknow.com पर।

ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन कल्चर सेंटर में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। विकसित भारत के लिए टीम इंडिया के वज़ीर आज़म के नज़रिए के ऐन मुताबिक इस साल के मौजू विकसित भारत 2047 के लिए जामे इंसानी तरक्की में उम्र, खित्ते, सिन्फ या समाजी और माशी पस मंज़र के कता नज़र हर भारतीय की बहबूद और तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। इस

0: मीटिंग में मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए आला और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम रियासतों के लेफ्टिनेंट गवर्नर शिरकत कर रहे हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी इस मीटिंग में शामिल हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल भारत के सबसे तवील अरसे तक रहने वाले मुंतखब वज़ीर आज़म बन गए। इस मौके पर नई दिल्ली में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA के इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क के 140 करोड़ शहरियों की ख्वाहिशात ज़रूर पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि पहली बार मुल्क के अवाम ने देखा है कि जब कोई हुकूमत सही नीयत के साथ चलती है तो तरक्की भी तेजी से होती है।
1: NDA सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क मुसलसल तरक्की के नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है।
1: 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: इससे कबल मरकजी काबीना ने भी कल एक करारदाद पास करके वजीर आजम को मुबारकबाद दी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के कल भारत के सबसे तवील मुद्दत तक खिदमत करने वाले मुंतखब वजीर आजम बनने पर रियासत भर में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। वजीर आजम के पार्लियामानी हल्के वाराणसी में हुए मुख्तलिफ प्रोग्रामों पर पेश है एक रिपोर्ट।
2: वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के सबसे लंबे समय तक लगातार पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री बनने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित दीपोत्सव स्वच्छता एवं सेवा कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में भव्य दीपोत्सव और महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। दिन भर चले कार्यक्रमों के तहत विभिन्न मंदिरों, घाटों और सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता अभियान तथा पौधारोपण किया गया। वहीं अस्पतालों, वृद्धाश्रमों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और सेवा संस्थानों में फल, दवा, वस्त्र एवं आवश्यक सामग्री का वितरण भी किया गया। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
0: रियासती इलेक्शन कमीशन ने कल 3 सतही पंचायत इंतखाबात की हतमी वोटर लिस्ट शाया कर दी। रियासत में कुल 29.01 लाख वोटरों का इजाफा हुआ है। इसके साथ अब वोटरों की कुल तादाद 12,58,00,000 हो गई है, जबकि 2,03,00,000 नामों को हजफ किया गया है। वोटरों में इजाफे के मामले में बलिया रियासत में पहले नंबर पर रहा, जहाँ 1,60,376 वोटरों का इजाफा हुआ है। इन्वेस्ट यूपी और इन्वेस्ट इंडिया के दरमियान कल एक अहम मीटिंग हुई। इन्वेस्ट इंडिया की मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर निवृत्ति राय की मौजूदगी में मुनक्किदा इस आला सतही मीटिंग में रियासत में सरमायाकारी के नए मौके तलाश करने और दोनों तंजीमों के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजबूत बनाने पर तफसीली बातचीत की गई। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी को रागिब करने और सहूलत फराहम करने के लिए मुश्तरका हिकमत अमलियों पर खसूसी तबादला ख्याल किया गया। फुटबॉल का दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला फीफा वर्ल्ड कप 2026 आज से शुरू हो रहा है। यह टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में खेला जाएगा। यह फीफा वर्ल्ड कप का अब तक का सबसे बड़ा एडिशन है। इसमें पहली बार 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इससे पहले के एडिशन में 32 टीमें शामिल होती थीं। मुकाबले में मजमूई तौर पर 104 मैचेस खेले जाएंगे, जिनमें 72 ग्रुप मरहले के और 32 नॉकआउट मैचेस शामिल हैं। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। रियासत के गोरखपुर, जौनपुर, अंबेडकर नगर, संभल और पीलीभीत समेत कई जिलों में गुज़िश्ता रात से तेज़ हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। कुछ मकामात पर रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। इस दरमियान महकमा मौसमियात ने आज और कल कुछ मकामात पर बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का इम्कान जाहिर किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुईं।

जी 1:16 हो चुके हैं, प्रोग्राम चल रहा है होटो पे तेरी बात। और आज हमने आपसे सवाल ये पूछा है कि अगर इस दुनिया में अंडा और आलू ना होता तो आप कौन सी झटपट डिश तैयार करते हैं। आप हमें मेल कर सकते हैं fmakashaudhailakhnow@gmail.com पर। और फिलहाल मेरे पास बहुत सारे मेल हैं, बहुत ही खूबसूरत से इंटरेस्टिंग से आंसर्स हैं मेरे पास, पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले कोई जाए तो ले आए फ्रॉम द मूवी घातक आप तक।

1:22 हो चुके हैं, प्रोग्राम चल रहा है होठों पे तेरी बात। और आज हमने आपसे सवाल ये किया है कि अगर इस दुनिया में अंडा और आलू ना होता तो कौन सी ऐसी डिश है जो आप झटपट बना लेते हैं। और महिलाओं की सबसे बड़ी जो टेंशन होती है ना, वो यही होती है कि भाई सुबह क्या बनेगा खाने में, शाम को फिर क्या बनेगा, शाम को अगर बन गया तो फिर सुबह क्या बनेगा। बिस्तर पे जाती हैं, लेटती हैं, थोड़ी सी बातें अपने बारे में सोचती हैं, लेकिन उफ़ नहीं भाई सुबह क्या बनेगा, सुबह कहीं जाना है। ऐसा करते हैं आलू उबाल लेते हैं, आलू उबाल के रख लेते हैं और फिर आलू के पराठे बना लेंगे, या फिर ऐसा करते हैं आलू की सब्जी बना लेंगे, पूरी तल लेंगे, हो जाएगा। और बहुत जल्दी है तो भाई ऑमलेट बना लेंगे, अंडा फ्राई कर लेंगे, अंडा करी बना लेंगे, होता है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेचारे अंडे और आलू को झेलनी पड़ती हैं, मतलब हर चीज़ में अंडा और आलू नज़र आता है। तो फिर भाई अगर ये चीज़ें ना होती तब फिर क्या करते आप? तो बहुत सारे लोगों ने सवाल दिए, थोड़ा सा दिमाग लगाया, दिमाग अंडे खाते हैं तो जाहिर सी बात है कि दिमाग स्ट्रांग हो जाता है, तेज़ बढ़ जाता है। तो बहुत सारे लोगों ने दिमाग लगाया और बताया कि भाई अगर अंडा और आलू ना होता तो फिर क्या बनता। अब देखिए आलोक साहू जी हैं, वो लिख रहे हैं कि झटपट अंडे या आलू के बिना ख्याल ही बनते हैं यानी ख्याली ही बनते हैं। अब देखिए उनको भाई समझ में नहीं आया होगा कि अंडा ना हो आलू ना हो तो क्या बनाए, तो इन्होंने सोचा ख्याली पुलाव, अक्सर लोग बनाते रहते हैं तो ख्याल। तो आलोक जी भाई ख्याली पुलाव से पेट थोड़ी ना भरता है, और पुलाव और ये बिरयानी ये सब बातें जब आती हैं, बेसन की रोटी, लहसुन की चटनी, अब देखिए ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि लोग आज जिद पकड़ लेंगे कि आज बेसन की रोटी चटनी बनेगी, आज तो यही सारी चीज़ें खाई जाएंगी। लेकिन बाबू अंसारी जी हैं, उन्होंने भी मेल किया है, उन्होंने क्या लिखा है, लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम तरन्नुम, कैसी हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम बाबू साहब, बाबू अंसारी जी, और आपने हमें खैरियत पूछी इसके लिए शुक्रिया, बहुत अच्छे हैं आपकी दुआएं हैं। लिख रहे हैं कि इनको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है और आज के टॉपिक पर ये कहना चाहते हैं कि मुझे खाने पीने में चाय के अलावा कुछ बनाना नहीं आता। बताइए ये एज आपने लिखी नहीं, कितने साल के हैं आप, इतने साल से आप सिर्फ चाय पे डिपेंड हैं। बताइए अगर घर में कोई गुस्सा कर ले, मम्मी को गुस्सा आ जाए, या अगर आपकी जो बेटर हाफ हैं अगर हैं तो, या आएंगी तो, और तो फिर आप क्या करेंगे, चाय पी पी के गुजारा कर लेंगे इन्हीं ने लिखा है बस अम्मी जो भी बनाती हैं वो वही खाता रहता हूँ। देखा अम्मी के जो बनाती रहती वो ये खाते रहते हैं, ये खुद बना के कभी अम्मी को नहीं खिलाते हैं। तो भाई बाबू अंसारी साहब आज आप कुछ ऐसे डिश बताते कि कोई जल्दी से बन जाती तो अम्मी को खिला देते आप, अम्मी खुश हो जाती, लेकिन नहीं अम्मी बनाती हैं तो ये खाते हैं, अम्मी नहीं बनाएंगी तो ये चाय पे ही गुजारा कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपने मेल किया। रामराज जी का मेल आ गया है, लिख रहे हैं जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से रामराज, राजू, भानु, शंकर भैया, पप्पू, पासी, मनीष, नीरज, मधु, बजरंगी काका, लिख रहे हैं कि सबसे पहले हमारी तरफ से तरन्नुम बिटिया को प्यार भरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद रामराज जी, आपको भी मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप जरूर बताइएगा। लिख रहे हैं कि अगर हमारे यहाँ अंडा नहीं होता तो भाई बहुत सारी चीज़ों के नाम लिखे हैं, ये वही खा लेते हैं, समझ रहे हैं ना। अब जिस पे पूरी दुनिया ज्यादातर कहती है कि भाई इसका ये बन जाए, इसका वो बन जाए, और उसकी करोड़ों डिशेस तो हैं जो बन जाती हैं और लोग जल्दी जल्दी खा भी लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, झटपट बनने वाली जो डिश है वो आपने हमसे शेयर नहीं की है। अब बारी आती है महेंद्र दीपन जी की, लिख रहे हैं आदरणीय फेवरेट आरजी, क्या बात है, तरन्नुम मैम जी कैसी हैं आप, बिल्कुल अच्छे हैं, प्यार भरा नमस्कार कर रहे हैं। महेंद्र जी आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार, ग्राम रूड़ जिला नागौर राजस्थान से है, नियमित श्रोता है जी, बिल्कुल पता है हमारे जितने भी एंकर

सबको पता है कि महेंद्र दीपन जी जो हैं वो रेगुलर लिसनर हैं हमारे और हमेशा हमें मेल करते हैं, मैसेज करते हैं, कॉल आई थिंक नहीं करते हैं शायद, नहीं करते होंगे कॉल, तो कोई बात नहीं, उनको लिखना अच्छा लगता है तो अच्छी बात है कि आप लिखते हैं, मेल करते हैं। लिख रहे हैं कि आज का जो विषय है वो काफी दिलचस्प है। मेरा कहना है कि अगर आलू और अंडा दोनों ही गायब हो जाए तो मैं सीधे देसी जुगाड़ पर आ जाऊंगा। अच्छा, देसी जुगाड़ क्या है ये बता रहे हैं कि सबसे पहले तो पनीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर उस पर हल्का सा नमक, लाल मिर्च, चाट मसाला छिड़कूंगा और फिर क्या करूंगा, तवे पर थोड़ा सा सेक दूंगा। बिना ज्यादा मेहनत के एक स्वादिष्ट और प्रोटीन से भरपूर डिश तैयार हो जाएगी। और अगर पनीर भी ना मिले तो फिर बेसन का चीला सबसे बढ़िया। देखिए कितने समझदार है महेंद्र जी कि वो बता रहे हैं कि अगर पनीर नहीं मिलेगा तो बेसन का चीला बना लेंगे, सबसे बढ़िया ऑप्शन है। बेसन के घोल में थोड़ा सा प्याज, हरी मिर्च, धनिया तवे पर फैला दूंगा और कुछ ही मिनटों में गर्मा गर्म स्वादिष्ट और पौष्टिक नाश्ता तैयार हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद जी महेंद्र जी, आपने लिखा और बहुत बहुत आपका शुक्रिया। अब किसका आया, सर जी सादर प्रणाम, मैं पिंकू सोनी, हमें आपके टॉपिक पे कहना है कि मैं अंडा नहीं खाता हूँ और रही आलू की बात तो मुझे पनीर बहुत अच्छा लगता है, मैं वही खाऊंगा। सो थैंक, मैं टिकैत नगर बाराबंकी से हूँ और मैं कुछ नाम है जिनको ये लेना चाहते हैं। अच्छा, कुलदीप, आकाश, रिंकी, पिंकी जी और सभी लिसनर को। देखिए जरूरी नहीं है कि आप अंडा ही खाएं, लेकिन यहाँ पे हमने दोनों चीजों को लिया है, अंडा और आलू। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई आलू ना खाए। बहुत सारे लोग हैं भाई देखिए जिनको डॉक्टर ने कहा है भाई आलू मत खाओ तो अलग है, लेकिन अंडा और आलू के बिना आप इमेजिन कर सकते, कोई अगर ऐसी डिश है, ये चीला है या ये बेसन की रोटी है वो ठीक है, लेकिन झटपट की हमने अगर बात की है तो बहुत सारे दिमाग में जो है ना चीजें उनको आप थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो आप बता सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी डिश है जो झटपट तैयार हो सकती है। फिलहाल आप हमें मेल कर सकते हैं FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: और सच में आफत ही हो जाती है अगर अंडा ना हो, अगर आलू ना हो तो इंसान की इतनी टेंशन होती है, इतनी टेंशन होती है कि भाई क्या बनाया जाए जो झटपट बन जाए। और बहुत सारे लोगों ने सवाल का जवाब दिया है, किसी ने कहा भाई पनीर बना लेंगे, किसी ने कहा कि चीला बना लेंगे, लेकिन भाई कुछ लोग हैं जो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो बिल्कुल बता देते हैं कि हमें क्या बनाना पड़ेगा। पवन कुमार जी हैं, लिख रहे हैं, नमस्ते मैम, मैं पवन कुमार ग्राम सिंहपुर सिधौली सीतापुर से। आपको भी बहुत ही प्यार भरा हमारा नमस्ते पवन जी, और लिख रहे हैं कि आप कैसी हैं, बिल्कुल अच्छे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी बहुत ही अच्छे होंगे, कुशल मंगल होगा सब। ये लिख रहे हैं कि भाई अगर आलू ना होता, अंडा ना होता तो हम चावल फ्राई कर लेते और खिचड़ी पका कर खा लेते हैं। यानी चावल बने रखे होंगे तभी तो आप उसको फ्राई करेंगे, खिचड़ी बनाएंगे ना। हमने आपसे ये सवाल किया है कि अगर झटपट कौन सी डिश है ऐसी जो आप तुरंत बना लेंगे और उसको खा लेंगे। अब गुलफशा सिद्दीकी जी का भी मेल आ गया है, लिख रहे हैं कि तरन्नुम अप्पी, अगर आलू ना होता तो हम महिलाओं का क्या होता। वही तो हम सवाल कर रहे हैं कि अगर आलू है बेचारा तो सोच लीजिए कितनी वो नैया पैर लगाता है खाना बनाने की। और लिख रहे हैं कि जब आलू है तब तो कुछ समझ में नहीं आता था, नहीं आते हैं, आज क्या बनाऊं, नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। आलू ने हम महिलाओं की जिंदगी आसान बना कर रखी है। भाई गुलफशा जी, ये सवाल का जवाब नहीं दिया आपने, ये तो आपने आलू की तारीफ कर दी। और हमने आपसे ये सवाल किया है कि भाई ऐसी कौन सी डिश है अगर अंडा और आलू ना होता तो आप उसे बनाकर खाते। और मैम राम राम सभी लिसनर्स को, वी ऑल लीटो रेडियो फ्रॉम बाजार शुक्ल। अरुण कुमार जी बहुत जल्दी में लग रहा है, इन्होंने सिर्फ अपना एड्रेस लिखा है, वो भी गलत सलत लिख दिया, मतलब सही से लिखा नहीं, पढ़ने में नहीं आ रहा है, लेकिन आपने क्या लिखा क्या समझ में नहीं आ रहा। रामेश्वर जी का मेल आ गया, लिख रहे हैं कि तरंगम जी को, बहन को प्यार भरा सादर प्रणाम, बहुत ही प्यार भरा सादर प्रणाम आपको रामेश्वर जी, कैसे हैं आप। और लिख रहे हैं कि हम आपको प्रोग्राम बराबर सुन रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा है, बिल्कुल बराबर सुनते रहिए और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। लिख रहे हैं कि अगर हम ना अंडा खा सकते हैं ना आलू खा सकते हैं, डॉक्टर ने रोक दिया है तो सिर्फ पनीर खा सकते हैं। ग्राम पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात से रामेश्वर जी, आप अच्छी बात है, अगर डॉक्टर ने आपको मना किया तो बिल्कुल मत खाइए आप आलू और अंडा, लेकिन और सारे लोगों को थोड़ी ना मना किया। अगर मान लीजिए कोई और आ जाता है और आपसे कहा जाए कि भैया जल्दी झटपट कोई डिश तैयार करो, तो आपने ये नहीं बताया रामेश्वर जी कि आप क्या तैयार करेंगे। और मुंगीसापुर कानपुर देहात से हैं रामेश्वर कठेरिया, उमा कांति कठेरिया, कमलेश, निशा, प्रज्ञा, प्रतिमा, वेद बाबू कठेरिया और समस्त कठेरिया परिवार। और बहुत बहुत धन्यवाद जी मेल करने के लिए। सत्यनारायण कुरील जी, देखिए कितने दिन से याद कर रहे थे कि कहाँ चले गए सत्यनारायण कुरील जी, ना कोई मेल कर रहे हैं, ना कोई सवाल कर रहे हैं, ना कुछ पूछ रहे हैं, और इतना रटा हुआ है इनका जो एड्रेस है वो है झीलों की नगरी उदयपुर, राजस्थान से हैं। आज इन्होंने देखिए मेल किया है, लिख रहे हैं प्यार भरा नमस्कार राधे राधे। सत्यनारायण कुरील जी आपको भी प्यार भरा नमस्कार और राधे राधे। आगे ये लिख रहे हैं कि अगर आलू और अंडा गायब हो जाए तो मैं जल्दी से राइस फ्राई बना लूंगा। अब होश में आए हैं सत्यनारायण कुरील जी। खाने की जब बात होती है ना तो इंसान कितना भी डल क्यों ना हो, कितना भी उसका मूड ना हो रहा हो, लेकिन खाने की जब बात आती है तो खाते खाते बस ऐसा लगता है। और मेरा तो ये होता है कि अगर हमें भूख लग रही है और खाने
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने
0: करती हैं। और आगे जावेद साहब का भी मेल आ गया, जावेद अख्तर साहब हैं और ये हमेशा याद दिलाते हैं जावेद अख्तर साहब की, यानी जो हमारे क्या जो राइटर हैं जो गाने लिखते हैं जावेद अख्तर साहब। आगे लिख रहे हैं तरन्नुम बाजी, आपकी खुशनुमा अंदाज में होठों पे तेरी बात कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आज का टॉपिक इनको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। लिख रहे हैं कि अगर हम अंडा आलू के अलावा कोई भी टिप्स बनाते हैं तो झटपट सूखी हुई सूखी हुई रोटी को देसी घी में छौंक कर लौंग इलायची चीनी मिलाकर उसे कतलमा बना लेते हैं। अच्छा, ये डिश तो पता नहीं थी भाई, क्या बना लेते हैं? कतलमा बना लेते हैं। रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से हैं। सूखी रोटी को देसी घी में छौंक कर लौंग इलायची चीनी मिलाकर उसे कतलमा बना देते हैं, क्या बात है। ये तो बनाएंगे, लेकिन सूखी रोटी तो रखी नहीं घर पे, क्या करेंगे, एक काम करेंगे बनाएंगे फिर उसको, रोटी को हवा में रखेंगे, जब सूख जाएगी तो जो आपने हमें डिश बताई ना

उसको आज हम जरूर ट्राई करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेल करने के लिए। शिव पूजन लाल जी का मेल आ गया, लिख रहे हैं, हेलो डियर आरजे मैम जी, गुड आफ्टरनून, कहो कैसी हैं आप। जी बिल्कुल ठीक है शिव पूजन लाल जी, आपको भी प्यार भरा नमस्कार, आप कैसे हैं, आपने हमें बताया नहीं। और विलेज सानी घुआ लखीमपुर खीरी से हैं, आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा लग रहा है इनको, तो लिख रहे हैं कि मैं तो जल्दी में होता हूँ तो मैं कुछ नूडल्स बना लेते हैं और बनाता हूँ, या फिर उड़द की खिचड़ी बनाता हूँ। हाँ, उड़द की खिचड़ी की बात कर दी आपने शिव पूजन लाल जी, आज ही सोच रहे थे कि उड़द की खिचड़ी बना के खाएंगे, लेकिन देखिए अब बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। आज जाके उड़द की खिचड़ी बनेगी उबली हुई, उसके साथ सलाद होगी और देसी घी का जो डोरा डालते हैं ना वो होगा, और पापड़ होगा एकदम फ्राई मस्त, और साथ ही साथ बूंदी का रायता होगा, उसमें कद्दूकश किया हुआ खीरा पड़ा होगा। आज खा के, आज तो बना के रहेंगे ये खिचड़ी। हिंदुस्तानी ब्रह्मेश्वर सोनी जी हैं, लिख रहे हैं कि मैम जी सादर प्रणाम, आपको भी प्यार भरा प्रणाम, इमोजी बड़े हंसे के भेजे। लिख रहे हैं कि मैं पिंकू सोनी और हम बनाना नहीं जानते हैं, भैया खा लेते हैं। अच्छा, बना के भैया खा लेते हैं, और जल्दी में मैं भी नूडल्स बना लेता हूँ। तो देखिए अब नूडल्स तो बहुत नुकसानदेह चीज़ें हैं, लेकिन चलिए ठीक है आप बना लेते हैं तो फिर कोई बात नहीं, बना के खाइए। और आप क्या कहें हम बताइए। सतीश अनेजा जी हैं, लिख रहे हैं, सलाम तरन्नुम बैना जी, आपको भी प्यार भरा सलाम सतीश जी, प्रणाम, कैसे हैं आप। और लिख रहे हैं, आपकी आवाज़ सुनी दिल खुश हो गया, क्या बात है। इसी बात पे कहेंगे कि ये जो दिल खुश वाला मेल आया मेरे पास, इसे मेरा भी दिल बाग बाग हो गया, बहुत खुश हो गया है। लिख रहे हैं कि अगर आलू ना भी हो तो प्याज के पराठे बना लेंगे, देखा कितने समझदार हैं सतीश जी, प्याज के पराठे, क्या बढ़िया रेसिपी बताई आपने। और आलू तो बहुत चालू है, वो हर पल जहन में रहता है, आई लव आलू। सतीश जी को आलू बहुत पसंद है, चंडीगढ़ सिटी से हैं सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपने हमें मेल किया। और प्याज के पराठे, और भाई देखिए बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इतनी सारी चीज़ें आप लोगों ने बताई हैं और भूख इतनी तेज़ी से लग रही है। अंजू जी हैं, लिख रहे हैं, हेलो तबस्सुम, हाँ क्या बात है, मेरा नाम इन्होंने चेंज कर दिया, तबस्सुम पहले थी तबस्सुम, लेकिन अब नहीं है, तरन्नुम है, लेकिन तरन्नुम के चेहरे पे तबस्सुम हमेशा रहती, मुस्कुराहट रहती है, तो इसलिए आपका भी जो मेल है उसे पढ़ लेते हैं। लिख रहे हैं, अगर आलू और एग्स ना हो तो टमाटर सेव की सब्जी आराम से बन सकती है, एंड इजी एंड टेस्टी होती है, बैगन का भरता फ्राई भी इजी एंड कम टाइम में बन जाता है, एंड प्याज की चटनी सिलबट्टा में 5 से 10 मिनट में बन जाती है, एंड फ्रूट सलाद इंक्लूड प्याज सिरका एंड मेनी मोर इजी ऑप्शंस आर देयर। क्या बात है अंजू जी, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आपने बताई, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने हमें मेल कहाँ से किया, ये आपने हमें नहीं लिखा, तो हम आपका जो मेल है ना उसे ज़रूर पूरा एड्रेस के साथ शामिल करते हैं, लेकिन एनीवेज बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब इतनी अच्छी अच्छी बातें करने के बाद एक ढिंचक सा ट्रैक, आप तक 1:44 प्रोग्राम हो तो बेतरी बात करें, मैं आपके साथ सुनते रहिए द हार्ट बीट ऑफ लखनऊ।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

जी हाँ बिल्कुल, जुमरात है आज और आपके साथ है मेरा और आपका आज, और साथ ही साथ मेरे पास हैं बहुत सारे मेल। और आज हमने आपसे सवाल ये किया था कि अगर इस दुनिया में अंडा और आलू ना होता तो कौन सी ऐसी डिश है जो आप झटपट बना लेते। कुछ लोगों ने हमें मेल किए हैं, कुछ लोगों ने ऐसे मेल किए हैं जिसका कोई भी कह सकते हैं सिरा नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी गुजारिश रहती है कि भाई आप हमारा मेल शामिल कर लीजिए। आप लोग मेल करते हैं अच्छा लगता है, लेकिन जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आपसे किया जाता है अगर आप उस पर हमें आंसर करते हैं तो और भी अच्छा लगता है। एनीवेज बहुत सारे मेल हैं जो हमारे पास अभी भी हैं, वक्त बहुत कम है लेकिन जल्दी से मेल पढ़ लेते हैं। सुल्तान रजा साहब का मेल है, लिख रहे हैं सब्जी मंडी बरेली से हैं सुल्तान रजा, अकबाल रजा, जीशान, अफजल, मोनिस रजा, सादिक रजा, मम्मी पापा। और लिख रहे हैं कि घर में जब कोई मेहमान आता है तो मैं मम्मी सबसे पहले दाल चावल बहुत जल्दी तैयार कर लेती हैं। सुल्तान, मम्मी दाल चावल बहुत जल्दी तैयार कर लेती होंगी लेकिन उतनी जल्दी नहीं जितनी जल्दी आलू और अंडे बन जाते हैं। फिलहाल आगे लिख रहे हैं कि आपने सवाल ऐसा किया है कि मुंह में पानी आ गया है और पेड़ के नीचे आमिया की चटनी के साथ ये कुछ खाने की तैयारी में है। बिल्कुल खाइए, लेकिन पेड़ किस चीज का ये भी ध्यान रखिएगा। ऐसा तो नहीं कटहल का या फिर नारियल का पेड़ है और आप उसके नीचे सोच रहे हैं कि बहुत हम महफूज बैठे हैं और अचानक से अगर कटहल गिर जाए खुदा ना खास्ता तो फिर सोचिए क्या होगा। फिलहाल अच्छा लगा आपने हमें मेल किया, बहुत बहुत शुक्रिया। शिव प्रकाश जी हैं त्योजा खागा फतेहपुर से, कार्यक्रम इनको अच्छा लग रहा है। आलू रंडा नहीं होता तो हम तहरी बना के खा लेते। शिव प्रकाश जी तहरी बनाते तो किस चीज की बनाते ये आपने मेंशन नहीं किया हमें। हमें लग रहा है शायद सोयाबीन की तहरी बना लेते, सोयाबीन भी बहुत जल्दी बन जाता है। और साथ ही साथ एक और मेल आया था, अंगद यादव जी का आया था, लिख रहे हैं कि मैं शिवरामपुर आजमगढ़ यूपी से हूँ, लिख रहे हैं कि मैम सूजी बना सकते हैं। ये बहुत एकदम बिल्कुल परफेक्ट आपने बात कही है कि सूजी जो है ना वो बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। सूजी का हलवा हो या फिर नमकीन, अगर आप सूजी की कोई भी डिश बनाना चाहते हैं तो बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने हमें मेल किया। 1:56 हो चुके हैं, प्रोग्राम होटो पे तेरी बात को वाइंड अप करने के लिए दीजिए इजाजत। तरन्नुम को मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में जिसका नाम है हॉट मेल, सो स्टे कनेक्टेड विद रेनबो। I'm searching for love.

0: नमस्कार। दोपहर के 2 बजे हैं, सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को
1: वल्सा विलियम्स विद द मिडडे न्यूज। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi stresses collective efforts of center and state key to realizing Vikasit Bharat vision. Chairs 11th Governing Council meeting of Niti Aayog in New Delhi. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav says government making efforts to strengthen Akashwani and Doordarshan coverage across border regions. Inaugurates 20 kilowatt FM transmitter in Rajasthan's Jaisalmer. Center waives excise duty on certain variants of ethanol blended petrol. Another TMC MP, Prakash Chigwaraik, resigns from Rajya Sabha. First maiden India Airbus C-295 aircraft completes maiden test flight from Vadodara.

0: tensions in West Asia. Explosions were reported in and around Bandar Abbas and on Keshm Island as the confrontation entered a more dangerous phase. In response, Iran launched missile and drone attacks on several U.S. military facilities across the region, calling them retaliation for the latest American action. Iranian military authorities also declared the Strait of Hormuz closed to commercial shipping and warned that vessels attempting to pass through could be targeted. However, the United States rejected the claim. More from our West Asia correspondent.
1: The military confrontation is now spreading beyond Iran's borders. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps claimed it launched missiles and drone attacks against United States military facilities in Bahrain, Kuwait and Jordan in retaliation for the latest American strikes. Iranian state media reported that 12 ballistic missiles were fired at Jordan's Muwaffaq Salty Air Base, with Tehran claiming damage to military facilities and aircraft shelters. However, neither Jordan nor the United States has confirmed those claims. Reports indicate that air defense systems were activated and interceptions were carried out. Kuwait temporarily suspended air traffic as a precaution after reporting hostile air targets in its airspace, while Bahrain issued security alerts and reported interceptions of incoming drones. Reports.
0: Sports fans across the world are set for a month-long football spectacle as the 2026 FIFA World Cup kicks off tonight at the historic Estadio Azteca in Mexico City.
2: This edition of the World Cup will be the biggest in history, with an expansion from 32 to 48 teams. A record 104 matches will be played, with 72 in the group stage and 32 in the knockout rounds across host nations, United States, Canada and Mexico. The three host nations qualified automatically, while 45 teams earned their places through a demanding two-year qualification journey. The competition features 12 groups of four teams each. The top two teams from every group, along with the eight best third-place teams, will advance to the round of 32. This expands the knockout stage to 32 teams for the first time in tournament history. The grand final is scheduled for 19th of July, promising a thrilling conclusion to football's greatest celebration. This World Cup is also expected to be one of the most challenging in history, with teams facing demanding conditions across three countries, including long travel distances, varying climates, different altitudes, and shifting time zones. Over the decades, only eight nations have lifted the FIFA World Cup trophy: Brazil, Italy, Germany, Spain, Argentina, England, France and Uruguay, the inaugural champions. Among the most unfortunate sides in World Cup history remain the Netherlands, who have reached three finals but are yet to win the title despite producing generations of world-class talent. From history to high stakes, from legends to new challengers, the stage is set for football's ultimate battle. Shagun Chopra from Sports Desk.
0: And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi stresses collective efforts of centre and states key to realising Vikasit Bharat vision, chairs 11th Governing Council meeting of Niti Aayog in New Delhi. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav inaugurates 20-kilowatt FM transmitter in Rajasthan's Jaisalmer. Centre waives excise duty on certain variants of ethanol-blended petrol. First made-in-India Airbus C-295 aircraft completes maiden test flight from Vadodara. And with that, we end the midday news.
3: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath, main Lavleen Nigam. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण. उन्होंने नई दिल्ली में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की. सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है. राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया. सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया. तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिकबराइक ने राज्यसभा सदस्य पद से इस्तीफा दिया. भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने वडोदरा में पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की. अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मेक्सिको सिटी में शुभारंभ। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों का समुचित आदान प्रदान हो सके और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को बल मिले। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहले न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया। इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर भी बल दिया।
4: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर डीजी साहब से, राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचें आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेब्स ओटीटी है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खान पान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इम्प्लीमेंट करने वाले आप।
3: श्री वैष्णव ने कहा कि राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार और प्रसारण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए ये पहल शुरू की गई है।
4: करीब अपने 450 स्टेशन है पूरे प्रदेश में, उसमें से 200 स्टेशनों का काम करीब करीब पूरा होने को आया है। तो ये काम जो कि जन जन को, जैसे श्रद्धे अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना के गांव गांव तक सड़क पहुंचाई थी, वैसा ही आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छोटे से छोटे स्टेशन पर भी अच्छा काम करने के लिए दिन रात लगे। बड़े स्टेशनों का काम तो अपनी जगह है, मतलब जयपुर में एक तरीके से लोग आते हुए स्टेशन को भी देखेंगे, जैसे हवा महल देखने जाते, वैसे ही ये भी एक टूरिज्म का अच्छा अट्रैक्शन बनेगा और जनता को बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी।
3: सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि अब इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिशन कार्यक्रम को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने गुजरात के वडोदरा से पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने भारत में निर्मित पहले एयरबस C-295 के प्रथम सफल परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने

0: कहा कि यह एरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को भी दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी इंजीनियरों, तकनीशियनों और कर्मचारियों को बधाई दी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
1: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने बल देकर कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है।
1: भारत का मानना है कि ये दौर युद्ध का नहीं है और संघर्षों का एकमात्र समाधान बातचीत तथा कूटनीति है। जब बात आर्थिक जोखिमों की आती है तो इससे निपटने का तरीका मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और अधिक विविधता है, और ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि समुद्री व्यापार में कोई रुकावट न आए। साथ ही आतंकवाद के मामले में दुनिया को शून्य सहिष्णुता की नीति पर स्पष्ट रुख अपनाना होगा।
0: ओमान की खाड़ी में पलाउ ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाज एमटी सिटेबोलो पर अमेरिकी सेना के हमले में लापता हुए तीनों भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि हो गई है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि तीनों शव बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री सोनोवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बचाए गए चालक दल के सदस्यों को तुरंत स्वदेश वापस लाया जाए और मृतकों के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए शीघ्र भारत भेजा जाए। अमेरिका ने ईरान पर नए सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरान के मीडिया ने बंदर अब्बास, केशम द्वीप, मीनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है।
2: मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन अब ईरान की बॉर्डर से बाहर भी फैल चुका है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने क्लेम किया है कि उन्होंने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स लॉन्च किए हैं। ये लेटेस्ट अमेरिकन स्ट्राइक्स के रेस्पॉन्स में किया गया रिटेलिएशन है। ईरानियन स्टेट मीडिया के मुताबिक जॉर्डन के मुवाफक साल्टी एयरबेस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए गए और तेहरान का कहना है कि इसे मिलिट्री फैसिलिटीज और एयरक्राफ्ट शेल्टर्स को नुकसान पहुंचा है, लेकिन जॉर्डन या यूनाइटेड स्टेट्स ने क्लेम्स की अभी तक कंफर्मेशन नहीं दी है। कुवैत ने टेम्पररी तौर पर एयर ट्रैफिक सस्पेंड कर दिया। बहरीन से आए रिपोर्ट के मुताबिक इंटरसेप्शन के बाद डॉन डेब्री रेसिडेंशियल एरियाज में गिर गया, जिसे माइनर डैमेज और चोट लगने की रिपोर्ट्स हैं। मल्टीपल कंट्रीज में मिलिट्री एक्टिविटी रिपोर्ट होने और की शिपिंग लाइन्स पर प्रेशर बढ़ने के साथ ये फियर्स और बढ़ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट एक और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस फेज में एंटर कर सकता है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा और पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
3: गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी वित्तीय और व्यक्तिगत धोखाधड़ी के लिए AI द्वारा डीप फेक वीडियो का तेजी से दुरुपयोग कर रहे हैं। आमतौर पर साइबर अपराधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जॉब पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थानों को डीप फेक का पता लगाने के तंत्र को मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रणालियों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या SMS सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। यह भी आग्रह किया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन

0: की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत दे। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे सीमा पार से चलाए जा रहे दुष्प्रचार अभियानों से सावधान रहें। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से मेक्सिको सिटी में रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा।
2: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीम शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। ये विश्व कप इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण विश्व कप में से एक होने की भी संभावना है, जिसमें टीमों को तीन देशों में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें लंबी यात्राएं, बदलती जलवायु और बदलते समय क्षेत्र शामिल हैं। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। अन्य 45 टीमों ने 2 वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए अपनी जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी भाग में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज और कल तेज हवाओं के साथ गरज और ओलावृष्टि की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन तक उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश होने की आशंका है, जबकि केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दिन के दौरान गरज के साथ आंधी और ओलावृष्टि की संभावना है। 13 तारीख तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। इस बीच दिन के दौरान पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहेगी। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त दर्ज की गई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 116 अंक बढ़कर 74,099 और निफ्टी 18 अंकों के उछाल के साथ 23,233 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासित परिषद बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मेक्सिको सिटी में शुभारंभ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

और बिल्कुल सही बात है कि दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए, जाने कब कहाँ किसी को किसी से प्यार हो जाए, और नोबडी नोज कि क्या कब होने वाला है, ये हम और आप नहीं जानते। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कुदरत तय करती है और किस्मत पर पूरी तरह से डिपेंड होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो अचानक से आपके सामने आती हैं और आपका जो दिन है ना वो बना देती हैं, आपका मूड सही कर देती हैं, आपको बिल्कुल खुशबाश कर देती हैं। और ऐसे ही आपके मेल होते हैं, जब आते हैं हमारे पास तो दिल एकदम से खुश हो जाता है। इतनी अच्छी तरह से आप लोग मेल करते हैं, सजा कर संवार कर भेजते हैं, और इतना अपना जो प्रीशियस टाइम है उसमें से आप अपना टाइम निकालते हैं, हम लोगों को मेल करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कुछ लोग नाराज़ भी हो जाते हैं, उनकी नाराज़गी जाहिर है कि भाई बिल्कुल ठीक है, जा की वाली है, मतलब बिल्कुल उसमें जान है कि वो नाराज होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो भी मेल करते हैं। लेकिन आप लोग ही बताइए कि इतनी जल्दी, इतनी एक घंटे में इतने सारे जो मेल आते हैं आपके, वो तो पढ़ना हमारे बस की बात है, लेकिन उन सभी के जो मेल के गाने होते हैं उनको प्ले करना मुनासिब ही नहीं है कि आप लोगों के जो 1000 से ऊपर, 100 से ऊपर, 500 से ऊपर मेल आते हैं उनको हम लोग सारे गानों को शामिल कर लें। बताइए ऐसा पॉसिबल है? आप खुद ही कहेंगे कि नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिलहाल मेल पढ़ने का सिलसिला शुरू करते हैं। महेंद्र दीपन जी का मेल आ गया है। महेंद्र दीपन गाँव रूड़ जिला नगर राजस्थान से हैं, इनकी फरमाइश है, और साथ ही साथ डेडिकेट जो नाम है बाबू भाई अंसारी, सुरेश प्रजापत, दौलत गुर्जर, रोशनी रावत दीदी, बबीता राव दीदी। और इतना अच्छा लगता है कि आप लोगों की एक पूरी फैमिली बन गई है, आप लोग एक दूसरे को नाम प्रेफर करते हैं कि इनका नाम लिया जाए, इनका नाम लिया जाए, ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होती है। रविन्द्र मोहन दास जी का भी मेल आ गया है, किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहन।

आशा देवी, कोई भी गाना चलेगा इनके लिए। ताज मोहम्मद साहब का मेल आ गया है, मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर, राही, मेरा जहां, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से हैं। आपकी हमारी फरमाइश है, किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ताज मोहम्मद जी, आपने हमें मेल किया। बोधराज खोरवाल जी का मेल आ गया है, कमला रानी, बोधराज खोरवाल, भानु प्रकाश, गीतिका खोरवाल, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका मेल हम वैसे भी शामिल कर चुके हैं, इसलिए प्लीज अब आप हमें मेल मत कीजिए इस प्रोग्राम में। आप नेक्स्ट जो प्रोग्राम है शाम को, जो भी आप चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं। फिलहाल जो अब मेल आया मेरे पास, सीताराम कांगड़ा जी का, एकता कॉलोनी रोहतक से हैं सीताराम कांगड़ा, बबिता बोट, निकल कांगड़ा, तन्वी बोट, और गाने की फरमाइश के साथ ही थैंक यू भी बोला है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मेल किया। साई गायकवाड़ जी का है मेल, नमस्कार जी दीदी, आप कैसी हो? ऑटमेल बहुत बढ़िया चल रहा है, धन्यवाद जी। हरिहरण अलका याग्निक, और साथ ही साथ नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओंकार गायकवाड़, साई गायकवाड़, बहुत बहुत धन्यवाद जी मेल करने के लिए। जाकिर का मेल आ गया, हॉटमेल कार्यक्रम पेश करता बहन तरन्नुम जी को आदाब सलाम, आज के शानदार और लाजवाब कार्यक्रम में हमारी फरमाइश भी शामिल कर लीजिए। मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन निशा, शबिस्ता मोहम्मद, नसीब पलक लुबना और यश मंसूरी गाने की फरमाइश की है। बहुत सारे और भी मेल हैं लेकिन हम पढ़ेंगे उनको, लेकिन उससे पहले बहुत ही बढ़िया सा ट्रैक आया है हमारे पास, चलिए प्ले करते हैं।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: 2:46 हो गए हैं और जल्दी जल्दी मेल पढ़ लेते हैं इससे पहले कि वक्त बहुत आगे बढ़ जाए। विनीत कुमार जी का भी मेल आ गया है मेरे पास और ये मेल कहां से किया इन्होंने, विनीत कुमार, ग्राम अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर, हॉट मेल प्रस्तुत करने वाले आरजे को शुभ दोपहर। आपको भी शुभ दोपहर विनीत और स्वीट स्वीट प्यार भरा नमस्कार, आपको भी प्यार भरा नमस्कार किस भी गाने में शामिल करने के लिए गुजारिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपने में मेल किया। अहमद भाई फूलवाले जी का मेल आ गया है, छोटी बलिया फिल्म सिटी मुंबई से है। अहमद भाई फूलवाले, दुखनी से दफार, जूही इकबाल फूलवाले, इमरान अहमद फूलवाले, कोपासेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से बिटिया आमना नसरीन, आसमा परवीन, राबिया मंतशा, आशु अहमद फूलवाले और समस्त फूलवाले फैमिली। और लिख रहे हैं आपके आने से प्रोग्राम में रौनक आ गई है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इतनी इज्जत अफजाई करते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शमसुल कमर राही गंज डिडवारा से हैं, शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजन खान, अनु खान, उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी, बहुत बहुत शुक्रिया मेल करने के लिए। और शाहरुन नूर अंसारी का मेल आ गया है, हरहरपुर मटकली जिला बरेली से शाहरुन नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीसी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और DJ प्रधान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी शाहरुन के आपने में मेल किया। विजय महोबिया का मेल आ गया है, कविता महोबिया और पेंटर बाबूराम गंज खंडवा मध्य प्रदेश से हैं और नगमे माशा अल्लाह, आहा विजय जी क्या बात है, बेहद उम्दा अंदाज में पेश हो रहे हैं, आपकी पसंद पर कोई भी गाना सुना दीजिए, इनायत होगी, क्या खूब उर्दू है आपकी, गजब है भाई विजय भाई, और बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें मेल किया इसके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सुधाकर जाधव जी का मेल आ गया, ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से, श्री सुधाकर राजे जाधव जी, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचिता वायाल, प्रथमेश देशमुख, कुमार सर्वत देशमुख, प्रणाली देशमुख, सानवी देशमुख, कुमारी अपना देशमुख, बहुत बहुत धन्यवाद जी मेल करने के लिए। सुधाकर जाधव जी इतने उतावले हैं कि उन्होंने 10-12 बार मेल कर दिया है। अहमद भगवान जी का मेल आ गया है, अहमद भाई हम आपका मेल शामिल कर चुके हैं इसलिए प्लीज अब आप हमें इस प्रोग्राम में मेल मत कीजिए। तेज बहादुर यादव जी का मेल आ गया है, तरन्नुम दी को प्यार भरा सलाम नमस्ते, आपको भी मेरा प्यार भरा सलाम नमस्ते तेज बहादुर यादव जी, और अगर हो सके तो मुझे ये गाना सुनवा दीजिए। तेज बहादुर यादव, ममता यादव, बच्चे रोनित यादव, बेबी वानिका, गांव मऊ शर्की, जिला रायबरेली, उत्तर से हैं, अभी फिलहाल हरियाणा से सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें सुन रहे हैं। दीपेश वर्मा जी का भी मेल आ गया, जय जोहार कर रहे हैं हमेशा की तरह, ग्राम पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से हैं दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, और गाने की फरमाइश की है, बहुत बहुत शुक्रिया मेल करने के लिए। अब्दुल गफ्फार जी का मेल आ गया है, नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से हैं, अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र किटारे, भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं, सोन जोशी और पायल जोशी, तहे दिल से शुक्रिया, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। आफ्ताब अंसारी और अजमल अंसारी हैं लेकिन अलग अलग जगह से हैं, अजमल अंसारी जी हैं, हेलो मैम गुड आफ्टरनून, मैम प्लीज प्ले द सॉन्ग, ये वाला गाना प्लीज प्लीज, अजमल अली फ्रॉम सुल्तानपुर जिला सीतापुर, बहुत बहुत शुक्रिया अजमल अंसारी जी आपका मेल करने के लिए। अच्छा अजमत अंसारी हैं, ओके। आफ्ताब अंसारी जी हैं, ये कहाँ से हैं, आकाशवाणी के 90 साल के उपलक्ष में बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऐसे ही हमारा आकाशवाणी फलता फूलता रहे ऐसी दुआएं आप दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शेरवानी स्कूल गंज डुडवारा उत्तर प्रदेश से हैं ये, आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनमोल मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी, बहुत बहुत शुक्रिया। लालगिरी जी का मेल आ गया है, कार्यक्रम पेश को प्यार भरा नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन, कैसी हैं, बहुत अच्छे हैं लालगिरी जी और बहुत इन्हें धन्यवाद किया। श्री गंगानगर राजस्थान से हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी, बहुत बहुत धन्यवाद जी मेल करने के लिए। रविंद्र मोहनदास अगेन मेल कर रहे हैं, भाई साहब आपका मेल हम शामिल कर चुके हैं। आफ्ताब अंसारी अगेन मेल कर रहे हैं, आपका भी मेल हम शामिल कर चुके हैं। और संदीप मक्कड़ जी का मेल आ गया है, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमलसानी पिंगावाला चौक और जालंधर से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और अकरम हुसैन प्रिंस का है, कहाँ से मेल, महसौल सीतामढ़ी बिहार से, मुसरत जहां नाज शिक्षिका है ये, तलत जहां नाज, फरत जहां नाज, रिफत जहां नाज, नुजीत जहां नाज, शाजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज, और हम बहनों को प्रोग्राम में शामिल करें और बहुत बहुत शुक्रिया मेल करने के लिए। और अब एक और गाने की फरमाइश जो है वो मेरे पास आ चुकी है, आप ही लोगों की फरमाइश है लेकिन गाना बहुत ज़बरदस्त है तो सुन लिया जाए।

और हमें पता है कि आप प्यार करते हैं तो निभाते ही हैं, और रेनबो के साथ जो आपका खूबसूरत सफर है इसको ऐसे ही बना के रखिए, और अगले घंटे भी आपके साथ हम रहने वाले हैं। फिलहाल 2:54 हो गए हैं, प्रोग्राम हॉट मेल को वाइंड अप करने के लिए दीजिए इजाजत। तरन्नुम को मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, और अब आप लोगों की फरमाइश का एक और ट्रैक है जिसे हम प्ले कर रहे हैं और पहुंचा रहे हैं आप तक। सुनते रहिए रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सपने बड़े हैं,
3: स्टाइल अलग है,
2: तो ये शो है आपके लिए।
3: करियर हो या फैशन ट्रेंड्स,
2: स्पोर्ट्स हो या लाइफ को बेहतर बनाने वाले स्मार्ट टिप्स,
3: सब कुछ एक ही जगह। तो सुनना मत भूलिए यूथ वेव हर शाम 4 बजे
2: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।

0: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।
1: हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का।
0: ओनली 100.7 FM रेनबो।

जी हाँ दोस्तों, इस समय आप जुड़ चुके हैं रेनबो कानपुर के साथ 102.2 FM पर, और बस हमारा अगला प्रोग्राम है म्यूजिक आवर। जुड़े रहिएगा हमारे साथ।

0: चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: फसा।
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: जी हाँ दोस्तों, इस समय आप हैं रेनबो कानपुर के साथ 102.2 FM पर और सुन रहे हैं अपना फेवरेट चैनल जिसे हम कहते हैं सिटी के म्यूजिकल हार्टबीट। आज है 11 जून यानी दिन गुरुवार और हमारा प्यारा सा वीकेंड बस दो कदम दूर है। और मुझे पता है कि इस समय लंच के बाद आप थोड़ा सा ड्राउजी ज़रूर फील कर रहे होंगे ना, तो बस आपकी अलसाई से पैर को मैं बदलने वाली हूँ एकदम रिफ्रेशिंग वाइब्स में। पूरे एक घंटे आप पर पड़ने वाली हैं म्यूजिकल रिमझिम फुहारें जो आपको कर देंगी एकदम रिफ्रेश, एकदम तरोताज़ा। तो बने रहिए हमारे साथ रेनबो कानपुर के साथ।

0: जी बिल्कुल, चुपके से सुनते रहिए इतने मीठी मीठी सी धुन। और आज कुछ ऐसी ही धुनें बजने वाली हैं आप सबके रेडियो सेट्स पर, क्योंकि म्यूजिक आर में आज है आपके साथ आपकी वेरी कूल फ्रेंड निधि जैन। जी तारीफ तो काफ़ी हो गई अपनी, लेकिन हाँ इतना मैं ज़रूर जानती हूँ कि इस रिफ्रेशिंग सॉन्ग को सुनकर आपकी सुस्ती और आपकी नींद की जो खुमारी है ना इस समय आप पर छाई हुई है, वो ज़रूर भाग गई होगी। और मेरी सुस्ती तो आपको पता ही है, वैसे ही छूमंतर हो जाती है जब मैं अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए आपसे मिलती हूँ, आप लोगों से बातें करती हूँ। और सच में मैं कहूँ तो मेरी एनर्जी बिल्कुल रिचार्ज हो जाती है। तो बस दोस्तों, ऐसे ही हमारी बातों और एंटरटेनमेंट का सिलसिला चलता रहेगा शाम 4 बजे तक, तो आपको कहीं भी मत जाना है, कहीं भी मत जाइएगा। जी हाँ, और बस बने रहिए हमारे साथ 102.2 FM रेनबो कानपुर के साथ।
1: एक आवश्यक सूचना सुनिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के लिए नामांकन आरंभ हो चुके हैं। ये पुरस्कार वीरता, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले बच्चों को दिए जाते हैं। 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है, इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। इस हेतु नामांकन awards.gov.in पर स्थित राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। पुरस्कारों के लिए स्वनामांकन और अनुशंसा दोनों पर विचार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर जाएं। एक बार फिर से सुन लीजिए awards.gov.in। सूचना समाप्त हुई।

0: डियर रेनबो लिसनर्स, आपका और हमारा रिश्ता है बड़ा पुराना, पर इसे और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना।
1: जी हाँ, FM रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आपकी राय, आपकी पसंद और आपके सुझावों का रहेगा हमें इंतजार। लेकर आ रहे हैं हम अपना फीडबैक शो मेल मिलाप।
0: हमें बताइए आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, क्या और सुनना चाहते हैं आप, तो नोट कीजिए, हर महीने के चौथे बुधवार दोपहर 3:45 पर होगा हमारा आपका मेल मिलाप।
1: अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर भेजें इस पते पर, कार्यक्रम मेल मिलाप, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, बेना झाबर रोड, कानपुर, पिन कोड है 208002।
0: हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस है fmmelmilaap@gmail.com पर, यानी कि fmmelmilaap@gmail.com। भूलिएगा मत, हर महीने का चौथा बुधवार दोपहर 4:45 सिर्फ FM रेनबो कानपुर पर मेल मिलाप।
2: तो भाई दोस्तों, आपने सुन लिया ना कि किस तरीके से आप और भी हमसे मेल मिलाप कर सकते हैं, और हमारी फ्रीक्वेंसीज भी आपको पता है, रेनबो पर हम आपसे हमेशा ही कनेक्ट होते हैं 102.2 FM पर। और बस इसी तरीके से आप हमें अपनी राय, अपने सुझाव भेजते रहिएगा, और हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब हम आप लोगों की फीडबैक आपसे ही शेयर करते हैं, और आपको भी डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है ना, तो तभी तो आप हर रोज़ हमारे साथ कनेक्ट हो जाते हैं 102.2 FM यानी रेनबो कानपुर के साथ। और फिलहाल इस समय दोपहर के 3:15 हो चुके हैं और प्रोग्राम चल रहा है म्यूजिक आर। और आज के इस प्रोग्राम में आपके साथ है आपकी रेडियो दोस्त निधि जैन। बहुत सारी बातें हैं आपसे करने के लिए, लेकिन पहले एक बड़ा ही प्यारा सा गाना एकदम क्यू करके रखा हुआ है, पहले उसे सुनते हैं और फिर आपसे बहुत सारी बातें करूंगी।

जी हाँ दोस्तों, पल पल बीतते बीतते साल निकल जाते हैं और अब देखिए ना, आधा साल लगभग बीतने को है। जी हाँ, आज हो चुकी है 11 जून और जून की गर्मी माशाल्लाह, सच में सूरज देवता अपने पूरे फॉर्म में होते हैं, धरती मैया बिल्कुल झुलस रही होती हैं और उन्हें बेसब्री से इंतज़ार होता है बारिश की बूंदों का, है ना। पर आपको किसका इंतज़ार है, मॉनसून का या फिर जून की तपती दोपहर से जुड़ी आपकी कुछ मीठी मीठी यादें हों जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं हमें इसी वक्त। और हमारा मेल आईडी हम आपको बार बार बताते रहते हैं, वो है हमारा AIRKANSOMEDIA@gmail.com। और फेसबुक पर भी हम मौजूद हैं आकाशवाणी कानपुर के नाम से। तो फिलहाल हमें आपकी बातों का इंतज़ार है, आपकी यादों का इंतज़ार है। तब तक मैं आपके लिए भेज रही हूँ एक बड़ा ही एनर्जेटिक सॉन्ग जो कि आपकी एनर्जी को डेफिनेटली करने वाला है एकदम बूस्ट।

जी हाँ, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेनबो कानपुर के साथ 102.2 FM पर और एंजॉय कर रहे हैं म्यूजिक आर। हमें इंतजार है आपकी मेल्स का, आपकी राय का, और आपको किसका इंतजार? ये गाना चल पड़ा है, बिल्कुल इंतजार नहीं करना है।

जी ऑफ कोर्स, हम है ना आपके साथ, आपके हर पल हर क्षण आपके साथ, आपके हर सुख दुख में रेनबो कानपुर आपका साथ निभाता रहा है और अभी भी निभा रहा है, आगे भी निभाता रहेगा। तो बस आपको हमेशा ही इसे ट्यून करना है रेनबो कानपुर यानी कि 102.2 FM पर। एनीवेज दोस्तों, इन गानों को सुनकर डेफिनेटली मुझे लगता है आपकी सुस्ती के जो बादल है ना वो छट चुके होंगे काफ़ी हद तक। तो चलिए प्रोग्राम में मैं आगे बढ़ूंगी कुछ और बातों और रिफ्रेशिंग ट्रैक्स के साथ, क्योंकि रेनबो कानपुर पर हमेशा ही होता है स्वस्थ मनोरंजन और बातें काम की। तो फिलहाल एक काम की बात आप ये जरूर सुन लीजिए।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: आपकी गिनती देश की शान जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: एक आवश्यक सूचना सुनिए। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।

जी नहीं दोस्तों, हमें कहना तो बहुत कुछ है क्योंकि अभी तो एक्चुअल बातें हमारी शुरू ही नहीं हुई हैं, है ना। और मैं कुछ कहूँ उससे पहले, जैसा मैंने आपसे कहा था कि हमने कुछ मेल्स मंगवाए थे कि भाई आप अपनी बात हमसे शेयर कर सकते हैं, तो हमारे पास एक मेल आ भी गई है। और ये है हमारे सत्यनारायण कुरील जी, वो लिखते हैं कि भाई मुझे तो गर्मी के जाने और सर्दी के आने का इंतज़ार है, और आपने हमें ये मेल भेजी है उदयपुर राजस्थान से। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि सर्दियों का जो मौसम है दोस्तों, वो सबका फेवरेट होता है, हम सभी को सर्दियों का इंतज़ार है। लेकिन फिलहाल अभी गर्मी की बात, तो अगर हम रेगुलर क्लॉकवाइज चलें तो अभी तो पहले बरसात आएगी और फिर बरसात के बाद सर्दियों का मौसम धीरे धीरे शुरू होगा। बहरहाल आपने हमें मेल भेजी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे इंतज़ार है कि अभी और भी कई सारी मेल्स हमारे पास पेंडिंग है और मैं उन्हें बीच बीच में शेयर करती चलूँगी आपके साथ। और हमारे जिन दोस्तों ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है उन्हें मैं एक बार फिर से बता दूँ कि मैंने आपसे पूछा था कि आपको जून की इस तपती गर्मी के बाद किसका इंतज़ार है, या फिर अपनी तपती गर्मी जो जून की होती है ख़ास तौर पर, आपके बचपन की कोई याद है, आपके गांव से जुड़ी कोई याद है, तो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। तो एक मेल तो हमारे पास आ चुकी है, और भी कुछ मेल्स हैं। तो अब हम आगे की बात करते हैं, थोड़ी सी काम की बात करते हैं। वो ये है दोस्तों कि भाई इस तपती गर्मी में आप जानते हैं कि अगर हमारी कार जो है वो काफ़ी देर से धूप में खड़ी हो बाहर, तो जब हम इस गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो क्या हाल होता है, बताने की तो ज़रूरत है नहीं, है ना। बस बिल्कुल ऐसे ही लगता है ना कि जैसे ओवन में बैठ गए हो, एकदम भट्टी के अंदर, है ना। और बस हम क्या करते हैं, तुरंत अपना एसी चालू कर लेते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मेरी एक एडवाइस है कि ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। और अगर आप नहीं करते हैं तो आप बहुत ही अच्छे हैं और बड़े ही जागरूक हैं अपनी हेल्थ के प्रति, वेरी वेरी कॉन्शियस हैं आप। तो बस हमें क्या करना है, पहले जो कार है हमारी उसके सारे शीशे डाउन कर लीजिए, 1 मिनट तक गाड़ी ड्राइव करिए ताकि जो गाड़ी के अंदर की गर्म हवा है वो बाहर निकल जाए, और फिर एसी चलाइए। तो इससे जो आपकी गाड़ी है वो भी जल्दी ठंडी होगी और कंप्रेशर पर भी लोड ज़्यादा नहीं पड़ेगा। और जो लोग स्कूटर या बाइक या फिर ई रिक्शा वगैरह में, ऑटो रिक्शा में सफ़र करते हैं, तो उन्हें भी बहुत ज़रूरत है ऐसी गर्मी में अपने आप को बचाने का, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को कवर करके रखना है, सिर को भी और ख़ास तौर पर अपनी नाक को भी। जी हाँ, क्योंकि जो नाक के थ्रू गर्म हवा जाती है, हमारे नॉस्ट्रल के थ्रू गर्म हवा जाती है, वो भी हमारी हेल्थ को बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो हमेशा जब भी घर से निकलें तो पानी पी करके निकलिए, और अगर आप एसी रूम या ऑफिस से निकल रहे हैं तो कुछ देर के लिए नॉर्मल टेम्परेचर में बैठ लीजिए तभी निकलिए। जी हाँ दोस्तों, ये टिप्स कहने को तो बहुत छोटी छोटी सी हैं लेकिन बड़े काम की हैं। तो बस आप इन सब बातों को वैसे तो ध्यान ही रखते हैं, बहुत ही आप हमारे जो कहना चाहिए इंटेलिजेंट साथी हैं, तो सारी बातें ध्यान रखते हैं। बट फिर भी क्या होता है, जल्दबाजी में हम निकल जाते हैं और हमें ध्यान नहीं रहता, तो इन सारी बातों का ध्यान रखना है। एंड येस ऑफ कोर्स, डोंट फॉरगेट टू वेयर योर गॉगल्स। जी हाँ, चश्मा ज़रूर लगा के चलिएगा, ये फैशन नहीं है, ये हमारी आज की ज़रूरत है। फिलहाल आपको भिगोने आ गया एक बड़ा ही प्यारा सा गाना।

जी हाँ दोस्तों, भले ही अभी सावन को आने में थोड़ा सा वक्त है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही हमारे कानपुर में भी झमाझम बारिश होने वाली है। हालांकि आज सुबह तो देखिए बारिश हो ही चुकी है, थोड़ी सी बारिश हुई थी सुबह सुबह, लेकिन अभी फ़िलहाल फिर से धूप आ गई थी। और हाँ, इतना ज़रूर बताया जा रहा है कि 12 तारीख से, यानी कि कल से, 12 से 14 जून के बीच बारिश हो सकती है, तो पूरी पूरी संभावना। और दोस्तों, हमें भी बिल्कुल बेसब्री से इंतज़ार है कि भाई कब बारिश से खिड़कियां भीगें और कब हमें गर्मा गर्म चाय और पकौड़े खाने को मिले, क्योंकि इन दोनों चीज़ों का जो मज़ा है ना, वो बारिश में ही है। तो बहरहाल, बारिश होने में भले ही थोड़ा सा वक्त है हमारे शहर में, लेकिन गानों की बौछार आप पर लगातार पड़ रही है म्यूजिक आर प्रोग्राम में। सो स्टे ट्यून विद अस ओनली ऑन 102.2 FM। और आज आपके साथ है आपकी दोस्त निधि जैन। और देखिए, हमारे सामने फिर से मेल्स आई पड़ी है और मुझे लगता है मैं जल्दी से उनकी भी बात को शेयर कर लूँ। लिख रहे हैं समडील नवापारा से हमारे दोस्त मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा, अदिति गुप्ता, राधे, दीपक और श्रीमती अंकु राधव गुप्ता जी लिख रहे हैं कि गर्मी बहुत है मैम जी, हम लोग तो बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, सबको इंतज़ार है। तो फिलहाल अभी बारिश नहीं, तो बारिश वाला गाना आपको हम ज़रूर सुनवाते हैं और आपका मन भी बिल्कुल भीग जाएगा रिमझिम फुहारों की तरह।

जी बिल्कुल, भले ही इस समय बहुत धूप की तेज अगन हो, लेकिन हाँ इस गाने से हम जरूर रिफ्रेश हो गए होंगे। बिल्कुल, बारिश की बूंदों में भीगा हुआ ये गाना जब भी कभी हम सुनते हैं तो बस हमें लगता है जैसे हम बारिश के बीच में ही खड़े हुए। बहरहाल दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि क्वेश्चन क्या आपकी राय जाननी चाहिए थी कि भाई जून का जो महीना है वो आपके लिए किस किस तरह से वैल्यू करता है, आप इसे किस तरीके से देखते हैं, या फिर आपको किसका इंतज़ार रहता है जून में। तो हमारी एक लिसनर है जो कि हमसे इस समय लाइव जुड़ी हुई हैं और लिखती हैं कि जून में तपती गर्मी के बाद मुझे सच पूछो तो किसी का इंतज़ार नहीं है, मैं जून को और लंबा चाहती हूँ जिससे मेरी छुट्टियां लंबी हो जाएं। क्या बात है, और मुझे लगता है कि ज़रूर एक टीचर हैं, और इसीलिए क्योंकि टीचर्स को इंतज़ार रहता है कि भाई जून की छुट्टियां जो है थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाए और उन्हें थोड़ा रेस्ट करने को मिल जाए और उन्हें रिचार्ज होने को मिल जाए। तो बिल्कुल मैं आपसे पूरी तरीके से एग्री करती हूँ, और फिर भी आपने हमें मेल भेजा, बहुत बहुत थैंक यू आपका हमसे जुड़ने के लिए। चलिए दोस्तों, जैसा कि अभी आपने बात ही की और अभी हम कह ही रहे थे कि भाई धूप तेज़ होती है जून में ख़ास तौर पर, और जून की ही बात आज हम कर रहे हैं, तो अक्सर जब ये दोपहर के बाद का टाइम होता है ना, जब हम लंच वंच कर चुके होते हैं, तब हमें लगता है कि भाई थोड़ी सी एक झपकी मार ली जाए, है ना। लेकिन जब कभी हम ऑफिस में होते हैं और हमारे सामने फाइल्स का ढेर लगा होता है या फिर बहुत सारा पेंडिंग काम पड़ा होता है, तो इसकी हमें परमिशन मिलती नहीं है, मतलब मिलनी इन द सेंस कि हम कर ही नहीं सकते उस समय, है ना। तो बहुत, और उस समय नींद आ रही होती है, तो इतना तो ज़रूर कर सकते हैं कि चेहरे पर थोड़ा सा ठंडे पानी की छींटे मार ली जाए, है ना। थोड़ा सा हम ऑफिस में ही उठ के 2-1 मिनट के लिए टहल लें, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लें और फिर बैठ जाएं अपने कामों को निपटाने के लिए, क्योंकि हमें रिचार्ज होना होता है। और जो छोटे छोटे से ब्रेक होते हैं ना दोस्तों, वो बहुत ज़रूरी होते हैं अपने आप को रिचार्ज करने के लिए। उस बीच में बॉडी आपकी जो है ना वो रिकवर कर जाती है। तो बहरहाल अभी हम आपको अगर रिचार्ज कर दें इस बढ़िया से गाने से, तो फिर क्या बात है ना। जी, इस समय आप सुन रहे हैं रेनबो कानपुर 102.2 FM की फ्रीक्वेंसी पर।

जी भाई, हमें आपसे मिलने के लिए बारिश का वेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो हर रोज ही मिलते हैं ना आपसे, आपके अपने फेवरेट चैनल 102.2 FM यानी कि रेनबो कानपुर पर। और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि म्यूजिक आर प्रोग्राम में जो बातें मैंने आपसे कही थी कि आप हमें मेल करिए, हमारे बहुत सारे लिसनर्स की मेल आई है। हालांकि काफ़ी सारे लोगों ने सॉन्ग सुनने की फरमाइश की है, लेकिन माई डियर फ्रेंड्स, ये वाला जो प्रोग्राम है वो आपकी फरमाइश वाला नहीं है, और इसमें आज मैं अपनी पसंद के गाने सुनवा रही हूँ। लेकिन मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आपको ये भी गाने बहुत अच्छे लग रहे होंगे, क्योंकि मुझे आपकी पसंद भी पता है और आप हमेशा ही अप्रिशिएट करते हैं ऐसे गानों को, अच्छे लगते हैं आपको। लेकिन जो मेल्स बहुत खास खास आई हैं, उन्होंने देखिए हमसे कितना कुछ शेयर किया है। ये है नीलू शर्मा, रूपपुर चंदेला से लिखते हैं कि मुझे गर्मी के बाद बारिश का इंतजार रहता है, और आज मैं 4 दिन के बाद FM सुन रही हूँ और मेरे यहाँ 4 दिन से लाइट नहीं आ रही थी। ओहो, ये तो बड़ी गड़बड़ है, और गर्मी में अगर लाइट ना आए तो बड़ी मुश्किल है। और ये लिख रहे हैं कि मुझे बचपन के दिन याद आ रहे थे, कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है। जी, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिल करके, और आपने अपनी मेल भेजी है, मुझे बहुत ही आज खुशी हुई कि चलिए आज आप हमारे बहुत सारे लिसनर्स इस प्रोग्राम के साथ भी जुड़े। तो दोस्तों, बस चलते चलते थोड़ी सी आपसे बात और मैं कर लूँ, क्योंकि वक्त गुजरता जा रहा है और हम जानते हैं कि जो जून का महीना है वो बदलते मौसम का भी महीना है ना, क्योंकि तपती जलती गर्मी के बाद लगभग हम कह सकते हैं कि आधे महीने के बाद मिड जून में आ जाता है मौसम मानसून का, है ना। लेकिन ना देखने में इधर ही आ रहा है कि इन दिनों मौसम बदल नहीं रहा है, बिगड़ रहा है ना। तो देखिए, अभी एग्जांपल हमारे सामने ही है, दिल्ली NCR में कितनी एकदम से मौसम बदला, धूल भरी आंधी आई और तेज़ हवाओं के साथ इतनी बारिश हुई कि सब जगह पानी भर गया, घरों में भी चला गया। भले ऐसी बारिश से भीषण गर्मी से हमें राहत मिली हो, लेकिन दिक्कत तो हो ही जाती है ना। तो बस हमें ही ध्यान रखना है कि भाई हम भी इन सारी बातों का ध्यान रखें, अपने संसाधन जो हमें मिले हुए हैं उनका हम ज्यूडिशियल इस्तेमाल करें, है ना, जिससे कि मौसम बदले तो सुहाने भी हों लेकिन बिगड़े नहीं बिल्कुल भी, है ना। फिलहाल आपके लिए एक बड़ा

0: जी हाँ, आप सब हमें बहुत अच्छे लगते हैं और आपका प्यार जो है वो हमें अपने प्रोग्राम्स को और भी बढ़िया करने की इंस्पिरेशन दिया देता है। लेकिन दोस्तों अब वक्त हो चला है कि म्यूज़िक आवर प्रोग्राम से आपसे हम विदा ले लें। और हाँ, हमारे जो साथी बहुत सारी हमें अपनी मेल्स भेज रहे हैं तो उन्हें मैं बता दूँ कि आज संदेश टू सोल्जर आएगा, इसलिए आपकी पसंद प्रोग्राम आप नहीं सुनेंगे। लेकिन आई नो कि आपने इस म्यूज़िक आवर प्रोग्राम को अच्छे से एंजॉय किया होगा और इसने आपकी सुस्ती को पूरा दूर भगा दिया होगा। फिलहाल अपने इस वीकेंड को बहुत ही अच्छी तरीके से प्लान करिए, कहाँ जाना है अपनों का ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत म्यूजिक आवर प्रोग्राम से। सुनते रहिए 102.2 FM पर रेनबो कानपुर।
1: स्टे ट्यून्ड टू स्टे अपडेटेड, कीप लिसनिंग टू FM रेनबो।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

भारत महान देश हमारा, हम अपने भारत से बहुत प्यार करते हैं। इस प्यार में मिट्टी से तिलक लगाते हैं, अपने बदन पर तिरंगा ओढ़ने की चाह रखते हैं। इस तिरंगे को मान सम्मान मिले वो इरादा रखते हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति जी श्री रामनाथ कोविंद जी ने एक बारी कहा

0: ताकि भारत में हर एक जीव, मनुष्य हो पशु पक्षी हो, वो भारत की तरक्की के लिए योगदान दे रहा है। और आज संदेश टू सोल्जर्स में हम एक ऐसे फोर्स की बात करेंगे जिसने भारत के लिए योगदान से भी ज्यादा अपना समर्पण दिया है। आज हम सशस्त्र सीमा बल, जो भारत की एक प्रमुख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, उसके बारे में बात करेंगे। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सशस्त्र सीमा बल के सेकंड इन कमांड ललित शाह, प्रेसिडेंट मेडल से नवाजे गए, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, उनको ये सम्मान दिया गया। आंतरिक सुरक्षा पदक से सम्मानित ललित शाह जी आते हैं पहाड़ों की उन वादियों से जहां बचपन में ही उनका एक जज्बा उनको भारत की सेना में, भारत के सशस्त्र बल में कहीं ना कहीं किसी रूप में योगदान देने के लिए प्रेरित कर गया। आज हम उनके साथ साथ सशस्त्र सीमा बल से जुड़ी तमाम बातों की यहां चर्चा करेंगे। एसएसबी, जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी विशेष सेवा ब्यूरो के रूप में, और वर्तमान में भारत नेपाल सीमा जो लगभग 1751 किलोमीटर की है, और भारत भूटान सीमा जो लगभग 700 किलोमीटर की है, उस सेना, उस कार्यरत जवानों की, अफसरों की जहां बाज योगदान, उस कॉन्ट्रीब्यूशन की बात हम यहां करेंगे संदेश टू सोल्जर्स में। आइए पूरे भारत के साथ स्वागत करते हैं सेकंड इन कमांड ललित शाह जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
0: मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि आप स्टूडियो में मेरे साथ बैठे हैं यहाँ पर, और एक प्यारी सी उस यूनिफॉर्म का, उस फोर्स का हिस्सा हैं। आपको देखकर बहुत प्रेरणा मिलती है, जज्बा आता है, जोश आता है। एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, बहुत खास फोर्स है हिंदुस्तान की।
1: जी बिल्कुल, हमारी जो फोर्स है ये भारत नेपाल और भारत भूटान की सीमाओं की रक्षा करती है। सारी ही फोर्सेस का बॉर्डर जो है वो अपने आप में विशेष होता है, परंतु हमारी फोर्स का जो बॉर्डर है उसकी अपनी विशेषता है। ये एक पोरस बॉर्डर है, और सीमा के पार जो लोग हैं उनसे हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। इस बॉर्डर को मैन करना, इस बॉर्डर की रक्षा करना अपने आप में एक चैलेंज है, और उस चैलेंज को एसएसबी के सारे जवान, सारे अधीनस्थ अधिकारी और अधिकारी अपने पूरे ईमान से, पूरी मेहनत से 24/7 365 डेज बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और ये फोर्स भारत की सेवा में हमेशा तत्पर है। जैसा कि हमारा ध्येय वाक्य है, सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व, हम उस पर कार्य करते हैं, और लगातार जो है हमारा पूरा फोर्स इस ध्येय वाक्य को साधने पे लगा हुआ है।
0: तो शाह साहब, आपने बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो असाइनमेंट्स हैं उनमें आपने हिस्सा लिया, आपने की अपॉइंटमेंट्स में से मैं कहूँगा कि फिलहाल आप एसएसबी एकेडमी में, जो श्रीनगर है उत्तराखंड, वहाँ पर आप ट्रेनिंग का जो उभार है वो संभाल रहे हैं। 9 बटालियन के साथ आप थे बिहार में, सीतामढ़ी में, बलरामपुर में, और ढेर सारे इंसिडेंट्स आपके साथ हुए होंगे, लेकिन इस फोर्स में आना आपके लिए कब तय हुआ? कब आपने ये डिसाइड किया कि ये फोर्स कुछ खास है और मुझे इसके साथ जुड़ना है?
1: ये स्कूल के दिनों की बात है। मैंने अपनी स्कूलिंग पिथौरागढ़ से की है, और पिथौरागढ़ में भी जो मेरा स्कूल रहा है, केंद्रीय विद्यालय, वो छावनी क्षेत्र में रहा है। मेरे क्लासमेट्स भी अधिकतर फौजी बैकग्राउंड से, सीएपीएफ बैकग्राउंड से ही रहे हैं।
0: जी जी,
1: जब भी हम स्कूल जाते थे तो हमेशा ही फौज की वर्दी, फौज का डिसिप्लिन, फौज के कार्यकलाप हमेशा बचपन से ही देखते आए हैं। तो एक छोटे बालक से जब हम बड़े होते गए तो फौज को देखते देखते ये फोर्स यूनिफॉर्म पहनने का जज्बा तो तभी आ गया था। उसके बाद जब मौका मिला तो हमने फौज

0: फोर्स में ज्वाइन कर लिया।
1: तो मैं बात कर रहा हूँ कि 1970 का जो दशक था, 80 का दशक था, तब सशस्त्र सीमा बल के बारे में बहुत लोग शायद नहीं भी जानते होंगे हमारे देश में, लेकिन उस समय आप पिथौरागढ़ से आ रहे हैं, पहाड़ी इलाका है। अगर मैं कहूँ कि उस 80 के दशक में भी बहुत सारी डेवलपमेंट शायद नहीं हुई होगी पिथौरागढ़ में, तो क्या सिचुएशन वहाँ थी आपके गाँव की, और फौज में आना कितना प्रेरणादायक था, और किसने आपको प्रेरित किया?
0: समय पे पहले सशस्त्र सीमा बल का जो नाम था वो स्पेशल सर्विस ब्यूरो होता था।
1: जी, जी।
0: तो कैपसेक के अंडर आती थी, तो एक कोवर्ट फोर्स की तरह से ही काम करती थी। बॉर्डर गार्डिंग में सशस्त्र सीमा बल सन 2001 से आई है। 2001 में पहली बार भारत नेपाल की सीमा की रखवाली के लिए सशस्त्र सीमा बल को कार्य सौंपा गया। 2004 में भारत भूटान सीमा के लिए। अगर मैं अपने समय की बात करता हूँ तो तब हम सशस्त्र सीमा बल को इस तरीके से नहीं जानते थे, तब ये फोर्स का उद्भव इस तरीके से नहीं हुआ था।
1: जी, जी।
0: तब हम आईटीबीपी को देखते थे, हमें सीआरपीएफ की जानकारी थी, बीएसएफ की जानकारी थी, आर्मी के बारे में हम जानते थे। पर कालांतर में जैसे ही फोर्स के बारे में फिर पता चलने लगा, तो फिर हमें भी पता चला कि इस तरीके से एक फोर्स है जो भारत नेपाल और भारत भूटान की रक्षा करती है, तो उसके आने का रुझान बन गया।
1: पहले बॉर्डर की बात कर लेते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि दो देश ऐसे हैं जिनके साथ हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं भारत के, लेकिन आपके लिए भी कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन होती होंगी उस बॉर्डर पे। आपने कहा पोरस बॉर्डर है, किस तरह के चैलेंजेस आप देखते हैं?
0: अगर आप बॉर्डर को देखेंगे तो दोनों तरफ एक से ही लोग रहते हैं, खासतौर पर भारत नेपाल की अगर हम बात करते हैं तो दोनों ही तरफ एक ही हाइट के, एक ही कॉम्प्लेक्शन के, एक से ही लोग दोनों तरफ रहते हैं, और आवाजाही दोनों तरफ से आना जाना फ्री है, आप मोमेंट को नहीं रोक सकते। परंतु सारे ही अच्छे लोग नहीं होते हैं, कुछ लोग जो है अलग अलग गतिविधियों में भी लगे होते हैं, तस्करी है, मानव तस्करी है, बहुत सारे चीजें ऐसी हैं जिसको रोकने के लिए हमें मैंडेट मिला है। तो उस मैंडेट को पूरा करना एक चैलेंजिंग टास्क है, और उसी टास्क को जो हम हैं ह्यूमन इंट कहिए या दूसरी तरीके से इंट हासिल करके, उसके अलावा लगातार नाका पेट्रोलिंग गश्त कर रहे हैं, 24 घंटे उस बॉर्डर को मैन कर रहे हैं, और ये एक चैलेंजिंग टास्क है, और इसको हम बखूबी निभा रहे हैं बॉर्डर पे।
1: और आपकी जो फोर्स है वो फेस है भारत का इन कंट्रीज के, तो यानी अगर कोई इंटेलिजेंस की भी फीडबैक आएगी वो सबसे पहले आपके पास आएगी।
0: बिल्कुल।
1: या कोई आप अगर कोई गतिविधि देखते हैं तो आर्म्ड फोर्सेस को या आर्मी को या जो हमारी जो तीनों सेनाएं हैं आपकी एक रिपोर्ट उन तक पहुंचती होगी।
0: बिल्कुल।
1: बट जैसा आपने कहा कि ठीक है दोनों देश अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग भेस बदल के भी उसका फायदा उठाना चाहते हैं, हो सकते हैं देश के ना हो किसी और देश के हो, तो आपके लिए वो चैलेंजिंग कितना होता है कि ये पहचानना कि ये लग तो रहे हैं नेपाल के या भूटान के लेकिन शायद किसी और देश के हो सकते हैं?
0: नहीं, हमने अपने एक्सपीरियंस से, दूसरा अब जो तकनीकी गैजेट्स आ रहे हैं, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसमें हम सीसीटीवी को यूज़ कर रहे हैं, हम कैमराज जो है अच्छी क्वालिटी के, हमने बहुत जगह ऑटोमेटिक नंबर प्लेट सिस्टम लगाया है, हम फेस रिकॉग्निशन सिस्टम की तरफ भी जा रहे हैं। उसके अलावा जो हमारा जवान वहाँ पे खड़ा है वो उस चीज में पारंगत हो चुका है, वो देख रहा है लोगों को आते जाते हुए, वो पहचान रहा है, वो लगातार नोटिस कर रहा है। उसके अलावा हमारे अपने मैकेनिज्म रहते हैं जिससे हम लोग पता करते हैं, क्योंकि हम परसेप्शन मैनेजमेंट भी करते हैं। तो उससे भी हमें पता चलता है इस तरह की गतिविधियों के बारे में।
1: राइट बहन, तो आप अभी सीटीसी में हैं, श्रीनगर। श्रीनगर का नाम सुनते ही लोग सोचते हैं शायद कश्मीर की वादियों की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन वादी तो है लेकिन कश्मीर की नहीं, उत्तराखंड की वादी है श्रीनगर, और वहाँ पे आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है।
0: बिल्कुल।
1: और किस तरह की ट्रेनिंग आप?
0: बेसिकली जो हमारा सीटीसी है वो सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर है, और यहाँ पे हम जो है हमारे जो डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर्स आते हैं उनकी बेसिक ट्रेनिंग हम वहाँ पे कराते हैं। उसके अलावा जितने भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं उनका प्रमोशनल कोर्सेज हम वहाँ पे कराते हैं। उसके अलावा भी कुछ एलाइड कोर्सेज हैं हम वहाँ पे कराते हैं, राफ्टिंग का कोर्स कराते हैं, और भी बहुत गतिविधियों को हम वहाँ पे करते हैं।
1: जी, जो सारी डिटेल आप नहीं देना चाहेंगे मैं समझ सकता हूँ, बट क्योंकि पहाड़ी इलाका है और नेपाल और भूटान भी एक हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है, शायद ये वजह है कि आप लोग उत्तराखंड में आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है।
0: बिल्कुल, ये सही बात।

0: बात है कि एक्चुअली जब ये फोर्स का जब जन्म हुआ है तो ये बेसिकली जो इसके शुरुआती रोल रहे हैं वो
1: जी
0: उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों में ही इसकी डिप्लॉयमेंट रही है, क्योंकि जब वो स्पेशल सर्विस ब्यूरो होता था
1: जी
0: तो वहाँ पे ही डिप्लॉयमेंट रही है। तो ट्रेनिंग सेंटर भी उसी हिसाब से जगह को छाट के बनाए गए हैं ताकि वहाँ पे जो है वहाँ के लोगों को ट्रेन किया जा सके और बॉर्डर पॉपुलेशन तक आसानी से पहुंचा जा सके, इसलिए उत्तराखंड का चुनाव
1: और
0: किया।
1: आप ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में है, आप CTC में, ये कितने समय से हैं?
0: मेरे को अभी 1 साल हुआ है लगभग।
1: और उससे पहले आपने ढेर सारे ऑपरेशंस किए हैं जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स, और एक खास मेहमान हमारे साथ बैठे हैं यहाँ, अ वेरी स्मार्ट लुकिंग यंग ऑफिसर। ही इज सेकेंड इन कमांड ललित शाह ऑफ द सशस्त्र सीमा बल, जिसे हम कहते हैं SSB। यहाँ पे एक, क्योंकि ये प्रथा है हमारे यहाँ और प्रोग्राम का एक फॉर्मेट भी है कि हम आपके पसंद के गीत चलाते हैं, तो कौन सा गीत आप पेश करना चाहेंगे हमारे लिसनर्स के लिए?
0: मेरे वतन के लोगों,
1: ओके, ये आपको बहुत प्रिय है?
0: बहुत प्रिय है,
1: और कोई खास वजह?
0: पहले से सुनते आ रहे हैं। जब भी स्कूल में 15 अगस्त 26 जनवरी होता था तो ये गाना इनवेरिबली रहता ही था,
1: जी जी
0: तो दिल को छूता है ये।
1: Sung by one of the great singers, जिसको हम कहते हैं the Nightingale, as far as the playback singing is concerned, the late, the legendary Lata Mangeshkar.
2: Yeah!

0: संदेश टू सोल्जर्स में आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, सशस्त्र सीमा बल के सेकंड इन कमांड ललित शाह। और आज हम इस भारत की खास फोर्स के बारे में उनकी जुबानी सुन रहे हैं। इंडो नेपाल इंडो भूटान बॉर्डर को ये एक मैत्रीपूर्ण भाव के साथ देखते हैं, वहां तैनात रहते हैं और इसके अलावा भी बहुत योगदान देते हैं भारत की तरक्की में। लेकिन यहां सेकंड इन कमांड ललित शाह जी, आपसे जानना चाहूंगा, जब आपकी पहली पोस्टिंग हुई तब आपको कैसा लगा और वो एक्सपीरियंस कैसा था, कहां पोस्टिंग हुई?
1: अपनी बेसिक ट्रेनिंग हम लोगों ने हमारी अकादमी में जब पूरी की, उसके बाद मेरी पहली पोस्टिंग 9th बटालियन में हुई। बिहार में सीतामणि एक जगह है, वहां पे मेरी पहली पोस्टिंग हुई और उसके बाद मुझे जो है बॉर्डर पोस्ट के लिए भेजा गया बटालियन से। वहां पे मैंने अपनी तैनाती के दौरान सबसे पहले तो जब मैं

0: वहाँ जवानों से मिला। तो एक कंपनी है, तो उसमें जो जवान है वो एक कुटुंब हो जाता है। फिर मैंने वहाँ अपनी ड्यूटीज़ को समझा,
1: जी
0: हमको दिए गए दायित्वों के बारे में जाना, हमारे जवान किस प्रकार से वहाँ पे ड्यूटी करते हैं वो जाना,
1: जी
0: और मैंने जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको जाना। और उसके बाद जो हमारा मैंडेट है, जो हमको मैंडेट दिया गया है, उसको पूरा करने के लिए किस प्रकार से कार्य करना है, उसका कार्यान्वयन करवाया मैंने, और एक अच्छा मेरा टेन्योर वहाँ पे निकला अपने जवानों के साथ,
1: जी
0: और हमने एक अच्छा समय वहाँ पे व्यतीत किया। और बॉर्डर गार्डिंग के जो गुण हैं, बहुत एक्टिव बॉर्डर रहा है, लोगों का आवागमन बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे से, और कुछ जो एलिमेंट्स हैं, जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स
1: जी
0: हैं, जो इस
1: जी
0: तरीके के कार्य करते हैं, उस तरीके का कार्य भी वहाँ पे रहता है। तो वो सब भी जानने का मुझे मौका मिला, और किस तरीके से रोकना है अपने
1: तो जब हम बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार का एक बॉर्डर है जो नेपाल से टच करता है, वैसे ही उत्तराखंड का भी कुछ एरिया है जो नेपाल से टच करता है,
0: जी
1: और अगर हम यूपी की बात करें, यूपी भी एक ऐसा राज्य है, तो
0: बिल्कुल
1: यहाँ पे आपकी जो सेना है वो तैनात है,
0: जी
1: और उसके बाद कुछ ऐसा इंसिडेंट जो आपके लिए नया था लेकिन था बड़ा इम्पोर्टेंट, कोई ऐसा ऑपरेशन?
0: अगर ऑपरेशंस की बात करें, तो जो मेरा नक्सल का टेन्यर रहा है, एसएसबी को बॉर्डर गार्डिंग के अलावा एंटी नक्सल ऑपरेशंस, जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज, इसके लिए भी चुना गया है। तो मेरी एक पोस्टिंग रही है नक्सल ऑपरेशंस में, तो उसमें हमारी टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया, और हम लोगों ने उस जिस जिले में हम लोगों को दिया गया था, उस जिले को नक्सल फ्री कराने में हमारी टीम का बहुत बड़ा योगदान है, हमारी फोर्स का बहुत बड़ा योगदान
1: जी,
0: है।
1: कौन सा एरिया है और ये क्या ऑपरेशन था, कुछ बताना चाहेंगे?
0: जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि संथाल परगना जो है झारखंड में, जो उत्तर पूर्वी झारखंड है, उसके 6 जिलों को मिला के संथाल परगना बोला जाता है, जिसमें गोड्डा, पाकुड़, दुमका, साहिबगंज, जामताड़ा और देवघर जिले आते हैं। इसमें से जो 3 जिले हैं, दुमका, पाकुड़ और गोड्डा, ये नक्सल इन्फेस्टेड जिले हैं 1990 के समय से ही। और जब हमारी मेरी पोस्टिंग हुई है वहाँ 2018 में, उससे पहले पीक नक्सल टाइम वहाँ पे रहा है, और इवन एक ऐसा समय था वहाँ पे 2013 के आसपास कि वहाँ पे नक्सलियों द्वारा एसपी पाकुड़ की हत्या कर दी, एक आईपीएस ऑफिसर के, अजीत बलिहार सर करके वो आईपीएस ऑफिसर थे। तो जब हम लोग वहाँ पे गए, तो जो हम लोगों का कार्य था इस क्षेत्र में, गोड्डा, पाकुड़ और
2: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत सक्रिय नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। प्रिंसिपल टीम लीड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिवीजन, लीड कंसल्टेंट नॉलेज मैनेजमेंट डिवीजन, कंसल्टेंट रिसर्च एंड इनोवेशन इन प्राइमरी केयर, कंसल्टेंट एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजी इन प्राइमरी हेल्थ केयर, कंसल्टेंट सर्टिफिकेशन यूनिट, कंसल्टेंट ड्रग्स एंड लॉजिस्टिक्स तथा कंसल्टेंट क्वालिटी एंड पेशेंट सेफ्टी। इन सभी पदों के लिए रिक्तियों की संख्या एक है। प्रिंसिपल टीम लीड के लिए आयु सीमा 62 वर्ष या उससे कम है, जबकि अन्य सभी पदों के लिए 45 वर्ष अथवा उससे कम के उम्मीदवार अपना आवेदन भेज सकते हैं। आवश्यक योग्यता और अनुभव के विवरण के लिए देखिए वेबसाइट www.nhsrcindia.org। इसके अलावा www.mohfw.gov.in और www.devnetjobsindia.org पर भी ये जानकारियां उपलब्ध हैं। आवेदन केवल निर्धारित ऑनलाइन आवेदन प्रारूप में ही जमा किया जाना चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि रहे

0: अदायगी 16 जून 2026। दिव्यांग जनों के कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए समेकित क्षेत्रीय केंद्र गोरखपुर में आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इन पदों के लिए सहायक प्रोफेसर स्पीच एंड हियरिंग, सहायक प्रोफेसर विशेष शिक्षा, लेक्चरर ऑक्यूपेशनल थेरेपी, प्रशासनिक अधिकारी, क्लिनिकल सहायक, स्पीच थेरेपिस्ट, क्लिनिकल सहायक, डेवलपमेंट थेरेपिस्ट, विशेष शिक्षा O&M इंस्ट्रक्टर, वोकेशनल इंस्ट्रक्टर, वर्कशॉप सुपरवाइजर, लिपिक टंकक। इन सभी पदों पर एक एक रिक्ति उपलब्ध है, किंतु विशेष शिक्षा O&M इंस्ट्रक्टर के लिए 2 रिक्तियों की संख्या मौजूद है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख रोजगार समाचार पत्र में विज्ञापन के प्रकाशित होने से 21 दिन के भीतर रहेगी। ये जानकारी 6 से 12 जून 2026 के रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशित की गई है। आवेदन इस पते पर भेजना होगा, दिव्यांग जनों के कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए समेकित क्षेत्रीय केंद्र गोरखपुर, BRD मेडिकल कॉलेज परिसर, 33 KVA सबस्टेशन के सामने, गोरखपुर। ईमेल का पता रहेगा crcgkpr@gmail.com। क्या आपके पास वो क्षमता है कि आप भारत की महारत्न कंपनी से जुड़ सकें? भारत औद्योगिक और ऊर्जा विकास के एक नए युग की ओर बढ़ रहा है और BPCL नवाचार परिवर्तन और व्यवसाय विस्तार के साथ लगातार अग्रणी भूमिका निभा रहा है। ये कंपनी ऐसे अनुभवी और योग्य पेशेवरों की तलाश में है जो देश के भविष्य के निर्माण में BPCL के साथ। विस्तृत जानकारी के लिए आप देखिए इनकी आधिकारिक वेबसाइट www.bharatpetroleum.in/careers। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।
2: जानकारी का अभाव है, पढ़ाई की नहीं गई है, स्कूल तक पहुंचने नहीं देते थे, पिछड़ा हुआ रखा उन्हें और दबा दिया गया। और यही इसी से नक्सलवाद वहां पे बढ़ा शुरू में। फिर इन्होंने कोई भी चीज के उसमें बैरियर लगा दिया आप, और जवान लड़कों को अपने संग ले जाके उनको जबरदस्ती उठा के ले जाते थे। तो डर भी एक चीज थी जिसकी वजह से ये लोग नक्सलवाद की तरफ बढ़ गए, लोग डर की वजह से।
3: तो आपका जब ऑपरेशन हुआ, आपने बताया कि एक बहुत प्रमुख ऑपरेशन था, तो वो कुछ उसमें हम अभी यहाँ इस प्रोग्राम में जान सकते हैं कि कितने मैं कहूँगा कि अपोनेंट या नक्सल आपके अगेंस्ट थे?

0: तो इसमें एक नरपत सिंह जो अभी डिप्टी कमांडेंट हैं उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने जो लोगों के बीच में पैड बनाई और जो इन्फॉर्मेशन एक फ्लो होने लगी उससे हमें बहुत फायदा हुआ। और हमारी टीम ने, आप मानेंगे कि ऑपरेशन तो एक दिन है, पर उससे पहले की जो हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं, जो हम लगातार जंगलों को डोमिनेट करते रहे, हमें हर जगह जाके कि हम कहाँ पे किस तरीके से पोजीशन लेंगे, रिहर्सल्स जो हम लोगों ने बहुत सारी की
1: जी,
0: उसी का ये नतीजा रहा कि हम लोगों ने वहाँ बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशंस किए।
1: ओके,
0: और उन ऑपरेशंस की ही वजह से जो है हमारी बटालियन जो है एक टाइम पे हाईएस्ट गैलेंट्री मेडलिस्ट की बटालियन रही है।
1: वंडरफुल। तो ये तो बात हम ऑपरेशंस की कर रहे हैं, और उसके बाद जब एक कंप्लीशन होता है, ठीक है, गौरवान्वित इंसान फील करता ही है, लेकिन आपको लगता है कि आपके उन ऑपरेशन से जो बाकी जो लोकल जो लोग थे उनको बड़ी राहत मिली, दे वर वेरी हैप्पी, शायद वो भी दबा के रखा होगा उन्होंने कि नहीं, हम भी चाहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन हो झारखंड जैसे एरिया में, थोड़ा और मॉडर्नाइजेशन।

0: करते रहे
1: ओके
0: हमें हर जगह जाके कि हम कहाँ पे किस तरीके से पोजीशन लेंगे. रिहर्सल्स जो हम लोगों ने बहुत सारी की
1: जी,
0: उसी का ये नतीजा रहा कि हम लोगों ने वहाँ बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशंस किए.
1: ओके
0: और उन ऑपरेशंस की ही वजह से जो है हमारी बटालियन जो है एक टाइम पे हाईएस्ट गैलेंट्री मेडलिस्ट की बटालियन रही है.
1: वंडरफुल. तो ये तो बात हम ऑपरेशंस की कर रहे हैं, और उसके बाद जब एक कंप्लीशन होता है, ठीक है, गौरवान्वित इंसान फील करता ही है, लेकिन आपको लगता है कि आपके उन ऑपरेशन से जो बाकी जो लोकल जो लोग थे उनको बड़ी राहत मिली, दे वर वेरी हैप्पी. शायद वो भी दबा के रखा होगा उन्होंने कि नहीं, हम भी चाहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन हो झारखंड जैसे एरिया में, थोड़ा और मॉडर्नाइजेशन हो. तो उनका भाव आपके जो भी आप कार्यरत थे जितने टाइम के बाद, कुछ सेटिस्फैक्शन उनके भी चेहरों पर दिखी?
0: बिल्कुल. आतंक का पर्याय थे ये नक्सली. ये नक्सलियों लोग डरते थे इनसे, इनके पास हथियार थे, इनके पास AK-47 इंसास इस तरीके के वेपन्स थे जो इन्होंने पहले से लूट लिए थे. इस तरीके के वेपन्स लेके ये जब लोगों के घरों में रात को घुसते थे, उनसे जबरदस्ती खाना बनवाते थे, उनके घर में रहते थे. तो जब ये नक्सली मारे गए या इनका सफाया हो गया तो डेफिनेटली लोगों ने जश्न मनाया है, लोग खुश हैं, आज तरक्की की राह पे आगे बढ़ गए हैं लोग, और उनके पास अब अपॉर्चुनिटीज पहुंचने लगी हैं. ये बैरियर थे उस अपॉर्चुनिटीज के, और वो बैरियर तोड़ दिया. SSB ने वहां जाके इस बैरियर को तोड़ दिया.
1: आपके फोर्स के अंदर फिर क्या माहौल हुआ? मैं समझ सकता हूँ आप ऑपरेशन में थे, आपकी एक टीम थी, लेकिन आपकी फोर्स बहुत बड़ी है, तो ये खबर जब पूरी फोर्स में फैली होगी तो उत्साह के साथ साथ मेरे ख्याल से एक मोटिवेशनल भी एक स्टेप हो गया होगा सबके लिए.
0: बिल्कुल. ये हमारी जो टीम थी, इसी तरीके से हमारे जो बिहार और झारखंड में जो नक्सल ऑपरेशंस में जो टीम्स थी
1: जी,
0: वो टीम्स ने भी हमारी टीम्स के इस जो कार्य करने की शैली थी, इसके बाद जो है उनका भी कार्यशैली में बड़ा परिवर्तन हुआ, और मतलब बेहतर रिजल्ट्स आने लगे. और मोटिवेशन तो होता ही है. फोर्स में जब देख रहा है दूसरा कि ये टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, तो एक कंपटीशन है, और एक पॉजिटिव कंपटीशन है, और सब सारी ही यूनिट्स ने फिर वहाँ पे झारखंड और बिहार में बहुत अच्छा काम किया है. और
1: वो मेरे ख्याल से ऐसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन के बाद आप एक रिसर्च पेपर भी तैयार करते होंगे कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं हम उनको कैसे ग्रूम करें आगे जाके, और शायद वही आप कर रहे हैं अपनी CTC में जो ट्रेनिंग आप.
0: बिल्कुल. हम हमेशा बताते हैं उन्हें कि किस तरीके से ये ऑपरेशंस रहे हैं. ये केस स्टडीज जो है ये लगातार भागों में हर जगह हर ट्रेनिंग सेंटर्स पे चलती रहती है.
1: तो भारत के किन किन प्रांतों से आपके फोर्स के अंदर आप रिक्रूटमेंट करते हैं?
0: ऑल इंडिया हमारे उसमें सभी जगह से लोग आते हैं. साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, हर जगह के लोग हैं हमारे वहाँ पे. बहुत ही भरा पूरा परिवार रहता है
1: जी.
0: और हम हर फेस्टिवल्स को एंजॉय करते हैं. हमेशा कोई ना कोई किसी प्रांत का फेस्टिवल होता है तो बहुत अच्छा.
1: तो मेरे ख्याल से आप ट्रेनर हैं तो आपका भी सबसे पहला सवाल होता होगा किसी नए रिक्रूट से जब आप मिलते होंगे कि आप क्यों आए हो SSB में, क्या खींच कर लाया आपको SS? कुछ ऐसे ही मेरे अंदाज में तो नहीं, आपके अपने अंदाज में?
0: बिल्कुल. हम पूछते हैं उसके कहां से वो आया है, उसकी क्या मोटिवेशन था, किस वजह से उसने फोर्स ज्वाइन करी है
1: जी.
0: हमें जानना होता है कि वो ट्रेनिंग में कितना एक्सेल करेगा, उसको हमने किस लेवल तक लेके आना है.
1: okay.
0: उसमें कितना मोटिवेशन हमें डालने की जरूरत है कि या सेल्फ मोटिवेटेड है, तो हम उसको साइकोलॉजी.
1: थोड़ा सा यहाँ रुख मोड़ रहा हूँ इस प्रोग्राम का. दोस्तों आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स आकाशवाणी रेनबो पर, और मेरे साथ एक खास मेहमान हैं, सेकंड इन कमांड हैं SSB के ललित शाह जी. कुछ आपके पर्सनल लाइफ के बारे में जाने.
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण.
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी. देश के विकास में सहभागी बने.
0: मेरी दो बेटियां हैं
1: जी,
0: और अरेंज मैरिज करी हम लोगों ने 2012 में. और
1: पिथौरागढ़ में अरेंज ही होती है.
0: बिल्कुल.
1: दिल्ली जैसे शहरों में आके लोग कहते हैं पापा आई एम इन लव, बट यू वर ऑलरेडी इन लव विद द नेशन. आप तो कंट्री के साथ प्यार हो गया था. तो आपकी वाइफ जब आपसे मिली, आप लोग में क्या होता है, बहुत कंजर्वेटिव तरीके से शादी होती है एक दूसरे से मिल सकते?
0: हाँ, बिल्कुल. हमारे उसमें जो है पहले घर वाले बात करते हैं
1: जी,
0: तो
1: जी.
0: उसके बाद एक परंपरा है पाता जाने की. जब बात हो जाती है तो पाता चले जाता है. तो जब पाता लड़की का पाता आता है, मतलब पतड़ा जो आपको कहिए,

0: तो वो आता है तो उसके बाद उसका मिलान किया जाता है, और वो मिल जाता है तो उसके बाद शादी फिक्स हो जाती है। तो इसी प्रकार से मेरी भी शादी हुई है।
1: हाँ, बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ यहाँ कि कितना आसान था आपको अपनी वाइफ को समझाना कि मैं सशस्त्र सीमा बल पे हूँ और भारत की एक प्रमुख फोर्स है और तुम फौजी की वाइफ बनने वाली हो।
0: शुरुआत के दिनों में तो मुझे लगा कि थोड़ा सा जो है जानने की जरूरत है, पर मेरी वाइफ ने जितने जल्दी इस चीज को समझा, जितना जल्दी मेरे प्रोफेशन को वो समझ गई, तो वो मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा। मैं नक्सल क्षेत्र में भी रहा, अलग अलग जगह ड्यूटीज की मैंने, पर मेरे को मेरे परिवार का हमेशा बहुत सपोर्ट रहा और मेरी वाइफ हमेशा।
1: जानना चाहता हूँ कि आपके दो बच्चियां भी हैं, तो अभी जिस तरीके की पढ़ाई वो कर रहे हैं, पढ़ाई में भी बहुत फर्क आ गया है
0: जी।
1: मॉडर्न पढ़ाई है और ये गैजेट्स आ गए हैं जो शायद आपके टाइम में उतने नहीं थे, अब तो बहुत बढ़ गए हैं। तो उनका रुझान कैसा है, वो क्या कहती हैं, आर्म्ड फोर्सेस में किसी का मन कर रहा है अभी जाने का? या
0: वो मुझे वर्दी में देख के बहुत खुश होती हैं। बहुत छोटी हैं तो अभी तक हमने उनसे इस तरीके से
1: जी,
0: वो
1: जी।
0: उनकी अभिलाषा जानने का प्रयास किया नहीं है, बट मैंने जरूर देखा है कि जो हमारे फंक्शंस होते हैं फोर्स के, और जब मुझे वर्दी में देखती हैं या बाहर किसी को भी वर्दी में देखती हैं, तो वो प्राइड भी फील करती हैं और वो लाइक भी करती हैं, तो प्रबल हो जाए।
1: आपकी एसएसबी में भी महिलाओं का एक बहुत बड़ा योगदान है।
0: बिल्कुल,
1: आपकी फोर्स के अंदर बहुत सारी महिलाएं हैं जो यूनिफॉर्म पहन के रहते हैं, स्मार्ट कंट्रीब्यूटर्स।
0: बिल्कुल, हमारी फोर्स में महिलाओं का कंट्रीब्यूशन जो है बहुत बढ़ गया है, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रही हैं महिलाएं, और हमारी फोर्स भी जो है महिलाओं की संख्या बढ़ाने पे जो है लगातार प्रयास कर रही है और उसका लेवल बढ़ाने जा रही है। और मैंने देखा है कि महिलाएं भी बहुत जगहों पे, मैंने माउंटेनियरिंग की तो मैंने देखा कि महिलाएं भी बहुत सक्षम है हर चीज के लिए। वो वक्त की बात है, वो बहुत बढ़िया करती हैं और बहुत ही बेहतरीन उनका कार्य है, और कहीं कहीं तो वो पुरुषों को भी पीछे कर देती हैं। उनकी सोचना समझना, उनका तरीका बहुत अलग रहता है।
1: ये गाना आप ही की पसंद का मैं चला रहा हूँ, पूछने की जरूरत नहीं है कि आप किसके लिए गाना चला रहे हैं। संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप, और हमारे साथ ललित शाह मौजूद हैं, सेकंड इन कमांड सशस्त्र सीमा बल।

0: संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं, मेरा नाम है मुनीश जौली। अगर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, मेरे साथ सेकंड इन कमांड एसएसबी के ललित शाह जी से कुछ पूछना चाहते हैं या उनको अपना सल्यूट करना चाहते हैं और उनको अपना एक भाव एक मैसेज के द्वारा देना चाहते हैं, तो ये व्हाट्सएप की जो मशीन है इसका मैं अभी यहाँ पे शुभारंभ कर रहा हूँ। ये नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, आप व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं, सिर्फ टेक्स्ट मैसेज। नंबर है 9868107070, 9868107070। ये नंबर है व्हाट्सएप का, आप अपना मैसेज यहाँ भेज सकते हैं। कुछ लोगों को मुंह जुबानी हमारे जो नंबर है वो याद है ललित शाह जी, तो एक जनाब है दिल्ली से ही, द्वारका से लिख रहे हैं, शंकर लोड उनका नाम है, और वो आपको ग्रीट करते हुए कह रहे हैं कि ऑफकोर्स एक रिस्पेक्ट इंडियन आर्मी को भी, हमारे ब्रेव सोल्जर्स को भी, एसएसबी को भी हम देते हैं। आप कितने फेयरलेस और डेडिकेशन के साथ हमारे देश की सेवा कर रहे हैं। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। इनका नाम है शंकर लोड,
1: धन्यवाद, जय हिंद।
0: और एक और मैसेज अगर मैं यहाँ पढ़ना चाहूँ, वीरू बख्शी हमें मेरठ से सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बहुत ही पेचीदा सवाल है, ये चंद्र कुमार चक्रवर्ती हैं देहरादून से लिख रहे हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि इनका जो मैसेज है कि क्या ये जानना चाहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि सेकंड इन कमांड आप अगर हैं तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज और चैलेंजेस आप अभी फेस कर रहे हैं सीटीसी में।
1: अभी जो मैं सेंट्रलाइज ट्रेनिंग सेंटर में हूँ तो मेरा दायित्व ट्रेनिंग देना है, तो मैं एज ट्रेनर वहाँ पे पोस्टेड हूँ, तो ट्रेनर हूँ। उसके अलावा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी रहते हैं, बेसिकली डीडीओ का कार्य रहता है सेकंड इन कमांड के पास
0: जी,
1: ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर बोलते हैं उसको, तो उसका कार्य पे अलाउंसेस ये जितने भी वित्त रिलेटेड मैटर्स हैं उसमें अपने हेड ऑफ द ऑफिस को असिस्ट करना रहता है।
0: ओके।
1: हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर है उसको डीआईजी लेवल के ऑफिसर वो करते हैं, तो उनको ट्रेनिंग को स्मूथली चलाने के लिए बहुत सारे ऑफिसर्स की नियुक्ति होती है, तो उसमें से एक मैं भी हूँ सेकंड इन कमांड वहाँ पे
0: जी,
1: और ट्रेनिंग और कुछ डीडीओ वाला वर्क जो है मैं वहाँ पे कर रहा हूँ।
0: मशीन खोली है, तो देखिए आपने कहा था ना कि हर प्रांत से आपकी रिक्रूटमेंट होती है, तो देहरादून से अब राजस्थान से एक मैसेज आया नरेंद्र सुधार का, साथ ही साथ बहुत सारे मैसेजेस आते हैं ना जो भावुक होके हम लिखते हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि हमारे को सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं सुना जा रहा, थाईलैंड से अमोल अंबावणे, अगर मैं आपका सरनेम सही ले रहा हूँ, तो वो मैसेज हमें भेज रहे हैं कि न्यूज ऑन एआईआर के माध्यम से हमें देश और विदेशों में सुना जाता है। न्यूज ऑन एआईआर ये एक ऐप है, और पृथ्वी पर कहीं पर भी आप हैं जहाँ पे आपके पास मोबाइल डेटा है और आपको एक्सेस है इंटरनेट का, तो आप हमें सुन सकते हैं। एक और हैं, सल्यूट सर कर रहे हैं, रंजीत इनका नाम है, और वो कह रहे हैं कि मैं सीटीसी एसएसबी श्रीनगर से हूँ, सर मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ और सुन के आपकी आवाज सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, आशा करता हूँ ये आपके परिचित होंगे शायद कोई।
1: थैंक यू।
0: ऑल राइट, ललित सर को जय हिंद कह रहे हैं। महेश सिंह जी कहाँ से लिख रहे हैं ये मुझे बताया नहीं है उन्होंने, लेकिन हम सबको सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है। 29th SI/DE चेतन लिख रहे हैं, आप पहचान गए होंगे
1: जी।
0: हमारी वीर

0: सेना नायक को विजय कुमार तिरुचिरापल्ली से जय हिंद. विजय कुमार जी हैं वहां से लिख रहे हैं. एक और मैसेज आया है हमारे पास, वो कह रहे हैं कि सर इज पोस्टेड एट आवर ट्रेनिंग सेंटर. यश गुप्ता लिख रहे हैं, वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स हिज ड्यूटीज एंड हैविंग वास्ट एक्सपीरियंस. आजकल के यंगस्टर्स भी हमें कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना, बजाय कि हम उन्हें कॉम्प्लीमेंट दें. क्यों,
1: धन्यवाद है यश का.
0: नागेश गडाडे हमें पोलैंड से सुन रहे हैं
1: जी.
0: अब देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि न्यूज़ ऑन एआईआर के माध्यम से देश विदेश से हमें मैसेजेस आएंगे. चंद्रशेखर तिवारी हमें मैसेज भेज रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं तो बैचमेट हूं ललित सर का. सही कह रहे हैं सर
1: जी.
0: ऑलराइट, यश गुप्ता का मैसेज हमने पढ़ा एंड ऑफ कोर्स चेतन का मैसेज हमने पढ़ लिया है. दिल से जय हिंद लिख रहे हैं बाबूलाल यादव
1: जी. जय हिंद बाबूलाल.
0: ऑलराइट, को मैसेज सब भेज रहे हैं. एक और इंटरनेशनल मैसेज यहाँ पे आया है एंड ऑफ कोर्स ये भी पोलैंड से ही आया है. एंड आगे बढ़ते हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो ट्रेनिंग आपने बताया कि ट्रेनिंग का दारोमदार जो होता है उसमें मेन विमेन दोनों आपके बीच आते हैं यहाँ पे.
1: बिल्कुल.
0: कॉम्बैट की सिचुएशन की भी ट्रेनिंग आप देते हैं.
1: बिल्कुल.
0: आपने एंटी इंसर्जेंसी एंटी टेरर ट्रेनिंग भी आप लोग वहाँ पे देते हैं. तो कितना चैलेंजिंग होता है दोनों महिला और पुरुष को एक जैसी ट्रेनिंग देना, या आप कहीं सोचते हैं कि नहीं एक सॉफ्ट ट्रेनिंग रखते हैं हार्ड ट्रेनिंग, ऐसा कुछ होता है?
1: ट्रेनिंग दोनों के लिए ही बराबर है, सेम शेड्यूल है दोनों का. और दोनों ही, मैंने जो देखा है कि दोनों ही, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, ढलने में कुछ समय लगता है, पर एक बार जैसे ही ढल जाते हैं तो वो रोल ऑन करते हैं और बहुत बेहतरीन करती हैं. महिलाओं को मैंने देखा है कि जो उनका एक्सीलेंट टाइम है या उनका वेरी गुड टाइम है या वो है, वो अपने बेंचमार्क्स को अचीव करती हैं.
0: ओके.
1: कुछ समय लगता है, हर किसी के लिए लगता है. अभी तो जो पुरुष भी आते हैं उनको भी समय लगता है.
0: okay.
1: बट एक बार वो ट्रेनिंग में ढलते हैं तो जो उनकी 48 वीक्स की ट्रेनिंग है, जाते जाते सब लोग अपना बेंचमार्क्स अपने आप को क्वालिफाई कर लेते हैं उस ट्रेनिंग को. और इवन फील्ड्स में भी अभी हर जगह पे कोई भी हमारी ट्रांजिट रूट्स हैं या पेट्रोलिंग चल रही है या नाका चल रहा है, तो महिलाएं बराबर का योगदान दे रही हैं.
0: ऑलराइट
1: जी.
0: क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है, लगभग 9 मिनट बचे हैं, तो मैं जल्दी जल्दी आपसे सवाल भी पूछता रहूंगा और किसी का मैसेज छूट ना जाए मैं ऐसी कामना कर रहा हूँ. क्रांति चौधरी पूछ रहे हैं कि क्या पब्लिक भी ट्रेनिंग और डिसिप्लिन आपके थ्रू एसएसबी के थ्रू ले सकती है डिफेंस एकेडमी में?
1: अभी तक का तो जो हमने देखा है कि सिविलियंस को इस तरीके से हम लोगों ने इस तरीके से ट्रेनिंग नहीं दी है.
0: बट सुझाव अच्छा है,
1: बहुत अच्छा सुझाव है. और मुझे लगता है कि इस सुझाव को मैं अभी जाऊंगा तो मैं अपने सीनियर्स के सामने रखूंगा और ये बहुत बेहतरीन सुझाव है और इस तरीके की ट्रेनिंग हमने देनी चाहिए.
0: कृष्ण कुमार साहू हैं, 52 वर्षीय हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ से, और वो आपको जय हिंद कह रहे हैं. शैलेंद्र वर्मा ने हमें मैसेज भेजा दिल्ली से, वो कह रहे हैं कि मैं पूछना चाहता हूं कि फोर्स की ट्रेनिंग में और पुलिस की ट्रेनिंग में, जो आम पुलिस की ट्रेनिंग होती है, उसमें आप लोगों में, आप वो जानना चाह रहे हैं कि कोई फर्क होता है?
1: कुछ जो वेपन्स के हैं या कुछ उसके अलावा कुछ टैक्टिस है जो पुलिस की टैक्टिस है, जो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल करना है, उनके लिए क्यूरिकुलम थोड़ा अलग है. और हमारा जो पाठ्यक्रम है, हमको एएनओ नक्सल ऑपरेशंस भी करने हैं, उसके अलावा उन्हें जीएनके हुए, तो उस एरिया स्पेसिफिक ट्रेनिंग पे भी हम लोग अपने बेसिक ट्रेनिंग में जोड़ देते हैं, जो शायद पुलिस में रह जाता होगा, वो स्टेट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते होंगे.
0: ऑलराइट, टीपीटी सेल एफएचक्यू से जय हिंद बोल रहे हैं कि हमारा ये सेल आपका ये प्रोग्राम सुन रहा है.
1: जी, मैं इस सेल में रह चुका हूँ यहाँ पे.
0: ओके
1: जी.
0: सनातन कुमार नई दिल्ली से लिख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मेरा बेटा ही एसएसबी में है और आज मैं अपने ऑफिसर का काम छोड़कर आपका प्रोग्राम सुन रहा. नहीं भाई, ऑफिस का काम मत छोड़िए, प्रोग्राम करते रहिए और सुनते रहिए, यही तो टेक्नोलॉजी का फायदा है.
1: बिल्कुल.
0: दिनेश कुमार भंडारी तुलसीपुर नेपाल से हमें सुन रहे हैं
1: जी.
0: और वो कह रहे हैं कि लाइव सुन पा रहे हैं और सुनकर उनको आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है. रोहन दीक्षित हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही साथ मैसेजेस आ रहे हैं. एंड ऑफ कोर्स धर्म जी हमारे साथ हैं, वो एक प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं, धर्म भाटिया रोहतक से. मैं ये जानना चाहता हूं कि आपसे कि अब आगे की जो जिस तरीके से हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में भी टेक्नोलॉजी एक डोमिनेट कर रही है वॉरफेयर में. मैं ये नहीं कह रहा कि एसएसपी सिर्फ वॉरफेयर ही करेगी, लेकिन सर्वेलेंस, वो आपने बताया कि बहुत सारे मॉडर्न गैजेट्स आ गए हैं आपके बीच में, तो उसमें भी आप लोग फ्यूचर विजन रख के कुछ विस्तार करने की सोचते हैं?
1: जितनी मेरी लिमिटेड जानकारी है उसके अनुसार जो है स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट इस तरीके से भारत सरकार जो है इम्प्लीमेंट करने जा रही है, और जो स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट होगा उसमें जो गैजेट्स हैं, जो नए गैजेट आ रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा हमारी बॉर्डर गार्डिंग यूनिट्स के संग। और जो हम अपने पोरस बॉर्डर को जो सर्वलांस करते थे मैंड होके, उसको हम टेक्नोलॉजी की मदद से भी उसको सर्वलांस करेंगे और उस पे आने जाने वाले मूवमेंट पे हम लोग नजर रख पाएंगे।
0: यानी मैनुअल और टेक्नोलॉजी दोनों मिलकर करेंगे, यानी कि कम्प्लीटली, लोगों को लगता है कि यार आपने कम्प्लीटली मशीन पर तो कुछ नहीं छोड़ दिया, एआई का जमाना आ गया, आप लोग एआई को अडॉप्ट कर रहे हैं एसएसबी में?
1: कुछ जगहों पे अभी उस रफ्तार से तो नहीं, बट यह है कि एआई के अपने भी कॉन्स हैं, उसमें भी बहुत सारे गैप्स हैं, तो उसको देखते हुए अभी तो बहुत कम स्तर पे ही।
0: तो ललित शाह जी, एक सवाल आ रहा मन में, ठीक है आप इंडो नेपाल इंडो भूटान बॉर्डर पे स्थित हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि इनके अलावा बहुत सारे ऐसे देश हैं वो भी आपकी मूवमेंट पे, आपकी तकनीक पे नजर तो जरूर रखते होंगे।
1: बिल्कुल नजर रखते होंगे और उन पे हम भी नजर रखते हैं, नजर दोनों ही तरफ से रखी जा रही है, और मुझे यकीन है कि हमारी भी एजेंसीज, हम लोग खुद जो है उन पे नजर रखते हैं और उनके किसी भी मूवमेंट पे और किसी भी पैतरे पे हमारी पूरी निगरानी बनी हुई है।
0: हमारे प्रोग्राम के जरिए आपने उन तक ये मैसेज पहुंचा दिया कि
1: हम भी तैयार हैं, बिल्कुल
0: चौकन्ने हैं।
1: बिल्कुल
0: सी टी सी श्रीनगर से ही सोनू चौधरी हमें मैसेज लिख रहे हैं, साथ ही साथ धन सिंह का एक मैसेज आया है, रोशनी रावत हमें मैसेज लिख रही हैं, ग्राम व पोस्ट ममना तहसील सफीपुर जिला उन्नाव, और चंडीगढ़ में भी उनके जानकार हैं, वो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। तो आपको पूरे देश में और काफी जगह ये प्रोग्राम सुना जा रहा है,
1: सब आपका धन्यवाद है, आकाशवाणी का धन्यवाद।
0: नेपाल सिंह हैं, ट्रेनिंग आप ही के जहाँ आप स्थित हैं श्रीनगर, वहीं से हमें मैसेज लिख रहे हैं। एक बहुत प्यारा सा मैसेज आया बाबूलाल यादव का, आसमान में हजारों सितारों से बेहतर हमारे कंधों पर चमकते सितारे हैं जो देश की रक्षा के लिए रात दिन जागते हैं, मेरी तरफ से सर को सुनाओ अच्छा लगेगा,
1: धन्यवाद।
0: ऑलराइट 29th एसआईडी से एक और मैसेज आया, जयपुर राजस्थान से हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपना नाम जरूर लिखें। अमरावती से नीता लिख रही हैं, सलाम कर रही हैं और वो कह रही हैं हम सबकी तरफ से, हम बहुत गर्व से कह सकते हैं कि आप जैसे कमांडर आगे मिलते रहें, भारत माता की रक्षा करते रहें। समय बीतता जा रहा है, सबके ले लिए हैं, और आप अगर हमारे युवाओं को जो आपकी आवाज सुन रहे हैं, सेकेंड इन कमांड ललित शाह, सशस्त्र सीमा बल, आप अपनी तरफ से और अपनी फोर्स की तरफ से भारतवासियों को अगर मैं कहूं कि एक मैसेज देना चाहें या मोटिवेट करना चाहें युवाओं को, तो क्या कहेंगे?
1: मैं कहना चाहूंगा कि फिट रहें, फिटनेस पे ध्यान दें, मेंटली फिजिकली फिट रहें, देशभक्ति अपने अंदर लाएं, और सत्यमेव जयते जो ये एक वाक्य है इसका हमेशा इसको अपने जहन में रखें, सत्य जीतता है और सत्य की तरफ ही हमें रहना है। जय
0: दोस्तों, एक बहुत ही खास एक्सपीरियंस आज रहा, क्योंकि सशस्त्र सीमा बल के शाह जी की तरफ से बहुत सारे मैसेजेस आए हैं जिनके नाम मैं ले चुका हूं, कमांडो प्रवीण उनमें से एक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें मैसेज भेजा। साथ ही साथ गीता विज हमें सुन रही हैं इंग्लैंड से, तो वो सुन के आपको वहां से शुभकामनाएं भेज रही हैं आपको और आपकी फोर्स को। शिरडी से भी हमारे पास मैसेज आया है महाराष्ट्र से, और यही तो है ना जो भारत को जोड़ता है, हमारा ये महान देश। लेकिन चलते चलते मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ आकाशवाणी में भी एक बहुत ही प्रमुख रोल हम लोग प्ले करते हैं, तो ये प्रोग्राम पूरा नहीं हो सकता ललित शाह जी अगर आप अपना संबंध आकाशवाणी से कितना पुराना है और क्या खास है वो अपनी जुबानी बता के जाएं।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी से संबंध उतना ही पुराना है जितना पुराना मैं हो चुका हूं।
0: अच्छा।
1: जब छोटे थे पहली बार रेडियो सुना तो आकाशवाणी जो है उसको सुनते थे और बहुत अच्छा लगता था, और आज भी हम जो है आज यहाँ आके भी ऐसा लगा कि मैं कोई नई जगह नहीं, मैं वहां जा रहा हूँ जिसको मैं बचपन से सुनता आया हूँ।
0: राइट देन, तो आप ही की पसंद का एक गाना है, उसके साथ इस प्रोग्राम का समापन करते हैं। किशोर दा के आप बहुत बड़े फैन हैं, आपने गा के नहीं सुना है कुछ, ट्राई कर सकते हैं?
1: नहीं, बस यही गाना मैं गा लेता हूँ जब भी कहीं पार्टी और कुछ होता है।
0: मौका अच्छा है आकाशवाणी पर माइक पर नहीं बना सकते
1: फिर कभी, पर ये मेरा पसंदीदा गाना है।
0: Right then, संदेश टू सोल्जर्स में आज बस इतना ही, बहुत बहुत हैं तो हम हैं 90 साल 9 दशक आकाशवाणी भारतवासियों के साथ रहा है, भारत के साथ रहा है, आप भी हमारे साथ रहें।

नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं और अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। उन्होंने कहा, राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। बैठक में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने और रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बैठक में हिस्सा लिया। एक ट्वीट संदेश में श्री योगी ने कहा कि विकसित भारत एक्ट 2047 के समावेशी मानव विकास की थीम पर केंद्रित नीति आयोग की बैठक में मानव विकास, सुशासन और जनभागीदारी को विकास की धुरी बनाकर विकसित भारत के संकल्प को नई गति देने पर सार्थक विमर्श किया गया है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश भी प्रत्येक नागरिक के सशक्तिकरण को विकास का आधार बनाकर विकसित भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। प्रदेश सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा राज्य के दिव्यांगजनों के कल्याण और आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने राज्य निधि मद से दिव्यांगजनों और इस क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं को विभिन्न श्रेणियों में वित्तीय सहायता देने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों की प्रतिभा को निखारना, उनकी शिक्षा, चिकित्सा और दैनिक जीवन को सुगम बनाना है। योजना से जुड़ी जानकारी और विवरण विभाग की वेबसाइट upsw.gov.in पर उपलब्ध है। इसके अलावा लखनऊ कार्यालय में जाकर जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी से भी सीधे संपर्क किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसले में कहा कि गृहिणियों का कार्य केवल घरेलू कामकाज तक सीमित नहीं है, बल्कि वे परिवारों और भावी पीढ़ियों के निर्माण में अतुलनीय योगदान देती हैं। न्यायालय ने कहा कि घर का प्रबंधन करने वाली महिलाओं को केवल गृहिणी कहकर संबोधित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये शब्द समाज में उनके योगदान को कम आंकता है। पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि देखभाल और घर के प्रबंधन सहित घरेलू काम अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उन्नाव के भगवंत नगर में आज महाजनसंपर्क अभियान चलाया गया। मेरठ में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष ने महिलाओं से संवाद कर उन्हें केंद्रीय योजनाओं की जानकारी दी। अम्बेडकर नगर में बाल श्रम उन्मूलन एवं जन जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वहीं शाहजहांपुर में विशेष जनसंपर्क एवं जन जागरूकता संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। अयोध्या में आज होमगार्ड सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें अयोध्या मंडल के 5 जिलों अयोध्या

बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर और अम्बेडकर नगर के होमगार्ड अधिकारी और जवान शामिल हुए। सम्मेलन के बाद मीडिया से बात करते हुए डीजी होमगार्ड डीके ठाकुर ने बताया कि बैठक में विभाग की समस्याओं, आवश्यकताओं और कार्य प्रबंधन पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि जो भी समस्याएं शासन स्तर पर लंबित हैं उनके समाधान के लिए प्रयास किए जाएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
4: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
3: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. धड़कन लखनऊ की।

सोमारिया लिसनर्स, 5:06 और 2 सेकंड हो चुके हैं और शुरू हो गया है आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम टॉप 10। और टॉप 10 में आपके साथ है आपकी रेडियो साथी अलका। सो स्टे ट्यून 100.7 FM रेनबो, क्योंकि आज आप कुछ खास हम बात करेंगे बॉलीवुड और इंडियन म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की, जिसमें कुछ धमाकेदार गानों ने धूम मचा रखी है। तो नंबर 10 से लेकर आगे बढ़ेंगे और आपको उन गानों को सुनवाएंगे भी और उनके बारे में भी बताएंगे। फिलहाल ट्यून रखिए 100.7 FM रेनबो, क्योंकि नंबर 10 पर है ये ब्यूटीफुल ट्रैक फ्रॉम द मूवी धुरंधर द रिवेंज।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
4: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
4: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। pmsuryaghar.gov.in पर।
1: घर

और नंबर 10 पर आपने एंजॉय किया धुरंधर का वो ट्रैक, लेकिन अब बारी आ गई है नंबर 9 की, जिस पर ये खूबसूरत सा ट्रैक है कबूल फ्रॉम द मूवी हक। जी हाँ, यामी गौतम और इमरान हाशमी की ये फिल्म जो समाज को एक मैसेज भी देती है और खूबसूरत गाने भी। तो इस गाने ने नंबर 9 पर अपने पैरों को जमा कर रखा, फ्रॉम द मूवी हक कबूल।

0: neurology services, experienced doctors or personalized care.
1: Pine Pediatric Brain and Spine Surgery, PICU, EEG, MRI, Genetic Test, Physio और Speech Therapy जैसी सुविधाएं ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए.
0: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा, हरदोई रोड, लखनऊ. कॉल 666-4444.
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है. कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था. कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है. पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना. मैंने कहा ओ ये सही है बेटा.
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in.
4: हर घर सूर्य घर.
5: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की.
6: तो फ्रेंड्स, 5:14 और 9 सेकंड हो चुके हैं. 100.7 FM रेनबो पर आरजेएल का आपके साथ है. आप इंजॉय कर रहे हैं आज का टॉप 10, लेकिन आज के टॉप 10 को बना देते हैं टॉप 5. जी हाँ, आज आप इस प्रोग्राम में टॉप 5 सॉन्ग्स को ही इंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि कुछ ही देर के बाद आपके लिए खास प्रोग्राम रोंदेवू लेकर हाजिर होंगे. जी ठीक 5:30 बजे. लेकिन इससे पहले टॉप 5 सॉन्ग्स को आप अपने इस प्रोग्राम में इंजॉय जरूर कर पाएंगे, जिनमें से नंबर 10 और नंबर 9 को आप इंजॉय कर चुके हैं. और अब बारी आ गई है नंबर 8 की. जी हाँ, नंबर 8 पर आ गया है धनुष और कृति सेनन की मूवी तेरे इश्क में का ये ट्रैक आवारा अंगारा. तो चलिए ऐसा करते हैं इंजॉय, और फिर बढ़ चलते हैं अपने अगले काउंटडाउन की तरफ.

जी हाँ, हम पहुंच चुके हैं नंबर 10, 9, 8 और अब आगे हैं इस वक्त हम नंबर नेक्स्ट पर। जी हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सा नंबर 7 की बात कर रहे हैं और नंबर 7 पर कुछ ऐसे ट्रैक्स भी रहे जो कि फिल्मी गानों के संग संग अपनी धाक जमाने में लगे हुए थे। अनुव जैन का अर्ज किया है ये नॉन फिल्मी सिंगल जो कि लोगों को बेहद पसंद आया और पहुंच गया नंबर 7 पर। तो चलिए इस ट्रैक को करते हैं इंजॉय नंबर 7 पर।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
2: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
1: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
3: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
4: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
3: और लाइट बिल के
4: अब 0 रुपए कैसे दूं?
3: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
4: पक्का।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
6: हर घर सूर्य घर।
1: शरीर में हॉर्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
2: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
7: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: सो फ्रेंड्स, बारी आ गई नंबर 6 की, तो चलिए नंबर 6 पर आपको ले चलते हैं आवन जावन फ्रॉम द मूवी वार 2।

सो माय डियर लिसनर्स, 5:28 पहुंच चुके हैं नंबर 6 पर. तो आज के लगभग लगभग 5 सॉन्ग्स टॉप 5 की कहूंगी, टॉप 10 तो नहीं कहूंगी, पहुंच चुकी हूं नंबर 6 पर. तो टॉप 5 सॉन्ग्स हो गए हैं कंप्लीट. तो फिलहाल इस ट्रैक को करिए एंजॉय और आपसे फिलहाल टेक केयर एंड बाय बोलते हैं. कुछ देर में आपके लिए लेकर आएंगे रोंदेवू. सो वक्त हो गया है आपसे टेक केयर एंड बाय बोलने का. वापस मिलेंगे आपसे शाम अवध में ठीक 6 बजे.

और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम रोनदेवु। एक वरिष्ठ पत्रकार ऋषि मिश्रा जी से सुभाष खन्ना की बातचीत पर आधारित यह कार्यक्रम, जिसके प्रस्तुतकर्ता हैं प्रवीण कुमार।

0: दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस विशेष कार्यक्रम में। और दोस्तों जैसा आपको पता ही है कि हम इस कार्यक्रम में आपको किसी ऐसे व्यक्ति से, विशेषकर किसी मीडिया के व्यक्ति से आपकी मुलाकात करवाते हैं, उनके जीवन के जो अनुभव है या पत्रकारिता का जो उनका अनुभव है, उनकी जो यात्रा है, उनका जो इससे लगाव है, उनकी वो उन्होंने पत्रकारिता में क्या पाया, क्या समझा, क्या देखा, आजकल क्या देखा, क्या ढेर सारे ऐसे परिवर्तन देखे और आज कहाँ है मीडिया, ढेर सारी हम बातें हमारे मेहमान साथी से करेंगे। और मैं आपको परिचय कराता चलूं, आज हमारे साथी हैं श्री ऋषि मिश्रा जी, आप ईटीवी डिजिटल में सीनियर रिपोर्टर हैं। बहुत स्वागत सर आपका कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: हम मीडिया की बात करते हैं, वैसे संचार तो आदिकाल से ही चला आ रहा है, जब भी दो व्यक्ति चार व्यक्ति इकट्ठा हुए सूचनाओं का संप्रेषण होता रहा, धीरे धीरे चीजें बढ़ती रहीं। आपकी जो जीवन यात्रा रही वो क्या मीडिया से ही संदर्भित रही या आपने बाद में मीडिया को ऑप्ट किया?
1: नहीं, निश्चित तौर पर जब मैं पढ़ाई कर रहा था और मैं 11th क्लास में था
0: जी,
1: तभी से मुझे ये था कि मुझे पत्रकार ही बनना है। मैंने शायद इसी फील्ड को ही चुन लिया था, बहुत छोटा था तब, कभी मिलिट्री में जाने की सोचता था, लेकिन दुर्भाग्य से मेरी एक उंगली टेढ़ी होने की वजह से मुझे पहले ही मना कर दिया गया था। तो फिर मैंने 11th के बाद ये तय किया कि मैं पत्रकारिता में जाऊंगा, क्योंकि मेरे बड़े भाई भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी प्रेरणा से मैं पत्रकारिता में आया और जी, 2001 से एक प्रशिक्षु के तौर पर हिंदुस्तान अखबार से मैंने पत्रकारिता की शुरुआत की थी। इसके बाद मेरा सिलसिला आगे बढ़ा, फिर मैंने बतौर स्टाफर स्वतंत्र भारत अखबार में ज्वाइन करा, खेल डेस्क पर था।

0: खेल की रिपोर्टिंग भी करता था। 2003 में मुझे लखनऊ से बाहर हरियाणा के शहर फरीदाबाद जाने का मौका मिला
1: जी।
0: और फरीदाबाद में 2003 में मैंने अमर उजाला अखबार ज्वाइन किया और अमर उजाला में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेते हुए 2005 में तो मैंने एक साल के लिए दैनिक भास्कर अखबार फरीदाबाद में ही ज्वाइन करा। अक्टूबर 2006 में मुझे कानपुर अमर उजाला में वापसी का मौका मिला। मैं एक बार फिर अपने गृह प्रदेश गृह जनपद के नजदीक आ गया। अमर उजाला में चल रहा था सिलसिला बतौर खेल संवाददाता। उस समय मुझे लखनऊ में तबादला मिला और मैंने यहाँ पर अपना आगे से सिलसिला शुरू किया और इसके बाद मैं 2016 तक लगातार अमर उजाला के लिए काम करता रहा। अमर उजाला के बाद एक साल मैंने गांव कनेक्शन अखबार में काम किया जो ग्रामीण क्षेत्र में काम करता है, और एक साल उसमें काम करने के बाद फिर मैंने करीब 3.5 साल दैनिक जागरण लखनऊ में काम किया। दैनिक जागरण के बाद 2021 में सितंबर में मैं ईटीवी भारत में वरिष्ठ संवाददाता के तौर पर काम करने लगा और वहीं से अभी तक ये सिलसिला जारी है।
1: आपकी जब जीवन यात्रा की बात की जा रही है तो आपने प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ढेर सारे ऐसे अखबार, आपने कहा गांव कनेक्शन के, भाई आप रूरल

0: और एक साल उसमें काम करने के बाद फिर मैंने करीब 3.5 साल दैनिक जागरण लखनऊ में काम किया। दैनिक जागरण के बाद 2021 में सितंबर में मैं ईटीवी भारत में वरिष्ठ संवाददाता के तौर पर काम करने लगा और वहीं से अभी तक ये सिलसिला जारी है।
1: आपकी जब जीवन यात्रा की बात की जा रही है तो आपने प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ढेर सारे ऐसे अखबार, आपने कहा गांव कनेक्शन के भाई, आप रूरल जो रिपोर्टिंग है आपने वो भी की है, कितनी विविधताएं देखते हैं? और क्यों कहें कि जब आपने रिपोर्टिंग शुरू करी तब से और आप में क्या परिवर्तन देखते हैं?
0: बहुत भाग्यशाली हूं मैं इस दिशा में, क्योंकि मैंने जब पत्रकारिता शुरू की तो बदलाव का दौर बहुत तेजी से शुरू हुआ था।
1: जी,
0: हमारे जो सीनियर थे उनमें से बहुत से लोग कंप्यूटर नहीं जानते थे, टाइपिंग नहीं करते थे, तो उसी समय ये दबाव पड़ना 2001 2002 में सबसे ज्यादा ये दबाव पड़ना शुरू हुआ कि आप लोग टाइपिंग सीखिए। और हम जब आए, शुरुआत में हम कागज में लिखते थे, हमारे लिए बहुत आसान था क्योंकि हम कंप्यूटर थोड़ा बहुत जानते, हमने कंप्यूटर पे ही काम करना शुरू करा, तो हमने वो समय भी थोड़ा बहुत देख लिया था। फिर एक साल के करीब स्वतंत्र भारत में जब मैंने काम किया तो स्वतंत्र भारत तब तक कंप्यूटर की ओर इतना नहीं आया था, तो हमने हाथ से उसमें साल भर लिखा और हमने पेज बनते देखा। अब बदलते बदलते पिछले करीब 2001 से लेकर के 2026 की बात करें तो मतलब अमूल चूल परिवर्तन पत्रकारिता के क्षेत्र में देखे, और प्रिंट में हाईटेक होती मशीनें देखी, धीरे धीरे सारी चीजें बड़ी आसान होती चली गई। और ये सिलसिला आगे बढ़ते बढ़ते जब ईमेल हम लोग ज्यादा करना शुरू किया, उसके बाद से तो स्थिति ये हो गई, हम लोग घर से भी खबर लिखना शुरू कर दिए और अखबारों में भी मोबाइल पे ऐप आ गए कि कहीं भी बैठकर आप खबर और फोटो भेज सकते हैं। हम लोग ऑफिस जाते थे लेकिन ये भी था कि फील्ड से भी, और साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म सभी बड़े अखबारों ने अपने शुरू कर दिए थे। हम लोग प्रिंट के लिए काम करते थे लेकिन पहले जो व्यवस्था नहीं थी कि प्रोग्राम में बैठे हैं और हमको डिजिटल के लिए भी कॉपी देनी हो, तो हम व्हाट्सएप पे डिजिटल के लिए कॉपी देने लगे, वो कॉपी हमारी जो है डिजिटल में भी चल जाती थी, फिर शाम को हम उसे थोड़ा और अपडेट करके अखबार के लिए लिखा करते हैं। जब मैं ईटीवी भारत में आया तो इतना लकी हूं मैं कि ईटीवी भारत एक ऐसा संस्थान है जिसमें दोनों चीजें हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी पुट नजर आता है और डिजिटल, जो कि आज के युग की सबसे बड़ी डिमांड है। डिजिटल युग में भी बहुत चीजें हमने जाना, कैसे होता, कैसे कैमरा फेस करना है, स्टोरी प्रिंट डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक के बीच में क्या सामंजस्य है, और यहाँ पे क्या है, हमें लिखना प्रिंट की तरह है, हम प्रिंट वाले तो थे ही, हम इलेक्ट्रॉनिक वाले भी हो। आज की तारीख में तो पलक झपकते खबर फ्लैश होती है, कोई देरी नहीं है, हम सब कुछ करके छोड़ चुके होते हैं जब अगले दिन के अखबार में वो चीजें आती हैं। कुछ अलग हो सकती हैं लेकिन अधिकांश आप अखबार देखेंगे तो 90% चीजें ऐसी होती हैं जो शाम को या आपकी नजर में आ चुकी होती हैं। आज की सबसे बड़ी चीज ये है कि मीडिया की चीजें जब सोशल मीडिया पे आती हैं, पहले एक होता था कि संपादकीय के लिए पत्र लिखते थे, आज उसकी जरूरत नहीं, आपने खबर सोशल मीडिया पर डाली और रिएक्शन शुरू और नैरेटिव सेट्स होते हैं।
1: हम लोग बात कर रहे थे कि ये एलाइड डेवलपमेंट्स रहे कि मशीनें नई आ गई या उसमें आमूलचूल परिवर्तन हो गए। आपने कहा कि भाई हम प्रिंट लिखते हैं लेकिन हम इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट के बीच का लिखते हैं कि दोनों में सामंजस्य बना रहे हैं। हम शब्दों से कहानियां रचते हैं या शब्दों से उन घटनाओं को कहीं ना कहीं किसी एक प्रोजेक्टर पर हम चरितार्थ कर देते हैं या उतार देते हैं, शायद जब पाठक पढ़ता है तो उसे लगता है कि सामने घटित हो रहा है। तो ये जो शब्दों की जो कला है, क्या वो आज भी वैसे ही विद्यमान है या उसमें भी कुछ आमूलचूल परिवर्तन आए?
0: बहुत चीजें समझ में आती कि कुछ लोग आपको अच्छे लगते हैं न्यूज में,
1: जी,
0: कुछ को आप भूल जाते हैं, कारण उनका चेहरा नहीं है, बोले गए शब्द। जिनके पास शब्दों की खान होगी, जिनके पास वोकैब होगी, जिन्होंने लिखा होगा, जिन्होंने पढ़ा होगा, वो हालात का चित्रांकन शब्दों के चित्र बेहतर तरीके से बना सके। ऐसे ही आज के समय में भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, डिजिटल मीडिया में हो, जो भी एंकर अपनी बात को बेहतर तरीके से रख रहे हैं, सादगी से, शालीनता से कह रहे हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं। और जो शोर मचाते हैं या जिनके पास शब्दों की कमी है, एक कहते हैं ना 100,000 शब्दों की एक उनके पास गठरी है, उसी को रोज पलटते रहते हैं, उनको लोग बहुत पसंद नहीं करते। लेकिन हाँ, जो लोग गहराई से बात को कहते हैं, सिलसिला बताते हैं, उनको लोग पसंद करते हैं। तो शब्दों का महत्व दोनों जगह है।
1: सोर्स की भी बात होती है कि जब आपके पास खबरें कई चैनल्स में या आपके जो रिपोर्टर रहते थे वो जो बोलते थे या लिख कर भेजते थे, आप शायद उस कहानी तक, उस घटना तक वहीं तक सीमित होते थे। आज सोशल मीडिया है, आप तुरंत उसकी वीडियोस देख लेते हैं, ढेर सारी प्रतिक्रियाएं देख लेते हैं और कई बार जो जो घटना है वो विभिन्न मुख से, विभिन्न तरीके की आप सुनते हैं उसको। कैसे आप डिफाइन करते हैं, कैसे रिफाइन करते हैं, कैसे उस खबर की सत्यता तक जाते हैं और अखबारों में उसे परोसते हैं या आप प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया?

0: मैं उसे उस तरह से स्पेस प्रदान करते हैं।
1: देखिए ऐसा होता है कि ये चीजें हिस्से में जिम्मेदारी आती है कि आपका तजुर्बा आपका अनुभव, जब आप समझिए कि एक डॉक्टर के पास ओपीडी में आप जाते हैं, आपको लगता है कि आपको बहुत प्रॉब्लम है, वो आपको बहुत सहजता से देखता है और आपको खट से दवा लिख देता है क्योंकि उसका अनुभव है, वो जानता है कि ये जो आप सिम्टम्स बता रहे हैं इन सिम्टम्स में आपको क्या प्रॉब्लम है। ऐसे ही जब हम लोग अनुभवी हो गए हैं, हम जब वीडियोज देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि ये ओरिजिनल घटना है, इसमें कोई पेशबंदी है या ये फैलाई हुई चीज है या इसमें किसी के खिलाफ साजिश है या ये वास्तविक घटना है। ये सारी चीजें वीडियो को देखते ही समझ में आ जाती हैं। हमें अपने संवाददाता पे भरोसा तो करना ही पड़ता है लेकिन जब ऑफिशियल वर्जन आते हैं, संबंधित पक्षों के वर्जन आते हैं, उनको जब हम मिलाते हैं तो हम देखते हैं कि एक तुला में रख करके कि ये घटना कितनी सच है और कितनी झूठ। तो इन सारी चीजों से समझ में आता है कि ये कितनी सच है कितनी झूठ है और उनका निचोड़ निकाल के वास्तविक खबर सामने रखी जाती है।
0: अनुभव की जब हम बात करें, आपने 2001 से 2026 तक का ये काल देखा और ढेर सारे परिवर्तन आपने देखे, क्या जो खबर होती है जब वो उसे स्पेस देते हैं, आप उसे उस पेज पर जगह देते हैं, कैसे उसके प्रेफरेंस सेट करते हैं, कैसे उसे खबरों में रखते हैं कि कौन पहले पेज पे कौन आखिरी पेज पे कौन ज्यादा प्रमुख है, इसका निर्धारण कैसे करते हैं?
1: देखिए इसका निर्धारण सिंपल ये है कि आज की जो खबर है उसका इम्पैक्ट कहाँ है, उसकी ग्रेविटी क्या है, इतना लोगों को सम्मोहित कर रही है, उस हिसाब से खबरों की प्राथमिकता तय होती है। ये जो सवाल है ये प्रिंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इलेक्ट्रॉनिक के लिए भी, खबर कौन सी ऊपर उठानी है। कई बार ये संपादकों की भावनाओं, संपादकों की मानसिकता पर भी निर्भर करता है कि उनको किस तरह से इसको प्रस्तुत करना है, लेकिन मेरा ये मानना है कि संपादक सबसे पहले यही देखते हैं मोस्टली पब्लिक इंटरेस्ट और इस घटना का प्रभाव है। दो चीजें, एक जैसे हम अखबार के प्रथम पृष्ठ पर नेशनल खबर, स्टेट खबर और लोकल खबर तीनों को स्थान देते हैं, लेकिन हमारी फर्स्ट लीड वो होगी जो लखनऊ के 200 लोग किसी इलाके में संक्रामक रोग फैलने से बीमार होकर अस्पताल पहुंच गए हैं, ये हमारे लिए बड़ी खबर होगी। उत्तर प्रदेश में राजनैतिक समीकरण क्या है और अमेरिका के प्रेसिडेंट को अबदस्त करने के लिए क्या साजिश हो रही है, इसमें हमारे लिए उत्तर प्रदेश के राजनैतिक समीकरण ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे बनिस्बत अमेरिका की पॉलिटिक्स और वहां के प्रेसिडेंट को अबदस्त करने की कोशिशों के मुकाबले। तो हमको ये देखना है कि हमारे जो ज्योग्राफी है, हमारी जो प्रॉब्लम्स, हमारी जो पाठक है, हमारा जो टारगेटेड रीडर है, उस पे क्या ज्यादा इम्पैक्ट।
0: ये तो हम लोग व्यापक पत्रकारिता की बात कर रहे थे, अगर हम ऋषि जी के पत्रकारिता की बात करें, क्या ऐसा आपको अनुभव रहा इन दो दशकों का, क्या आपको लगा कि इस फील्ड में हमने आकर एक कार्य की संतुष्टि पाली या कौन से हमने ऐसे बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए जो आज भी हमारे जीवन में याद है?
1: पत्रकारिता में एक बहुत बड़ी चीज ये है कि हम पब्लिक के लिए कुछ कर, जाने कितने ही मौकों पर हमने अपनी खबरों के माध्यम से लोगों को न्याय दिलवाया है, केवल मेरी ही बात नहीं है, सभी पत्रकारों की, मैं अपनी बात करता हूँ तो मैं जाने कितने ऐसे लोग, सोच लीजिए किसी ने अगर 25 लाख 30 लाख रुपए अपने जीवन की गाड़ी कमाई लगाई और उसका मामला फंसा हुआ, मेरी दो खबरों से उसका निदान हो गया, ऐसे अब मैं कितने ही केस आपको इतने साल में गिना दूं, कितनी बार ऐसा हुआ कि लोगों की हमने मदद की और उनके काम हुए, कई जगह पुल बने, कई जगह सड़कें बेहतर बनी, कई जगह दूसरे काम हुए, घाटों पे काम हुए, गोमती के लिए लिखा, अनेक ऐसे प्रकरण हैं, कई घोटालों में लोग निलंबित हुए, उन पे कार्रवाइयां हुई गलत लोगों के ऊपर,
0: ढेर सारी आपने अवेयरनेस भी फैलाई होगी,
1: बहुत ज्यादा बिल्कुल, चाहे वो पर्यावरण के क्षेत्र में हो, चाहे हाउसिंग के क्षेत्र में, जो भी सरकारी एजेंसी की है, इतना काम किया कि आज काफी अवेयर है लोग।
0: पढ़ाई लिखाई की आपकी बात करें, क्या शिक्षा रही, कहाँ से रही?
1: मैंने हाई स्कूल लखनऊ के टॉक के बानवाली गली में अग्रसेन इंटर कॉलेज है, वहां से हाई स्कूल किया, बाद में एक ब्राइट करियर इंटर कॉलेज है ठाकुरगंज में, वहां से इंटरमीडिएट किया
0: जी।
1: फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया और फिर भारतीय विद्या भवन एक महाराष्ट्र की संस्था है, उनका एक इंस्टीट्यूट यहाँ पर नरही में हुआ करता था, नारंग बिल्डिंग में, वहां से मैंने एक साल का पत्रकारिता का डिप्लोमा किया।
0: अब बात करें, चूंकि आपका इतना बड़ा अनुभव है, हमारे जो श्रोता है कई बार अगर वो पत्रकारिता में आना चाह रहे हो, क्या मूलभूत चीजें होनी चाहिए किसी व्यक्ति के अंदर की वो इस विधा में आए?
1: देखिए अगर कोई पत्रकारिता में आना चाहता है तो निश्चित तौर पर वह आ सकता है पत्रकारिता में, और क्योंकि जो पत्रकारिता में आना चाहता है वही इस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करता है। लेकिन मेरी सलाह जो नए लोग हैं जो पत्रकारिता में आना चाहते हैं उनके लिए एक है कि सबसे पहले हिंदी और अंग्रेजी, जो भाषा वो लिखेंगे उसका तो पूर्ण ज्ञान, और एक दूसरी भाषा हिंदी या इंग्लिश उसको वो समझ सकते हो और बोल सकते हो और उसका ट्रांसलेशन उन्हें आता हो। अगर वो अंग्रेजी में है तो

0: के लिखे हुए सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हो, और अगर वो हिंदी में है तो अंग्रेजी के लिखे गए सेंटेंसों को अच्छे से न्यूज फॉर्मेट में ट्रांसलेट। तीसरा, अगर वो उत्तर प्रदेश के अलग इलाके में जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश में है या पूर्वांचल में, तो भोजपुरी उनको आनी चाहिए, भोजपुरी समझ सकते हो, लोकल लैंग्वेज, चाहे वो पश्चिम की हो, ब्रज की हो, चाहे दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, तो लोकल लैंग्वेज पर भी उनकी पकड़ होनी चाहिए। क्योंकि कई बार जब आप ग्रामीण अंचल या जाते हैं, लोगों से कन्वर्सेशन करने में आसानी होती है और वो आपको अपना मानते हैं, तो ऐसे में पत्रकारिता आसान हो जाती है। तीसरी, मुझे मानना है कि पत्रकारिता करने के लिए जिस दिन आप पहले दिन आप कोर्स करके निकले, आपको टाइपिंग आनी चाहिए दो भाषाओं की, इंग्लिश, जिस भाषा में भी आप जाना चाहते हैं उसकी टाइपिंग स्पीड आपकी 35-40 तो कम से कम, ताकि जब आप, आपके बॉस को आपको ये ना बताना पड़े कि भैया टाइपिंग सीख के जाइए। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जनरल स्टडी, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, दर्जनों बीट होती हैं, वो किसी में भी काम दिया जा सकता है। आपका कोई विकल्प नहीं है कि आप जाकर कहें कि मुझे तो जी क्राइम में करना है, मुझे पॉलिटिक्स में करना है, मुझे अपराध में करना है, मुझे खेल में करना है, वो आपका संपादक देगा। तो सीखने के लिए तैयार रहें। अगर आज की तारीख में आप पत्रकार बनना चाहते हैं तो 20-22 पन्नों को आप पढ़िए, उसमें से नॉलेज गेन कीजिए। बहुत बड़ी चीज है कि आपको स्टीरियोटाइप से दूर रहना है पत्रकारिता, ये किसी की शारीरिक बनावट पे कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए।
1: चूंकि आप मीडिया में ही हैं, आप खबरें लिखते हैं, पढ़ते हैं, विगत इतने दशकों का अनुभव है, क्या गीत संगीत में भी कुछ रुचि है?
0: संगीत, क्रिकेट, दो चीजों में मेरी बहुत रुचि है।
1: कोई पसंदीदा गाना जो हम अपने श्रोताओं को सुनवाना चाहें और हम लोग भी सुने उसे?
0: पल पल दिल के पास।
1: तो श्रोताओं, ये है ऋषि जी का पसंदीदा ट्रैक।

0: दोस्तों, एक बार पुनः आपका कार्यक्रम में स्वागत है। तो ऋषि जी, अभी तक तो बात हो रही थी कि पत्रकारिता में क्या परिवर्तन हुए, कहाँ से हम आज 2026 तक पहुंचे, आगे क्या देखते हैं, आगे इसमें क्या मूलचूल परिवर्तन देखते हैं, क्या इसकी मूल भावना में भी कुछ परिवर्तन देखते हैं, इसके एलाइड इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें बहुत परिवर्तन होंगे जिससे ये प्रभावित होगी।
1: देखिए, आने वाले समय की पत्रकारिता में मुझे लगता है कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होने जा रही है वो होगी तटस्थता। और अगर आपको पहचान बनानी है तो आपको तटस्थ रहना पड़ेगा। और आने वाला समय जो है वो है व्यक्ति की अपनी खुद की संस्था, अपनी खुद की पत्रकारिता की। कारण मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि आज की तारीख में बिना विज्ञापन, बिना किसी तनख्वाह के काम करना उतना मुश्किल नहीं रह गया अगर आपके पास अच्छा कंटेंट है। आप सोशल मीडिया पर पेज बनाकर, यूट्यूब पर चैनल बनाकर अगर अच्छी पत्रकारिता करना चाहें तो ऐसे देश के अंदर हजारों केस हैं जो न्यूट्रल तौर पर अपनी बात को रख रहे हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं बिना किसी गड़बड़ काम के, बिना किसी से कोई अनुदान लिए, क्योंकि आपको सोशल मीडिया आपके काम का पैसा दे रहा है, उतना दे रहा है कि आप अपने खर्चे चला सकते हैं। आने वाला समय इसका भी है, डिजिटल मीडिया चलती रहेगी, प्रिंट मीडिया चलती रहेगी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी चलती रहेगी। खतरे एआई से हैं, एआई इसको किस दिशा में ले जाएगा अभी हमको बहुत इसका अंदाजा नहीं है। फिलहाल तो यह है कि एआई एक टूल की तरह आप इसका इस्तेमाल करें, अपने ऊपर हावी ना होने दें, उसी तरह इस्तेमाल करें कि ये पेन है, पेन को मैं चलाऊंगा तो लिखेगा, इस पेन को मैंने छोड़ दिया ये अपने आप चलेगा और लिखेगा, तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो आने वाला समय तटस्थता का है। जो पत्रकार जितना तटस्थ होकर काम करेगा उतना अच्छा पत्रकार माना जाएगा और उसका नाम होगा। ये तटस्थता ही पत्रकारिता को रिवाइव करेगी।
0: आपने कहा सोशल मीडिया की बात की कि अब हमने ऐसे प्लेटफॉर्म अवेलेबल करा दिए, सोशल मीडिया ने हमें प्लेटफॉर्म दे दिया कि हर व्यक्ति अपना संवाद कर सकता है, अपनी बात रख सकता है। आपने कहा कि भाई पत्रकारिता में अब किसी बहुत बड़े माध्यम की जरूरत नहीं है, कोई व्यक्ति यदि योग्य है, अच्छी पत्रकारिता करता है तो वो अच्छा संवाद कर लेगा। लेकिन एक यही जो बात आपने कही, यही कहीं कहीं अभिशाप भी हो रही है कि हम कई बार जो मीडिया है, सोशल मीडिया है, उसका दुरुपयोग भी हो रहा है, कई ऐसी खबरें पहुंच रही हैं, कई बार इसकी वजहों से कई ऐसी सामाजिक दिक्कतें हो रही हैं, कई बार बहुत भ्रामक सी खबरें लोगों तक पहुंच भी जा रही हैं। क्या इस पर भी नियंत्रण रखना जरूरी है और कैसे नियंत्रण हो रहा है?
1: देखिए, हम यहाँ पे जिम्मेदार पत्रकारिता की बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चल रहा है और पत्रकारिता के नाम पे भी बहुत कुछ चल रहा है। सोशल मीडिया पे जो कुछ चल रहा है, फैक्ट चेक के 1000 टूल्स हैं। आप उसी तरह से है कि आप बाजार में अगर आलू टमाटर भी खरीदने जा रहे हैं तो चारों ओर से घुमा के देख रहे हैं। एक महत्वपूर्ण न्यूज जिसको आप अपने फैमिली ग्रुप में व्हाट्सएप पे डालने जा रहे हैं या अपने मित्रों के ग्रुप में डालने जा रहे हैं या अपने ऑफिस के ग्रुप में डालने जा रहे हैं, 1 सेकंड लगेगा। इतने सारे टूल्स हैं, एआई के मेटा से लेकर के जेमिनी से लेकर के दुनिया भर के टूल्स हैं। आप उसमें डालिए और कहिए कि इसका फैक्ट चेक कर दिया।

0: विदिन 10 सेकंड में वो आपको फैक्ट चेक कर बता देगा कि कितने प्रतिशत ये खबर सही है
1: जी।
0: तो क्यों नहीं हम एआई के माध्यम से जो है फैक्ट को चेक करते हैं। हम फैक्ट चेक करेंगे तो निश्चित तौर पर हम गलत खबरों से दूर रहेंगे। कोई भी चीज सोशल मीडिया पे आई हो कहीं से भी, आप 2 मिनट उसको फैक्ट चेक में डाल दीजिए, आप उसको करिए, फैक्ट चेक कीजिए, सच्चाई का पता लगाइए। आजकल कोई वीडियो है, अगर वीडियो ने आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको गूगल लेंस पे डाल दीजिए तो आपको बता देगा कि कितने प्रतिशत ये घटना कहां हुई थी। व्हेन इन डाउट फाइंड इट आउट। तो सोशल मीडिया पे जो कुछ भी गलत चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं हमारी गलती है। हम गलत चीजों को आगे बढ़ने के लिए दे रहे हैं, तो हमें इस्तेमाल करना है एआई का, हमें टूल्स का इस्तेमाल करना है और फेक न्यूज का पता लगाना, फैक्ट चेक करना है।
1: ऋषि जी, ढेरों बातें हम करते रहेंगे और पत्रकारिता तो एक संसार है जिसके बारे में आप लगातार आप भी नई खोज करते रहते हैं और हम भी आपसे ढेर सारी ऐसी बातें जानना भी चाहेंगे। हमारे श्रोताओं को कोई और गीत सुनवाना चाहें आप?
0: फिल्म इस समय आई है धुरंधर, वो गीत मुझे बहुत पसंद है कि आंधी बनकर आया हूँ।

0: दोस्तों, एक बार पुनः आपका कार्यक्रम में स्वागत है। ढेरों विमर्श हैं और यूं कहें तो ही पत्रकारिता पर कई घंटों कई दिन बात की जा सकती है। अगर आज हम जब हम विकास के उस दौड़ में हैं, जब हम ये कह रहे हैं कि हम उस आसमान को छूलेंगे, हमारे श्रोताओं के लिए और विशेषकर उनके लिए कि जो खबरें, जैसे आपने कहा कि आप पत्रकार हैं, विगत कई दशकों से पत्रकारिता कर रहे हैं, दोनों को क्या संदेश देना चाहेंगे? दोनों को इस बदलते जो समय में है उसमें कैसे वो खबरें पढ़ें सुने, और दूसरा कैसे वो खबरें प्रेषित करें?
1: खबरों के प्रेषण का तो जो फार्मूला है
0: जी,
1: हमें 5W1H पे तो रहना ही है। व्हेन, व्हाई, हुम, विद हुम और हाउ, ये सारी चीजें हमारी होनी चाहिए। कहाँ हुई, कब हुई, कैसे हुई, ऑफिशियल वर्जन होने चाहिए उसके अंदर, और मानवीय दृष्टिकोण भी होना चाहिए। खबर में ये भी देखना है कि इस खबर का हमारे पाठक के लिए ज्यादा उपयोग है या किसी व्यक्ति का बहुत ज्यादा नुकसान।
0: जी जी,
1: ये सारी चीजें हमको खबर डालते समय देखनी पड़ेगी कि खबर का उपयोग क्या है
0: जी,
1: और खबर कितनी आम लोगों की जरूरत की है, और इसमें हमको संवेदनाएं, इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। खाली हमको सनसनी के लिए या खाली ब्रेकिंग न्यूज के लिए खबरें नहीं चलती।
0: तो श्रोताओं, आपने सुना ही कि फैक्ट चेक करते रहिए और एक श्रोता के तौर पर भी जागरूक रहिए। आपने ऋषि जी की जो जीवनी है, ऋषि जी की जो जीवन यात्रा है, जो उनका अनुभव है,

0: वो आपने सुना ही, अगले अंक में हम किसी और व्यक्ति के साथ, किसी ऐसे विशेष व्यक्ति के साथ उनके अनुभव, उनकी जानकारियां, उनका निचोड़ जानना चाहेंगे। ऋषि जी, आपने इतना बहुमूल्य समय हमें दिया और ढेरों ऐसी बातें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं और अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल शामिल हुए। बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास की थीम पर केंद्रित बैठक में मानव विकास, सुशासन और जनभागीदारी को विकास की धुरी बनाकर विकसित भारत के संकल्प को प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश प्रत्येक नागरिक के सशक्तिकरण को विकास का आधार निभा रहा है। स्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची का सिंह ने बताया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की तुलना में अंतिम सूची में करीब 29 लाख मतदाता बढ़ गए हैं। मतदाताओं की के मामले में बलिया प्रदेश में पहलों की बढ़ोतरी हुई है। आयोग ने पहली बार सभी मतदाताओं एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेन प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित हाथों में है। आज जहां पूरा विश्व संकट से जूझ रहा है, वहीं अपने देश में सब कुछ सामान्य है। पीलीभीत में आज सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आयोजित चौपाल में उन्होंने जनता की समस्याएं सुनी और उनके त्वरित निराकरण के आदेश अधिकारियों को दिए। श्री प्रसाद ने किसानों को कृषि यंत्र भी वितरित किए। उन्होंने घाट पर पौधारोपण और गोमती पुनरोद्वार कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। राज्य आपदा प्रबंधन के निर्देश पर आज प्रदेश के कई जिलों में मॉक ड्रिल की गई, जिसका उद्देश्य बाढ़ जैसी आपदा के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारियों को परखना और लोगों को जागरूक करना था। इसी क्रम में अयोध्या में सरयू नदी किनारे बाढ़ से बचाव के लिए सजीव मॉक ड्रिल आयोजित की गई। फतेहपुर में भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। वहीं मिर्जापुर और सोनभद्र में बाढ़ नियंत्रण व बचाव को लेकर बैठक की गई। प्रदेश के कई जनपदों में कल से आंधी और बारिश का सिलसिला जारी है। शामली और महाराजगंज में देर रात तेज हवा के साथ शुरू हुई हल्की बारिश से मौसम सुहावना हो गया। जौनपुर, सहारनपुर, अमरोहा और चंदौली में भी सुबह हुई बूंदाबांदी के बाद ठंडी हवाओं के चलने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में बारिश का अनुमान जताया है। साथ ही कुछ जनपदों में तेज हवाओं के साथ बिजली और ओले गिरने का अलर्ट जारी किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
2: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
4: समझे जनाब अली।
2: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

0: 100.7 FM रेनबो।
1: कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहाए सुलझे।
2: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
3: थायराइड इम्बैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

सोमारिया लिसनर 6:06 और 46 सेकंड हो चुके हैं 100.7 FM रेनबो पर। बिना देर किए शुरू हो गया है आपका अपना प्रोग्राम शामे अवध। जी हाँ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि शामे अवध में हमारे लिए क्या लेकर आते हैं, लेकिन बहुत सारी अपडेट्स एक बार फिर से होंगी मेरे पास। पूरा पुलिंदा है तैयार, लेकिन शेयर करूंगी वन बाय वन आपके साथ कि क्या कुछ गतिविधियां हो रही हैं आपके अपने शहर में और कैसे रहना होगा आपको अलर्ट और कहां पर टाइम पर होगा पहुंचना। ये सारी बातें होंगी शामिल आज के शामे अवध में। स्टे ट्यून 100.7 FM रेनबो विद आरजे अलका।

रूप में इस वक्त आ चुके हैं और वो है बिजली का संकट यानी कि बिजली की प्रॉब्लम। तो बिजली संबंधी जो भी समस्याएं हैं अगर आप उनका निस्तारण चाहते हैं तो उसका एक छोटा सा रास्ता मैं आपको बता देती हूं, शेयर करूंगी आपके साथ कि बिजली संबंधी समस्याओं के लिए जो उपभोक्ता है वो 1912 पर शिकायत कर सकते हैं। लखनऊ सेंट्रल के मुख्य अभियंता ने ये जानकारी दी है कि बिजली कटौती से संबंधित, नए कनेक्शन लोड बढ़ाने से संबंधित या घटाने की शिकायत का समय सीमा जो है उसके भीतर किया जा सकता है। तो अगर आपकी इससे संबंधित कोई भी समस्या है, कोई भी आपके सवाल है तो आप 1912 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये बिजली समस्या पर शिकायतों के निस्तारण के नंबर अलॉट किया गया है। तो अगर आज के टाइम आपके पास कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसे आप नो डाउन कराना चाहते हैं बिजली विभाग के पास, तो 1912 पर आप अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। फिलहाल अभी यह सिलसिला आगे चलता रहेगा गानों का भी और अपडेट्स का भी। सो स्टे ट्यून्ड 100.7 FM रेनबो विद आरजे अलका।

0: उठा माझा किंग, ओ माझे किंग.
1: मी
0: घरी नाही
2: जायचं. शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी.
3: थायराइड इम्बैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा.
4: सात रंग का इंद्रधनुष है,
5: सात सुरों की सरगम है,
6: सात जन्म है सात समंदर,
4: साथ हमारा हरदम है,
6: जिंदगी के सतरंगी रंग
5: FM रेनबो के संग.

सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अगले अपडेट की। और अगले अपडेट जो है वो है उन लोगों के लिए जिन्हें है घूमने फिरने का बेहद शौक। तो गवर्नमेंट की तरफ से उनके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको बता दें कि शक्तिपीठों के दर्शन के लिए 7 दिन का टूर पैकेज लेकर आया है IRCTC। तो IRCTC जो है वो शक्तिपीठों के दर्शन के लिए 24 से 30 जून के लिए पैकेज टूर ला रहा है। और इसमें ट्रेन से यात्रा के साथ साथ ठहरना, नाश्ता, रात्रि का भोजन सहित बहुत सारे प्रमुख दर्शनीय जो स्थल है उनका भ्रमण भी शामिल है। और इसके संग संग अनुभवी टूर स्कॉट भी इसमें आपको मिलेगा। स्थानीय परिवहन की सुविधा भी आपको इसमें शामिल मिलेगी। तो फिलहाल ये एक छोटी सी जानकारी थी, लेकिन अगर इससे संबंधित और भी विस्तृत जानकारी आपको चाहिए तो आप IRCTC की वेबसाइट पर जाकर इसका जो पर पर्सन खर्च आएगा वो भी आप देख सकते हैं। आपको विस्तृत रूप से क्या क्या सेवाएं मिलेंगी, उनका लेवल क्या होगा, वो भी सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं। तो अगर आप शक्तिपीठों के दर्शन के लिए उत्साहित हैं तो बिल्कुल IRCTC के इस पैकेज का लाभ उठाइए और इसकी वेबसाइट पर जाकर विस्तृत जानकारी भी आप ले सकते हैं।

0: वही रूप की धूप, वही रंगो रोशनी,
1: वही दोस्ती की खुशबू, मोहब्बत की मोहनी,
0: वही ठुमरी कथक और तिहाई की चोट,
1: सितारों भरे आंचल, कटारी की गोट,
0: चिकन के करिश्मे सजाए बदन,
1: जरीदार जलवे जवां अंजुमन,
0: अपने दिले नाशाद को आबाद करें हम,
1: आओ कि लखनऊ को जरा याद करें हम।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।
3: स्टे ट्यून्ड टू 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: कभी अलसाई दोपहर की रुसवाई, तो कभी ढलती हुई शाम की अंगड़ाई,
5: शाम होने को है।
4: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें, तन्हाई का एहसास।

0: गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे।
1: सलोना सजन है और मैं हूँ
0: महफिल गजल आबशार। सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM रेनबो पर।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: छह बजकर 31 मिनट 5 सेकंड हो चुके हैं दोस्तों। 100.7 FM रेनबो पर आप इंजॉय कर रहे हैं आज का शामी अवधार जेल का के साथ।

और दोस्तों अब वक्त हो गया है अगले अपडेट का, तो आपको बता दें कि AKTU ने M.Tech, M.Com, M.O.K. और M.U.R.P. पाठ्यक्रमों की जो सत्र 2025-26 की मौखिक परीक्षा है उसका कार्यक्रम जारी कर दिया है। तो इन पाठ्यक्रमों की मौखिक परीक्षा 12 से 17 जून तक होगी। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है, तो अधिक जानकारी आप वेबसाइट पर से ले सकते हैं। विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है उस पर जाकर आप इसकी

अगली अपडेट का तो आपको बता दे कि AKTU ने MTech, MCom, MOK और MURP पाठ्यक्रमों की जो सत्र 2025-26 की मौखिक परीक्षा है उसका कार्यक्रम जारी कर दिया है। तो इन पाठ्यक्रमों की मौखिक परीक्षा 12 से 17 जून तक होगी। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है, तो अधिक जानकारी आप वेबसाइट पर से ले सकते हैं। विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है उस पर जाकर आप इसकी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल जो बेसिक जानकारी है वो मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की कि ये मौखिक परीक्षा 12 से 17 जून तक होगी। फिलहाल 6:35 हो चुके हैं। 100.7 FM रेनबो पर आप इंजॉय कर रहे हैं आज का शाम अवध अलका के साथ।

तो फ्रेंड्स अब वक्त हो गया अगली अपडेट का, तो चलिए आपको बताते चलते हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने केंद्रीय प्रवेश प्रणाली के अंतर्गत सहभागिता शुल्क जमा करने की जो तिथि है वो 20 जून तक बढ़ा दी है। पहले ये डेट कुछ और थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर 20 जून कर दिया गया है। तो संयुक्त महाविद्यालय में संचालित सेल्फ फाइनेंस कोर्स केंद्रीय प्रवेश प्रणाली के तहत प्रवेश जो लोग लेना चाहते हैं वे कॉलेज पाठ्यक्रम और विवरण सहभागिता शुल्क जमा कर सकते हैं। इसी शुल्क को जमा करने की जो डेट है वो 20 जून कर दी गई है। तो फिलहाल अभी अपडेट्स बहुत सारी आपके साथ शेयर करती रहूंगी। वक्त हो गया 6:49:44 और

0: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
2: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
3: समझे जनाब अली।
2: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
4: घर से लेकर ऑफिस तक, बच्चों से लेकर बॉस तक, फैमिली से लेकर फैंटेसी तक, फैशन से लेकर फन तक, अगर आपको चाहिए इन चीजों की लेटेस्ट अपडेट, सो डोंट बी लेट।
5: सुनिए नारी शक्ति को समर्पित कार्यक्रम शत्रुपा, सोमवार से गुरुवार दिन में 12 से 1, 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।
0: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।
6: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
7: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
6: चरक हॉस्पिटल, एट हरदोई रोड।

0: लगा।
1: मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं एक व्यवसायी हूँ और मेरी दुकान में चलता है सिर्फ एक ही चैनल FM रेनबो।
2: आई एम संध्या त्रिगुनी। बच्चे तो दीवाने हैं मेरी टीचिंग के, मगर मैं दीवानी हूँ रेनबो FM की।
3: मेरा नाम आदित्य है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। पढ़ते वक्त हरदम मेरे साथ FM रेनबो निभाता है, मुझे एंटरटेन करता है, ताज़ा जानकारियाँ भी देता है। That's why I love FM रेनबो।
4: ये तो सुन रहे हैं FM रेनबो और आप

सो फ्रेंड, चलिए बताते हैं आपको अगली अपडेट क्या है। वो भी एजुकेशनल है, क्योंकि इग्नू ने पीएचडी में प्रवेश के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं। तो अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं फ्रीलांसिंग में, तो आप जो अभ्यर्थी हैं वो 36 विषयों में से किसी में भी प्रवेश के लिए इग्नू की वेबसाइट पर जाकर 1 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। इसकी जो अंतिम तिथि है वो 1 जुलाई निर्धारित की गई है, और अभी वरिष्ठ निदेशक के द्वारा ये जानकारी प्राप्त हुई है और बताया गया है कि पीएचडी को यूजीसी नियमावली के अनुरूप ही तैयार किया गया है। तो अभ्यर्थी का 55% अंकों के साथ परास्नातक पास होना बहुत जरूरी है।

और अगर आप 55% अंकों के साथ आपने परास्नातक श्रेणी में उत्तीर्ण किया है तो फिर आप इग्नू में इस पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 36 विषय कुल इसमें रखे गए हैं जिनमें से किसी भी विषय के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और वेबसाइट पर जाकर आप इसकी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट जो है वो 1 जुलाई इसकी रखी गई है।

0: गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे।
1: सलोना सजन है और मैं हूँ
0: महफिल गजल आबशार। सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: सो फ्रेंड्स, 6:56 हो चुके हैं और वक्त हो गया इस ट्रैक के साथ आज के प्रोग्राम श्यामे वत को वाइंड अप करने का। लेकर आ रही हूँ कुछ ही देर में आपका फेवरेट प्रोग्राम। जी हाँ, बिल्कुल ठीक पहचान रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ हेलो FM की। तो मिलाइए नंबर 2238852 या 2238845 और सुनिए अपनी पसंद के ट्रैक्स को अगली कुछ ही देर में अपने प्रोग्राम हेलो FM में। स्टे ट्यून्ड 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं और अब सुनिए प्रदेश की टॉप 10 न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल हुए बैठक में शामिल। प्रधानमंत्री ने केंद्र और राज्य सरकारों से की सामूहिक प्रयास की अपील। कहा, देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर है अग्रसर। राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों के आदान प्रदान को बताया जरूरी। नीति आयोग की बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, नागरिकों के सशक्तिकरण को विकास का आधार बनाकर विकसित भारत के निर्माण में यूपी निभा रहा है सक्रिय भूमिका। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जारी की अंतिम मतदाता सूची। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की तुलना में बढ़े करीब 29 लाख मतदाता। केंद्रीय वाणिज्य, उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने पीलीभीत में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आयोजित चौपाल में सुनी जनता की समस्याएं, दिए त्वरित निराकरण के आदेश। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुरक्षित हाथों में देश। अमरोहा में आज से 12 दिवसीय राष्ट्रीय साइबर सिक्योरिटी इंटर्नशिप प्रोग्राम का हुआ शुभारंभ। देश के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 850 अभ्यर्थी ले रहे हिस्सा। शाहजहांपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन को लेकर जिला प्रशासन और आयुष विभाग ने तैयारियां की तेज। विशेष कार्यक्रम आयोजित कर खेल प्रशिक्षकों को दिया गया कॉमन योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण। अयोध्या में आयोजित होमगार्ड सम्मेलन में अयोध्या, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर और अंबेडकर नगर के होमगार्ड अधिकारी और जवान हुए शामिल। डीजी होमगार्ड डीके ठाकुर ने बताया, सम्मेलन के दौरान विभाग की समस्याओं, आवश्यकताओं और कार्य प्रदर्शन पर की गई विस्तार से चर्चा। प्रदेश सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने राज्य निधि मद से दिव्यांगजनों और इस क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए मांगे आवेदन। योजना से जुड़ी जानकारी और विवरण विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध। प्रदेश के कई जनपदों में आंधी और बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने कल भी राज्य के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में जताया बारिश का अनुमान। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 7:20 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

सो माय डियर लिसनर्स, इस खूबसूरत गाने के साथ आगाज हो गया है आपके प्रोग्राम हेलो एफएम का। वैसे तो आपको सभी प्रोग्राम पसंद है, लेकिन ये होता है आपका अपना, इसलिए खास क्योंकि करते हैं आप इसमें हमसे बात और सुनते हैं अपनी पसंद के सॉन्ग्स को। तो मिलाइए 2238 या 2238 और इन नंबर्स को डायल करके अपनी पसंद के ट्रैक्स को करिए एंजॉय 100.7 FM रेनबो पर आरजे अलका के साथ।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाए अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: स्टे ट्यून्ड टू 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

समाज या लिसनर्स, वक्त हो गया है अगले प्रोग्राम में, मतलब किस प्रोग्राम में अपने पहले कॉलर को लेने का। तो चलिए अपने पहले कॉलर से करते हैं बात। कौन है वो और क्या नाम है उनका, उनकी पसंद क्या है। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही है। हेलो हेलो, इनका इनकी आवाज तो आई बट बहुत ज्यादा आवाज स्लो होने की वजह से इनकी बात हम तक नहीं पहुंच पाई है। चलिए खूबसूरत से गाने को एंजॉय करते हैं और वापस आते हैं, अपने अगले कॉलर के साथ जुड़ते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि उनसे जरूर हमारी बात हो पाए।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: स्टे ट्यून्ड टू 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: तो फ्रेंड्स, वक्त हो गया अगले कॉलर को लाइन पर लेने का, चलिए करते हैं उनसे बात। हेलो हेलो।
3: हाँ नमस्ते मैम।
2: नमस्ते जी, वेलकम है आपका। नाम बताएं, कौन बोल रहे हैं?
3: संतोष कुमार चौरसिया मैम।
2: संतोष जी
3: हरियाणा से।
2: हरियाणा से बोल रहे हैं, ओके। संतोष जी कैसे हैं आप?
3: बलिया का हूँ मैम।
2: ओके, कैसे हैं आप?
3: बहुत बढ़िया मैम, आपने बताइए।
2: मैं भी एकदम ठीक हूँ, मैं भी एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो बताएं संतोष जी, क्या पसंद है आज आपकी, क्या सुनना चाहेंगे?
3: सर मैम, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ वो साथी मरते दम तक।
2: ओके, मरते दम तक मूवी का। हाँ, बहुत ही प्यारा ट्रैक। तो किसको सुनवाना चाहते हैं, डेडिकेशन किसका है?
3: मेरी वाइफ पूजा भारद्वाज।
2: वाइफ को, वेरी नाइस।
3: सुनने वालों को,
2: सभी सुनने वालों को। ओके, और कुछ कहना चाहेंगे संतोष जी?
3: नहीं मैम, ठीक है।
2: थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए।
3: ठीक है, धन्यवाद मैम।
2: धन्यवाद।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों से विकसित भारत के लिए सामूहिक प्रयास का किया आह्वान। मुख्यमंत्री ने कहा, नागरिक सशक्तिकरण को आधार बनाकर विकसित भारत के निर्माण में उत्तर प्रदेश निभा रहा है सक्रिय भूमिका। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जारी की अंतिम मतदाता सूची। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की तुलना में बढ़े करीब 29 लाख मतदाता। और प्रदेश के कई जनपदों में आंधी और बारिश ने गर्मी से दी राहत। मौसम विभाग ने कल राज्य के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में बारिश का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल शामिल हुए। एक रिपोर्ट।
1: बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए और इसमें नीति आयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने और रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास की थीम पर केंद्रित बैठक में मानव विकास, सुशासन और जन भागीदारी को विकास की धुरी बनाकर विकसित भारत के संकल्प को नई गति देने पर सार्थक विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश भी प्रत्येक नागरिक के सशक्तिकरण को विकास का आधार बनाकर विकसित भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। समाचार कक्ष से तन्वीर फातिमा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने पर कल नई दिल्ली में आयोजित एनडीए के सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है।
2: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने पीलीभीत में आयोजित चौपाल में जनता की समस्याएं सुनी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है।

0: इतिहास में इतना लंबा समय किसी भी प्रधानमंत्री का नहीं था। ऐसा नेतृत्व बहुत कम समय में देखने को मिलता है। ये हम लोगों का सौभाग्य है। कहीं सड़कें, कहीं जल, कहीं डिजिटल इंडिया, कहीं हाईवे बन रहे हैं, कहीं सेतु बन रहे हैं। आस्था का सवाल हो तो अयोध्या का राम मंदिर का निर्माण, तमाम ऐसे कार्य हैं। ये नींव रखी गई है विकसित भारत की।
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा करेंगे।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। देश भर में अब तक लगभग 10 करोड़ 82 लाख लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जिसके तहत अब तक 10 करोड़ 55 लाख से अधिक महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन दिए गए। PM स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया। राज्य निर्वाचन आयुक्त राज प्रताप सिंह ने बताया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की तुलना में अंतिम सूची में करीब 29 लाख मतदाता बढ़ गए हैं, यानी अब कुल मतदाताओं की संख्या बढ़कर 12 करोड़ 58 लाख हो गई है। मतदाता वृद्धि के मामले में बलिया प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। यहां 1,60,376 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है। आयोग ने पहली बार सभी मतदाताओं के लिए स्टेट वोटर नंबर जारी किया है। केंद्र सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। लखनऊ स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिला लेने की प्रक्रिया जारी है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राज कुमार मित्तल ने बताया कि छात्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिला ले सकते हैं।
3: बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो मुख्य कैंपस है और जो अमेठी सैटेलाइट कैंपस है उसमें PG एडमिशन की प्रक्रिया अभी जारी है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अभी चला हुआ है। CUT के माध्यम से कोई भी उसमें रजिस्ट्रेशन करा सकता है। हमारा हेल्पलाइन भी नंबर दिया हुआ है और ये सारा ऑनलाइन प्रोसेस है। इसके साथ साथ यदि जो बच्चे दूर दराज में या किसी कारणों से नहीं भर पाते और सीटें जो बच जाती हैं उनके लिए non-CUT का भी प्रावधान किया हुआ है।
1: अयोध्या में आज होमगार्ड सम्मेलन में अयोध्या मंडल के 5 जिलों के होमगार्ड अधिकारी और जवान शामिल हुए। इस मौके पर DG होमगार्ड DK ठाकुर ने बताया कि जो भी समस्याएं शासन स्तर पर लंबित हैं उनके समाधान के लिए प्रयास किए जाएंगे।
4: जो हमारे अधिकारी थे जिनके हमने सम्मेलन किया उन्होंने 2 बातें मांग रखी थी। एक था कि उनको रिटायरमेंट के बाद कोई EPF टाइप का सुझाव दिया जाए, EPF टाइप की व्यवस्था हो, उसका प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित है। और उनकी दूसरी बात थी कि उनके आयुष्मान योजना में उनको शामिल किया जाए, उनका प्रस्ताव भी शासन स्तर पर लंबित है। इन दोनों प्रस्तावों पर हम लोग आगे काम करेंगे और शासन स्तर से मिलकर माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर इसको सभी संपन्न कराएंगे।
1: प्रदेश के कई जनपदों में कल से आधी

0: और बारिश का सिलसिला जारी है। शामली और महाराजगंज में देर रात तेज हवा के साथ शुरू हुई हल्की बारिश से मौसम सुहावना हो गया। जौनपुर, सहारनपुर, अमरोहा और चंदौली में भी सुबह हुई बूंदाबांदी के बाद ठंडी हवाओं के चलने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में बारिश का अनुमान जताया है। साथ ही पश्चिमी जनपदों में तेज हवाओं के साथ बिजली और ओले गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों से विकसित भारत के लिए सामूहिक प्रयास का किया आह्वान। मुख्यमंत्री ने कहा, नागरिक सशक्तिकरण को आधार बनाकर विकसित भारत के निर्माण में उत्तर प्रदेश निभा रहा है सक्रिय भूमिका। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जारी की अंतिम मतदाता सूची। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की तुलना में बढ़े करीब 29 लाख मतदाता। और प्रदेश के कई जनपदों में आंधी और बारिश ने गर्मी से दी राहत। मौसम विभाग ने कल राज्य के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में बारिश का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: और आइए अब सुनते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लेटेस्ट अपडेट्स।
2: When the storms cleared, England recorded a dominant 3-0 win. Declan Rice scored the opener.
3: From the first minute, a high press was brilliant. The way we regained the ball was brilliant. It could have been 2-3-0 before half time, but 1-0 was obviously good. And then second half, real positive. All the lads that have come on and made a massive impact again suffocated the life out of them. And, you know, again, we could have scored a few more. So whole squad impact is what we wanted and what we had tonight. So really, really good night's work.
2: The World Cup begins with co-host Mexico taking on South Africa at the iconic Azteca Stadium. 80,000 fans are expected. Meanwhile, FIFA President Gianni Infantino says it's unfortunate that Africa's top referee was refused entry to the United States. Somalian official Omar Artin was sent home by US border agents despite having a visa and a diplomatic passport. Infantino had this to say at a rare press conference.
4: Of course it is unfortunate as well what happened to the referee from Somalia. But again, we don't control everything. We try, we will discuss, we will speak, we will see. Maybe sometimes it's good as well to just, you know, chill, relax.
2: And Germany's players will pay for 600 of the country's fans to travel by bus to their final World Cup group game against Ecuador following criticism of high transport costs. Train tickets, normally priced at $12.90 from central New York to the nearby MetLife Stadium in New Jersey, were ramped up to $150 before being reduced to $98. And for more World Cup news from the BBC, go to bbc.com/football.
5: World Football Update from the BBC.
6: For those just tuning in, this is 102.6 Akashwani Rainbows, Hits and Memories.

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: सो फ्रेंड्स, इंतजार हुआ खत्म। 7:34 और 28 सेकंड हो चुके हैं, माफ कीजिएगा। और मैं भी थोड़ा सा जल्दी में हूँ क्योंकि एक कॉलर है जो काफी देर से वेट कर रहे हैं बात करने के लिए। तो चलिए इंतजार जो है वो खत्म करते हैं और जानते हैं उनकी पसंद क्या है और कहाँ से उन्होंने हमें कॉल किया है। हेलो,
4: हेलो, वेरी गुड इवनिंग।
3: गुड इवनिंग, आप कहाँ से बोल रहे हैं और सबसे पहले बताएं अपना नाम क्या है।
4: जी, मैं यासिर हमीद।

0: अंसारी बात कर रहा हूँ उम्मीदों का शहर मियांगंज जिला उन्नाव से।
1: उन्नाव से यासिर, तो कैसे हैं यासिर आप?
0: जी मैं तो बहुत अच्छा आया हूँ, आप भी बहुत अच्छी होंगी।
1: यस, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और बताइए आज क्या सुनना चाहेंगे, क्या पसंद है आपकी?
0: जी मैम, जैसे मैम आपने कहा था कि वेट करना पड़ेगा, तो मैं तो 3.5 महीने से वेट कर रहा हूँ, क्योंकि लिसनर मौका ही नहीं देते।
1: 3.5 महीने से आपकी कॉल नहीं लगी?
0: बिल्कुल, और कॉल बिल जाती भी है तो कॉल नहीं उठता, सबसे प्रॉब्लम।
1: ये तो इत्तेफाक की बात है, क्योंकि कॉल तो बराबर लोगों से बात हो रही है, प्रोग्राम एज इट इज चल रहा है, ये इत्तेफाक है कि आपकी कॉल नहीं पिक हुई।
0: जी।
1: चलिए कोई नहीं,
0: तो
1: आज
0: वेट करना पड़ता है। लेकिन लिसनर से मैं यही कहना चाहूंगा, मैं भी एक लिसनर हूँ, हाथ तो नहीं जोड़ सकते क्योंकि दिखेगा नहीं। और बस यही कह सकते हैं कि प्लीज सभी को मौका दीजिए, जैसे आपका कॉल लगा दूसरे को भी मौका दे, है ना?
1: ऐसा होता है एक्चुअली, कई लोग कंटिन्यू डायल करते रहते हैं जिसकी वजह से लाइन बिजी होती है और फिर दूसरों को मौका।
0: और फिर ये भी कहते हैं ना, अरे आप आए तो बहुत अच्छा लगा, अरे आरजी हैं तो बिल्कुल आएंगे तो ही ना।
1: नहीं वैसे
0: आपकी आवाज अच्छी है, ये भी बोलते हैं आपकी आवाज अच्छी आरजी।

0: रहते हैं जिसकी वजह से लाइन बिजी होती है और फिर दूसरों को मौका नहीं।
1: और फिर ये भी कहते हैं ना, अरे आप आए तो बहुत अच्छा लगा, अरे आरजे हैं तो बिल्कुल आएंगे तो ही ना।
0: नहीं वैसे
1: आपकी आवाज अच्छी है, ये भी बोलते हैं आपकी आवाज अच्छी है, आरजे है तभी तो आवाज अच्छी है, ये इसलिए तो ले जाते हैं ना।
0: फैक्ट बात करी आपने। तो वैसे आपका जो इंतजार था उसके आगे मुझे लगता है 2 से 4 मिनट का जो वेट है वो बहुत छोटा था, 3.5 महीने से आप इंतजार कर रहे हैं।
1: जी,
0: तो भाई
1: अब
0: इंतजार खत्म हो गया, अब जल्दी से अपनी पसंद बता दीजिए।
1: जी मुझे मूवी का नाम है बोल बच्चन, मोहित चौहान की वॉइस है, गाने के बोल है, जब से देखी है झलक तुम्हारी या अल्लाह जान ले लेगा तेरा इस।
0: गुड, किसको सुनवाना चाहते हैं?
1: जी मोहम्मद फैज रामपुर कटरा और नीलू शर्मा दीदी हैं सफीपुर उन्नाव से, और रोशनी दीदी हैं और अमीन भाई हैं गंगागंज लखनऊ से। ओके बाय।
0: ओके बाय बाय।

0: सो फ्रेंड्स, वक्त हो गया नेक्स्ट कॉलर को लाइन पर लेने का, करते हैं उनसे बात। हेलो
1: हेलो, गुड इवनिंग मैम।
0: गुड इवनिंग, नाम बताएं, कौन बोल रहे हैं?
1: ये गुलफ्सा सिद्दीकी बोल रहे हैं,
0: खंडीला से। ओके गुलफ्सा, कैसी हैं आप?
1: जी हम तो बहुत अच्छे हैं, आप बताइए।
0: काफी दिनों बाद आपसे बात हो रही है।
1: जी मैम, आप आई भी बहुत दिनों के बाद हैं।
0: हाँ जी, तो बताइए आज क्या सुनना चाहेंगी?
1: जी बीबी नंबर वन का।
0: बीबी नंबर वन का कौन सा सॉन्ग?
1: जी है जवानी तो इश्क होना है।
0: है जवानी तो इश्क होना है। ओके तो किसको सुनवाना चाहती हैं ट्रैक?
1: सबसे पहले आपको।
0: थैंक यू।
1: रोशनी रावत है, अमिता राव है, नीलू शर्मा है, और समा परवीन है, साहिबा अंसारी है, साजिया अंसारी है, गीता अंसारी है, महक अंसारी, ममता गौतम है, जितने लोग सुन रहे हैं सभी को।
0: ओके तो चलिए आपकी पसंद के इस ट्रैक को प्ले करते हैं, और सभी के लिए जिन्हें आपने इस सॉन्ग को डेडिकेट किया। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए।
1: थैंक यू।
2: टाइमिंग यू?
3: नो।

0: single.
1: Fully single.
0: I'm gonna go get another drink.
2: लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, अब कैसे संभालूं मैं।

0: listening to your thoko. Randhawa has got thoko.
1: I will not give you that moko. अभी तो कुछ दिनों में मेहंदी संगीत एंड रोको।

0: यार ये बानी और प्रीत का आमना सामना ना हो जाए यार।
1: अरे लंदन है लंदन यार। हाँ। दादर स्टेशन थोड़ी है कि बानी और प्रीत एक दूसरे।
2: तुम यहाँ क्या? वेल फ्रेंड्स, वक्त हो गया है नेक्स्ट कॉलर से बात करने का। 7:42 हो चुके हैं दोस्तों, और 53 मिनट भी, तो अब वक्त हो गया है हमारे अगले कॉलर को लाइन पर लेने का और करने का उनसे बात। तो चलिए आइए जानते हैं कौन है हमारे साथ इस वक्त और क्या है उनकी खास पसंद। हेलो।
3: हेलो, नमस्ते।
2: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं?
3: लवकुश जयपुर कस्तान फिर बाराबंकी से बोल रहे हैं।
2: ओके लवकुश, आज क्या सुनना चाहेंगे आप?
3: नाम मूवी का सुना दीजिए, टाइटल सॉन्ग।
2: ओके तो बताइए किसको सुनवाना चाहते हैं ये गाना?
3: गाना सभी सुनने वालों के लिए, आज के लिए।
2: सभी सुनने वालों के लिए और मेरे लिए। ओके कोई खा जी जी ओके, और कुछ कहना चाहेंगे लवकुश?
3: कुछ नहीं, बस मौसम अच्छा हो गया, सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं।
2: अच्छा मौसम अच्छा हो गया है?
3: मौसम बहुत अच्छा हो गया है इस वक्त।
2: गुड, तो चलिए हमें भी अच्छे मौसम का इंतजार रहेगा, कब हमारे यहाँ भी बारिश की बूंदें गिरे और मौसम सुहावना हो जाए। फिलहाल इस गाने को। हाँ जी,
3: बारिश हुई थी, ठीक है, लखनऊ बारिश हुई थी,
2: कुछ एरियाज में हुई है, कुछ में नहीं भी हुई है। हवा बड़ी प्यारी थी कल रात में, मैंने भी उस हवा को एंजॉय किया।
3: कल रात में 9:30 बजे लखनऊ में ही थे, तो वहाँ से बारिश
2: हुई। हाँ कुछ एरिया में हुई है। ओके तो चलिए आपकी पसंद के ट्रैक को ये लीजिए, ये रहा, और आप सभी सुनने वालों के साथ से एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए।

0: ये डबल चिन होने लगे तुम्हारे।
1: एक तो हम बड़ा परेशान है, बोलता कहाँ है, नहीं है यार।
0: चलो कर लो फिर, कर लो।
1: तुम बोलो बोलो उससे, तुमसे बोलने से कोई फर्क नहीं है।
2: वेल फ्रेंड्स, 7:48 तो हो ही चुके हैं प्रोग्राम को, धीरे धीरे अब वाइंड अप करने का टाइम भी हो रहा है, लेकिन अभी हमारे साथ जो कॉलर जुड़े हैं उन्हें ले लेते हैं लाइन पर और जानते हैं उनकी पसंद। हेलो,
3: गुड इवनिंग मैम।
2: गुड इवनिंग जी, कौन बोल रहे हैं?
3: मैम रजनीश चौरसिया, उम्मीद के शहर उन्नाव से, हमारे गाँव का नाम है काथा, तहसील परवा, जनपद उन्नाव से बात कर रहे हैं।
2: ओके, अभी उन्नाव से एक कॉल और भी आई थी हमारे पास, रजनीश नाम बताया आपने ना?
3: जी मैम।
2: ओके, तो रजनीश बताएं आज क्या सुनना चाहेंगे।
3: मैम फिल्म है विश्वात्मा, गाने के बोले सात समुद्र पार, और जितने लोग जितने श्रोता सुने सभी के लिए।
2: थैंक यू सो मच, और बताइए कुछ कहना चाहेंगे।
3: जी मैम, अपना ये रेमबो, हम भी बहुत पुराने लिस्नर है मैम, जब से दोपहर धमाल आ रहा था ना, 1 बजे आता था, तब से हम ये कार्यक्रम सुनते आ रहे हैं।
2: ओके, तो चलिए रजनीश आपके लिए ब्यूटीफुल ट्रैक रहा, और सभी सुनने वालों को आपने डेडिकेट किया है, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: वेल फ्रेंड्स, वक्त हो गया है प्रोग्राम को वाइंड अप करने का और अपने लास्ट कॉलर से बात करने का और उनको उनकी पसंद के ट्रैक को सुनवाने का. तो चलिए करते हैं उनसे बात. कौन है इस वक्त लाइन पर हमारे साथ? हेलो.
1: हेलो.
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: मोहम्मद राशिद.
0: राशिद जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका. थोड़ा सा अपने रेडियो सेट से दूर हो जाइए, आवाज बहुत इको कर रही है.
1: जी बिल्कुल.
0: हाँ जी, बताए राशिद, कहाँ से कॉल किया आपने हमें?
1: जिला कौशाम्बी, तहसील सिरातू, पोस्टेलपुर जीता, गाँव दौलतपुर कसार.
0: ओके, तो राशिद बताए कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: धड़कन मूवी का.
0: कौन सा?
1: दिल्ली ये कहा है दिल से.
0: ओके, तो बताइए किसको सुनवाना चाहते हैं ये सॉन्ग?
1: ये हमारा भांजा अबू सहमा और भतीजी जोहा फातिमा और हुरैन और पिंकी रिंकी साजिया अंसारी साहिबा अंसारी समा परमीन सीतापुर से और मोहम्मद फैज भाई, सद्दाम भाई और जावेद अख्तर भाई और कानपुर से साबिर भाई, तेलंगाना से मोहम्मद आसिफ.
0: बहुत दूर दूर के लोगों को आपने अपनी लिस्ट में शामिल किया है. वेरी गुड.
1: बिल्कुल मैम,
0: बहुत बढ़िया. और कुछ कहना चाहेंगे?
1: यही मैम कहना चाहेंगे, आप लोग प्रोग्राम बहुत अच्छा करती हो, लेकिन कॉल उठा लिया, बहुत अच्छा किया. जल्दी कॉल उठती नहीं है मैम, मतलब बेल जाती, फोन उठा नहीं करता.
0: हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है, उठ जाता है, बात भी होती है. देखिए, सभी की शिकायत रहती है लेकिन बात हो ही जाती है जब आपका लक साथ दे जाए.
1: हमारा कितने बार खुद भी लगा, बेल गई मगर उठा नहीं.
0: हाँ, वो इत्तफाक की बात है. ओके,
1: आप जो भी हो,
0: चलिए कोई बात नहीं,
1: सुनने की दिक्कत नहीं रहते मैम. हाँ, गाना सुना या सुना, लेकिन बात हो जाती, मतलब
0: ये बड़ी बात है. बिल्कुल बिल्कुल, सच बात है.
1: कोई भी सुनता है गाना तो सुनने के लिए मिल जाता.

0: है और नहीं भी सुनता आप लोग तो ऐसे गाना चलाते हैं।
1: बिल्कुल, बात करने के लिए ज्यादा ललायत रहते हैं।
0: बिल्कुल, रेडियो में बात आ जाती बहुत खुशी होती है।
1: तो चलिए भाई, आज आपकी बात हो गई और आपकी पसंद का ट्रैक ये रहा। थैंक यू सो मच। हाँ जी,
0: अलका मैम बोल रहे हैं।
1: हाँ जी, अलका जी बोल रहे हैं।
0: पहला कॉल हमारा आपने पहले मतलब उठाया था 2025 में।
1: ओह माय गॉड,
0: आपने रिसीव किया था,
1: आपको याद है इतनी पुरानी बात।
0: हाँ बिल्कुल।
1: चलिए, थैंक यू सो मच राशिद कॉल करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सो फ्रेंड्स, इस ट्रैक को करिए एंजॉय। मैं जा रही हूँ फिलहाल, वापस आपसे मुलाकात होगी इसी प्लेटफॉर्म पर। स्टे ट्यून्ड 100.7 FM रेनबो, ज्योति रहेंगी अगले कुछ घंटे।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल शामिल हुए। बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास थीम पर केंद्रित बैठक में सुशासन और जनभागीदारी को विकास की धुरी बनाकर विकसित भारत के संकल्प को गति देने पर सार्थक विमर्श हुआ। सर्वोच्च न्यायालय ने आज गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यायालय ने समाज में लड़कों को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति और लिंग चयनात्मक उपायों के प्रचलन पर चिंता व्यक्त की। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जननी सुरक्षा योजना और लाडली लक्ष्मी योजना जैसे सरकारी कार्यक्रम व्यवस्थागत भेदभाव को समाप्त करने के निरंतर प्रयासों को दर्शाते हैं। भारत ने ओमान तट पर टैंकर पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है, जिसमें 3 भारतीय नागरिकों की जान चली गई। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज किया है। श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजप्रताप सिंह ने बताया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की तुलना में अंतिम सूची में करीब 29 लाख मतदाता बढ़ गए हैं, यानी अब कुल मतदाताओं की संख्या बढ़कर 12 करोड़ 58 लाख हो गई है। मतदाता वृद्धि के मामले में बलिया प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने पीलीभीत में आयोजित चौपाल में जनता की समस्याएं सुनी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। प्रदेश के कई जनपदों में कल से आंधी और बारिश का सिलसिला जारी है। शामली और महराजगंज में देर रात तेज हवा के साथ शुरू हुई हल्की बारिश से मौसम सुहावना हो गया। जौनपुर, सहारनपुर, अमरोहा और चंदौली में भी सुबह हुई बूंदाबांदी के बाद ठंडी हवाओं के चलने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में बारिश का अनुमान जताया है। साथ ही पश्चिमी जनपदों में तेज हवाओं के साथ बिजली और ओले गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकेंगे 10 बजे। जुड़े रहिए FM रेनबो से।

0: मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं एक व्यवसायी हूँ और मेरी दुकान में चलता है सिर्फ एक ही चैनल एफएम रेनबो।
1: आई एम संध्या त्रिगुनी। बच्चे तो दीवाने हैं मेरी टीचिंग के, मगर मैं दीवानी हूँ रेनबो एफएम की।
2: मेरा नाम आदित्य है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। पढ़ते वक्त हरदम मेरे साथ एफएम रेनबो निभाता है, मुझे एंटरटेन करता है, ताजा जानकारियाँ भी देता है। दैट्स व्हाई आई लव एफएम रेनबो।
3: ये तो सुन रहे हैं एफएम रेनबो और आप

0: सुबह की खूबसूरत शुरुआत। सुकून से भरा दोपहर,
1: पुरानी जींस और गिटार,
0: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर।

0: हवा।
1: यानी आपके हर वक्त का हम सफर, तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज़। FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
3: तुम्हारे शहर का मौसम, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे। मैं शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे। आदाब, नमस्कार। शाम के 8:07 और ठीक 4 सेकंड्स, और ये वो वक्त है जबकि पूरे दिन की भाग दौड़, जिम्मेदारियों और मसरूफियत के बाद आप सुकून से होंगे अपने आशियाने में, आपके अपनों के साथ। उम्मीद है हमारी कि कुछ सुकून के पल आप जी रहे होंगे इस वक्त, और ऐसे में दोस्ती का तोहफा बनकर हम आपके लिए सजा कर लाए हैं कुछ बेहद खूबसूरत गजलें। जी हाँ, वक्त हो चला है आबशार का, क्योंकि कुछ शामें सिर्फ गुजरती नहीं, दिल में उतर जाती हैं। और आज की ये शाम कुछ ऐसी ही शाम होने वाली है।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: भले ही हम कितना भी कहते रहें कि किसी के होने से ना होने से हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच्चाई क्या है ये तो सिर्फ दिल ही जानता है। तुम ना आए तो क्या सहर ना हुई, तुम ना आए तो क्या सहर ना हुई, हाँ मगर चैन से बसर ना हुई। कहते हैं ना कि गिले शिकवे अपनी जगह हैं, लेकिन मोहब्बत वो अपनी जगह। तभी तो लगता है कि भले ही आकर मोहब्बत मत जताना, लेकिन फिर भी तुम बस एक झलक अपनी दिखला जाना।

0: गणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. धड़कन लखनऊ की।
2: आठ बजकर 25 मिनट और ठीक 6 सेकंड्स। आप हैं ज्योति के साथ आबशार में। दुनिया के झमेलों से बहुत दूर निकल जाएं, दुनिया के झमेलों से बहुत दूर निकल जाएं। तुम साथ निभाओ तो जरा दूर निकल जाएं।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: ये शाम का सुकून, ये हवाओं की नरमियां, ये शाम का सुकून, ये हवाओं की नरमियां, शायद किसी की याद का सलोना सोना बिखर गया।

तुमसे बिछड़ के हम भी कहाँ तक जिएंगे यार, तुमसे बिछड़ के हम भी कहाँ तक जिएंगे यार, लो आज ढल गई है ये शामे गम भी अब। कुछ शामे गुजर जाती हैं लेकिन उनका सुरूर कभी खत्म नहीं होता। गजलों का जो आबशार आज हमारी रूह में उतरा है, उसके ठहरने का वक्त आ गया है। जी हाँ, अब वक्त हो चला है कि हम इस महफिल से रुखसत हों। आबशार के इस मोड़ पर मैं आपसे विदा लेती हूँ, लेकिन जैसा कि आप जानते ही हैं कि एक छोटा सा ब्रेक होगा, हम जुड़ेंगे हमारी दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या के लिए और उसके बाद फिर मुलाकात होगी। तो जुड़े रहिए FM रेनबो से।

0: कौन हूँ मैं।
1: ऐसे ही सफर पर ले चलता है हमारा ये खास प्रोग्राम रजनीगंधा। हर रोज रात 10 से 12 बजे सिर्फ FM रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार

0: और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की कड़ी निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया।
1: पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया तथा विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
2: The topic for the Governing Council meeting.
3: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। है बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री निफियू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
4: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने ओमान तट पर जहाज MT सिटबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया।
3: We attach high importance to the welfare and well-being.
4: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
3: Peace and stability in the region.
2: नाविक कल्याण कोच समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को MT सेट्टेबेलो से 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर MT जलवीर में आग लग गई। इस

0: जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जल क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से ये जुड़ी तीसरी घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रविवार को फ्रांस और स्लोवाकिया के 5 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की ये यात्रा अत्यंत उपयोगी और व्यापक होगी। श्री जॉर्ज ने बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर श्री मोदी 52वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
1: The visit will provide an opportunity.
2: यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले विश्व नेताओं के साथ भारत और ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा। यह G7 शिखर सम्मेलन में भारत की 13वीं भागीदारी और प्रधानमंत्री मोदी की सम्मेलन में लगातार 7वीं भागीदारी होगी।
1: पार्टिसिपेशन एट द समिट।
0: श्री मोदी 14 जून से 16 जून तक स्लोवाकिया में रहेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का स्लोवाकिया का पहला दौरा होगा। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और ने बताया कि यह सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है और सुदृढ़ करेगी, किसानों को आगे बढ़ाएगी। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का वस्त्र बाजार वर्ष 2014-15 में लगभग 8,50,000 करोड़ रुपए का था, जो वर्तमान में बढ़कर 16,00,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कृषि के बाद वस्त्र उद्योग देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है।
3: एक्सपोर्ट भी लगभग 2,33,536 करोड़ का 10 साल में हुआ और मोदी जी के कार्यकाल में 3,25,339 करोड़ हुआ।
0: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में।
4: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्र आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
5: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है वो हमारा फैमिली 5 है जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं, जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
4: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। देश भर में अब तक लगभग 10,82,00,000 लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
6: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने लॉन्च करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
4: वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10,55,00,000 से अधिक महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई PM स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1,12,00,000 से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने

0: सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में आज रात 12:30 बजे से मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: पीवी सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बारिश का अनुमान व्यक्त किया है और कल शाम तक तेज हवाओं और ओलावृष्टि की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत और हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल में 17 जून तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल शाम तक बारिश होने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

छिलक रहे हैं, बादल आते हैं पर आंधी उड़ा ले जाती है। बच्चे तो छुट्टी का आनंद ले ही रहे हैं, लेकिन अब स्कूल खुलने का भी टाइम आ रहा है। बिल्कुल सही बात है, और छुट्टियां होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए ना, क्योंकि छुट्टियां आपको एकदम रिजुविनेटेड फील करा देती है, फिर से जैसे लगता है कि आपके अंदर फ्रेश फ्रेश ताकत आ जाती है। ओखला संगम विहार दिल्ली से रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता, सुंदरम गुप्ता, इन्होंने ईमेल किया है, लिखा है कि प्रोग्राम अच्छा लग रहा है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबू अंसारी जी ने डांस करते हुए एक GIF भेजा है, उन्होंने लिखा कि प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, झमझमौवा लग रहा है। ओके, मेरे दोस्तों के नाम शामिल कर लीजिए, कुलदीप गुप्ता एंड महेंद्र देपन एंड फैज अंसारी जी लीजिए, इन सब के नाम शामिल हो गए। राज कुमल कमल यादव ने भी ईमेल किया है सूरतगंज बाराबंकी से, इन्होंने लिखा है प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, खाना खा रहे हैं आप भी आ जाइए। अजी अगर मैं आ गई तो फिर प्रोग्राम कौन करेगा बताइए। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। एंड इंद्रपाल मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी तारीफ के लिए, इतनी सारी मोहब्बत के लिए। ग्राम अमृता मोवली सीतापुर से इंद्रपाल मिश्रा, आशा अवनीश, विनीश अक्षत गरिमा एंड रजनी। सुल्तान रजा साहब का भी ईमेल आया है, सुल्तान रजा, इकबाल रजा, सादिक रजा, मोनिश रजा, जीशान रजा, अफजल रजा, मम्मी पापा, पूरा रजा परिवार। और आगे लिखते हैं ये कि चांद और विनम्रता दोनों की खूबसूरती उनकी शांति में होती है, चांद कभी शो नहीं करता फिर भी पूरी रात रोशन देता है। मैंने मोस्टली यही देखा है दोस्त, कि जो चुपचाप काम करते रहते हैं एक्चुअली वही काम कर रहे होते हैं, बाकी के लोग, बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो काम कम करते हैं, हंगामा ज्यादा करते हैं, लेकिन ठीक है, हर तरह के लोग हैं। हर हरपुर मटकली जिला बरेली से शाहरुख नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीशी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी, डीजे प्रधान, इनका भी ईमेल है। और है ईमेल सुल्तान रजा साहब का तो मैंने पढ़ लिया, हाँ जी सुल्तान रजा साहब का मैंने ईमेल पढ़ लिया। रामराज रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से, रामराज, राजू भानु, शंकर भैया, पप्पू पासी, मनीष, नीरज, मधु बजरंगी काका, और इन्होंने कहा है कि प्रोग्राम इन्हें पसंद आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और भी ढेर सारे ईमेल्स हैं जो कि बढ़े जाएंगे, बिल्कुल बढ़े जाएंगे, लेकिन ये श्रेया जो है ना, श्रेया घोषाल, इनको और इंतजार कराना ठीक नहीं है, तो चलिए इनके साथ थोड़ा सा झूम लेते हैं।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।
3: अच्छा एक बात बताइए, ये जो मौसम होता है ना गर्मी वाला, इसमें घर में सबसे ज्यादा कलेश किस बात को लेकर होता है? सोचिए सोचिए, इंतजार कर रही हूँ आपके आंसर्स का। गर्मी का मौसम और घर में एक चीज की कलह है, वो तो होनी ही है, तो कौन सी है वो बात जिसकी वजह से घर घर में चलते हैं हाथ? मैम जी नमस्ते, इस समय मोनू भाई के साथ मैं भी प्रोग्राम सुन रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। सोनू परवाना मेल एक्सप्रेस अरिजीत सेठ। प्रमोद यादव ने लिखा है प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, गीत अच्छे प्ले कर रही हैं। प्रमोद यादव भन्नाना पुरवा नियर अफीम कोठी कानपुर। आलोक कुमार खरे का भी ईमेल है, मैडम जी नमस्ते, मंसूर नगर शाहबाद बिहानी हरदोई से ईमेल कर रहा हूँ, प्रोग्राम अच्छा चल रहा है जी, थैंक यू। रोशनी रावत ने लिखा है आप शार अच्छा लगा, आप क्या खाती हैं, आपकी आवाज ओहो। देखिए भाई रोशनी जी, एक अंग्रेजी की कहावत है, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, यानी कि खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है। उसी तरह मुझे लगता है कि अगर आपको किसी की भी आवाज अच्छी लगती है तो खूबसूरती दरअसल आपके कानों में है, है ना। थैंक यू सो मच दो, थैंक यू। गांव बमहना तहसील सफीपुर जिला उन्नाव से ये ईमेल कर रही हैं, और ओके वहां की रहने वाली हूँ, चंडीगढ़ से सुन रही हूँ, वहां बारिश होनी शुरू हो गई है, मौसम अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बबीता राव, नीलू शर्मा, गुलफशा दीदी, समा परवीन, शाजिया और साहिबा को राधे राधे बोल दीजिए। ऑल राइट, वैसे जो क्वेश्चन मैंने किया उसका आंसर नहीं आया अभी तक के, प्यार मोहब्बत की तारीफ के ढेर सारे ईमेल्स आप सबके मिल रहे हैं और मैं वाकई बहुत खुश हो रही हूँ। लेकिन मैंने आपसे पूछा कि गर्मी के दिनों में किस चीज को लेकर सबसे ज्यादा ढिशुम ढिशुम होती

0: होती है घरों में, सोचिए और जल्दी से मुझे बताइए। दीदी जी नमस्ते, बच्चों की छुट्टी और हम सब की भी है थोड़ी सी मटर गश्ती बच्चों के साथ। मैं तो कैरम बोर्ड खेलना पसंद करती हूँ इस वक्त, खड़ा खड़ा खड़ाक, जी हाँ ऐसे ही धुन में लिखा है आंचल अंकित सेठ ने राय बरेली से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सोनू जी। लेकिन मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला, मुझे लग रहा कुछ ज्यादा ही कठिन सवाल आप तक पहुंच गया। नेवर माइंड, मैं बता देती हूँ। हर घर में एक चीज को लेकर के तो ढिशुम ढिशुम ढाई ढाई होती ही है, एंड दैट इज फ्रिज में पानी की बोतलें भरने का नेशनल कलेश, वो तकरीबन हर घर में होता है। अक्सर घरों में ये नियम होता है कि भाई जो भी फ्रिज से ठंडी ठंडी बोतल निकालेगा वही से भरकर वापस निकले रख देगा। लेकिन लेकिन लेकिन इतने आसान नियम अगर आसानी से मान लिए जाए तो वो नियम कहाँ रहे, है ना। और इसीलिए तो इसी बात पर सबसे ज्यादा किचकिच होती है घरों के अंदर। कई बार तो मैंने ये भी देखा है कि अक्सर लोग बॉटल से पानी पीते हैं और थोड़ा सा सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं कि बाद में मम्मी कहें कि तुमने पानी क्यों नहीं भरा, तो कह सके भाई मैंने खत्म नहीं किया था, पानी बचा हुआ था बॉटल में। मतलब इतनी चालाकी, इतनी स्मार्टनेस, अगर इतनी स्मार्टनेस पढ़ाई में लगा लो बाबूजी तब तो आप पता नहीं कितनी बार टॉप कर जाओ, है ना। और ये जो आइस ट्रे वाला भी झंझट होता है। आइस निकालने में तो बड़ा मजा आता है लेकिन दोबारा पानी भर कर ट्रे लगाना ये भी एक नेशनल टेंशन की वजह बन जाता है। मोनू सेठ का ईमेल आया, लिख रहे हैं कि गर्मी के मौसम में कूलर पंखे के लिए झगड़े हो जाते हैं मेरे ख्याल से। जी हाँ, जिनके घर में कूलर होते हैं उनके यहाँ एक टेंशन की बात ये भी होती है कि मैं ही क्यों पानी भरूं। तो अगर आपके भी घर में यही खट्टे मीठे ठंडे गर्म ड्रामे चलते रहते हैं, नेवर माइंड, पूरी तरह से एंजॉय करिए। कोशिश करिए कि जितनी एनर्जी आप इस चीज में लगा रहे हैं कि पानी ना भरना पड़े उससे कम एनर्जी में काम ही निपटा दीजिए, आप भी खुश, मम्मी भी खुश और घर का माहौल भी फर्स्ट क्लास। लेकिन अगर मान लीजिए आज की डांट पड़ी चुकी है तो भी नेवर माइंड, आपके मूड को हम करते हैं थोड़ा सा फ्रेश सुना करके ये ढिंचक ढिंचक ढिंचक ट्रैक। पॉप टाइम चल रहा है ज्योति के साथ, 9:28 और 35 सेकेंड्स। आज सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: सुनो सुनो, स्टार्ट होने लग गया।

विनीत कुमार अर्थापुर रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर से इन्होंने ईमेल भेजा है। लिख रहे हैं कि प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। ओंकार सीतापुर से, सुरभि सीतापुर से, शमा परवीन अंसारी सीतापुर से, सीमा रावत राजाजीपुरम लखनऊ से, संतोष मौर्य हरदोई से, ममता हरदोई से, आजाद सिमरी से, रिंकी पिंकी रायबरेली से, संजय अतरौली संडीला से। बापरे, मतलब इतने सारे डेडिकेशन इन्होंने भेजे हैं। दिग्दर्शन कौर गौड़ जी का भी ईमेल है, मेरठ कैंट से इन्होंने भेजा है ईमेल। लिख रहे हैं आज एकादशी का पावन दिन है। ओके जी, ओके जी, ओके। आगे बढ़ते, रविंदर सिंह जी का ईमेल आया है। यदविंदर सिंह, सुखविंदर सिंह, रविंदर सिंह, मनजीत सिंह, गुरजोत सिंह, कोटली काला पंजाब से, रोशनी रावत। रोशनी रावत लिख रही है, मेरे घर में जो भी फ्रिज से पानी लेकर जाता है उसको बोला जाता है पानी लेते भी जाना, फ्रिज में लगा। ओके, मतलब ये है एक बहुत बड़ी टेंशन की चीज है ये घर घर। नीलू शर्मा रूपपुर चंदेला से लिख रही हैं, आज अलका दीदी प्रोग्राम कर रही थी तो मैं आपको याद कर रही थी, मेरी भी कॉल लग जाती तो आपको डेडिकेट करती, दो बार बेल गई, कॉल रिसीव नहीं हुई, सभी दोस्तों को नमस्कार बोल दीजिए। नेवर माइंड नीलू जी, आप मुझे दिल से पुकार रही थी तभी तो मैं चली आई। वो कहते ना, तुमने ही पुकारा और हम चले आए। सारा पीयू, रोशनी, बविता, स्नेहा, सोनी, मनु वंदना, यासिर भैया, गुलफशा जी जी, कौसर पूर्णिमा, इन सबको ये नमस्कार बोलना चाह रही हैं। होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, प्रोग्राम पॉप टाइम के सॉन्ग बेहतरीन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। अरविंद कुमार दुबे, ग्राम धर्मदेवा, जिला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश से। शहद की मिठास वाली ज्योति मैम की आवाज में पूछ रहा हूँ, इस काबिलियत का क्या राज है? मैंने कहा ना, कोई काबिलियत नहीं है, ये तो आपकी जरा नवाजी है, ये तो आपका बड़ा दिल है जो कि आपको मेरी आवाज पसंद आ रही है, थैंक यू। आगे लिख रहे हैं, तेरे खुब मुझे इतने रास आने लगे, हकीकत कहूँ हकीकत से हम दूर जाने लगे, भाई वाह। सारी प्रोग्राम्स पसंद आते हैं, अरविंद दीपा, श्याम कुमारी, गोविंद प्रतिमा प्रतिष्ठा, तन्वी तिवारी, ग्राम धर्मदेवा, जिला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश से इन्होंने ईमेल भेजा है। तो चलिए इसको आप तक पहुंचाते हैं।

से वक्त गुजर रहा है। ढेर सारे ईमेल्स मेरे सामने और इससे पहले कि मैं ईमेल पढूं, एक बार दूरा से डिस्कस करना चाहूंगी। गर्मी की बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि अच्छी नहीं लगती है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। उनमें से टॉप लिस्ट में कौन सी चीजें आती हैं? टॉप लिस्ट में वो चीजें आती है जिन्हें हम कहते हैं व्हीकल्स। होता क्या है कि इस भीषण गर्मी व्हीलर पर निकलता है, लड़कियां पूरे चेहरे पर स्कार्फ लपेट लेती हैं, कुछ इस तरीके से कि सिर्फ उनकी आंखें दिखती है। बिल्कुल मतलब हॉलीवुड के किसी बैंक रॉबर वाला लुक आता है कि उनके सर पर ढेर सारा फ्री का जेल लगा हुआ है या फिर शायद नूडल्स का पैकेट गिर गया हो। और सबसे बड़ा टेंशन का माहौल कब होता है बताइए? जब आपको अपनी गाड़ी पार्क करनी होती है। गाड़ी पार्क करते टाइम हम सभी सिर्फ एक ही चीज ढूंढते हैं, वो क्या है? कोई भी कितना भी अच्छा उस क्यों ना हो, बस हमारी ढिशुम ढिशुम भी हो सकती है इस बात पर कि हमको छांव में गाड़ी खड़ा करने दो। और भाई सिर्फ टू व्हीलर की ही क्यों बात करी जाए, अगर हम फोर व्हीलर्स की भी बात करें, कितने भाई कुछ ऐसा ही महसूस होता है जैसे कि आप किसी तंदूर के अंदर बैठे हुए हैं, किसी भट्टी के पास बैठे हुए हैं। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि ये सारी बातें मैं कह क्यों रही हूं। ये सारी भी कहने की एक खास वजह है। मैंने अक्सर ये देखा है कि हम तो एसी गाड़ी में बैठे होते हैं या फिर अगर हमारे पास टू व्हीलर है तब भी हम क्वाइट कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन ऐसे में अगर हमारे सामने कोई रिक्शे वाले भैया जी, अंकल जी, इसी तपते हुए 44-43 डिग्री की गर्मी में गाड़ी चला रहे होते हैं तो हम उन्हें देख करके काफी अनॉयड, काफी इरिटेटेड होते हैं। हम ये सोचते हैं कि जल्दी से किनारे क्यों नहीं हो जाते, हम भूल जाते हैं पर है। लेकिन ये इसी रूप में पसीने से तरबतर होकर अपने परिवार का पेट पालने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। ऐसे में हमारा लगातार हॉन्किंग करना, हॉर्न बजाना उनकी रफ्तार नहीं बढ़ाता लेकिन उनका हौसला तोड़ जरूर देता है। तो एक छोटी सी बात जरूर कहना चाहूंगी कि अगली बार जब कभी भी आपके सामने कोई ठेले वाले भैया, कोई रिक्शे वाले भैया आ रहे हों तो प्लीज थोड़ा सा सब्र रखिएगा, क्योंकि रास्ते सबके हैं। अल्टीमेटली कोई भी क्यों, तो ऐसे में थोड़ा सा थॉटफुल होना, थोड़ा सा कंसिडरेट होना शायद हम सबके लिए इस दुनिया को थोड़ा और बेहतर करने में मदद ही करेगा, है ना?

9:44 और ठीक 3 सेकंड्स आप हैं ज्योति के साथ इंटर प्रोग्राम पॉप टाइम एंड पॉप टाइम मीन्स फन टाइम मस्ती टाइम धमाल टाइम। मुनेश कुमार राज लिख रहे हैं, गर्मी ने कर दी अपनी हदें पार, कोई पानी के लिए झगड़े, कोई कहे पंखा इधर घुमाओ यार। सही बात, बिल्कुल सही बात। मोनू से जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके ईमेल के लिए। इन्होंने लिखा कि एक रिक्शे वाला सामान लेकर खड़ा हो गया कि गाड़ी निकल जाए, लेकिन लेकिन जो निकल रहे थे उन्होंने कहा रिक्शा पीछे करो, तो रिक्शा वाले ने कहा भैया बाबूजी थोड़ा सा किनारे कर लो, हमें निकल जाए, सामान लाद रखा है। तो चार पहिया वाले भैया नाराज हो गए। क्या ये बर्ताव सही है? गुड क्वेश्चन, ये हम सबको सोचना होगा कि क्या ये बर्ताव सही है। गर्मी हम सभी को लगती है ना, और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हम सबको ऐसा लगता है कि सिर्फ हमारी ही लाइफ में मुश्किलें हैं, बाकी सबकी लाइफ ईजी है, लेकिन थोड़ा सा सोच करके किसी दूसरे के शूज में स्टेप करके ये किया है। आलमबाग लखनऊ से, ये बेसिकली हैं रांची झारखंड से, लिख रही हैं कि मेरे दो बच्चे हैं काशु और जुगनू, समर वेकेशन में दोनों बेड की भारी मैट्रेस को बेड से लटकाकर मैट्रेस का कवर हटाकर स्लाइड करते हैं और थोड़ा बहुत कैरम अपने हिसाब से खेलते हैं। ओह माय गॉड, कितना क्रिएटिव, मतलब मैट्रेस को कवर हटा करके लटका करके उसमें झूला झूलते, क्या बात है भाई। मतलब मुझे तो बड़ा मजेदार लग रहा है। अगर आप ये एक्सपेक्ट करें थे कि मैं कहूंगी बच्चों से कि नो नो नो नो, नहीं बिल्कुल नहीं कहूंगी, क्योंकि मुझे ये सोच करके अच्छा लग रहा है कि आज के टाइम भी आपके बच्चे इस तरह से खेल खेल रहे हैं, ऐसे टाइम जबकि बच्चे जैसे ही पैदा होते हैं उनके हाथ में मोबाइल दे दिया जाता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी ढेर सारी तारीफ के लिए। गीता सेठ, बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, थोड़ा बहुत मामियों को भी आराम मिल जाता है, मम्मियों को आराम मिल जाता है, नहीं जी मामियों का तो काम बढ़ जाता है, लेकिन हाँ मम्मियों को आराम मिल जाता है, दैट्स करेक्ट, क्योंकि वो सुबह की भाग दौड़ से थोड़ी मोहलत पा लेती है। और हाँ फ्रिज में जो पानी वाली बात आपने कही, बार बार पानी का बुलावे पर गुस्सा तो आता है थोड़ा बहुत। देखिए ऐसे ही थोड़ी ना मैंने कहा, काफी सोच करके रिसर्च करने के बाद बोला था। नीलू शर्मा कह रही है कि दीदी यही आंसर मैं बताने वाली थी लेकिन आपने बता दिया, मेरे घर में मेरा भाई मेरे पापा सभी लोग फ्रिज में

पानी लगा देते और साथ साथ खाना भी बनवा लेते, बर्तन में सर्व भी करा लेते. That's very sweet. मिलजुल कर काम करो तो काम महसूस ही नहीं होता. लेकिन जब कभी किसी एक के ऊपर काम पड़ जाता तो वहीं पर तो सारी प्रॉब्लम हो जाती है. विवेक कश्यप जी, थैंक यू. सिसैया दरियाना पोस्ट कठुरा जिला सीतापुर से इन्होंने ईमेल किया है और कह रहे हैं ओके, जो कुछ आपने कहा बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी फरमाइश पूरी करने की कोशिश की जाएगी. हालांकि अब वक्त बहुत नहीं बचा है. गीता से जितेंद्र नामदेव, जितेंद्र नामदेव, बबलू नामदेव, अंजू नामदेव, खनक नामदेव, आरोही नामदेव, सौम्या नामदेव, खन्नौधी जिला शहडोल से लिख रहे हैं कि आपकी आवाज़ के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे जी. थैंक यू. विजयपाल यादव जी, बिल्कुल नहीं भूली हूँ आपका ईमेल, मैंने पढ़ा है और ये भी बोला था पहले भी कि आबशार आपको पसंद आया. ऑफकोर्स मैंने आपका ईमेल पढ़ा था, आपने मिस कर दिया. वकील अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया है. लिख रहे हैं हमारे यहाँ कल शाम को बारिश होने से मौसम अच्छा हो गया है. वकील अहमद मंसूरी, कटका हथूरी जिला सीतापुर, साहिबा अंसारी, शाजिया अंसारी, शमा परवीन, रिंकी पिंकी, महक अंसारी, गुलफशा सिद्दीकी, अहमद नवाब, इन सब ने मिलजुल कर एक साथ ईमेल किया है. तो जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. बस यूं ही जुड़े रहिए हमारे साथ और बोलते रहिए तारा रारा. क्योंकि जिंदगी के जो गम हैं, जो तकलीफें हैं, वो रोने से कम नहीं होते. खुशियों की कोई वैल्यू ही ना होती अगर हमारी जिंदगी में थोड़े बहुत गम ना होते. तभी तो कहती हूँ, क्यों कहना हर बात पर मेरा तुम्हारा, जस्ट बोलो मिलजुल कर तारा रारा.

9:53 हो चुके हैं। ढेर सारी ईमेल्स मेरे सामने अभी भी है। मनीष कुमार राज बानपुर अरवा जिला लखीमपुर खीरी। ज्योति जी ईमेल को पूरा पढ़ने की कृपा करें। ज्योति मैम जी सादर प्रणाम आपका। ओके जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ईमेल मैंने पहले भी पढ़ा है। ओके इसका मतलब आप ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। चलेश कुमार नीलू शर्मा रूपुर चंदेला। ज्योति दीदी पॉप टाइम कार्यक्रम अच्छा लगा, गाने भी अच्छे सुनाए। वादा करती हूँ रात 12 बजे तक आपका साथ निभाऊंगी, बस गाने अच्छे अच्छे सुनाती रहना। भाई कोशिश तो मेरी पूरी होती है नीलू जी। आंचल सेठ लिख रहे हैं दिलेर मेहंदी हमारे फेवरेट सिंगर। ओके दिलेर मेहंदी आपके फेवरेट सिंगर हैं। गाने की चॉइस लाजवाब। इस समय मायके में हूँ और भैया के साथ आपका प्रोग्राम सुन रही हूँ। ओके राजेश कुमार विद्यार्थी लिख रहे हैं मोदीपुरम मेरठ में। राजेश विद्यार्थी जी ओके बादल बहुत जबरदस्त छाए हुए हैं, बारिश हो रही है, तो भाई थोड़े से बादल इधर भी भेज दीजिए, आपका क्या चला जाएगा। रेणु देवी जी लिख रही हैं एफएम के सभी प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं। विलेज हसनपुर और रास उन्नाव से। तो जी मुझे ऐसा लगता नहीं कि मैंने कोई भी ईमेल छोड़ा है। जी नहीं बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है, पूरे पूरे एफर्ट्स लिए हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, आपको सुनाते हैं वो गाना जो इस वक्त यंगस्टर्स की चॉइस है। जी हाँ करण औजला का सॉफ्टली।

तो जी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए टाइम हो गया है कि प्रोग्राम को वाइंड अप किया जाए। शिव प्रकार त्योजा खागा फतेहपुर से, इनको प्रोग्राम पसंद आ रहा है एंड एंड एंड अब मुझे ना चाहते हुए भी प्रोग्राम को वाइंड अप करना ही होगा क्योंकि न्यूज ब्रेक के उस पार मिलना है आपसे रजनीगंधा में। हम बस इतना ही कहूंगी कि हाँ गर्मी है ऑफकोर्स है, लेकिन ऐसे में अगर हम सब वो वाला कहना ना साथ ही हाथ बढ़ाना वो वाला काम करें जो किचन में काम कर रहा है उसके लिए थैंकफुल महसूस करें, जिसके पास सुविधाएं नहीं है उसकी मदद करने की कोशिश करें, तो ये गर्मी शायद हम सबके लिए थोड़ी कम हो जाएगी। ऑन दिस नोट अब ज्योति कहती है आपसे टाटा बाय बाय फ्रॉम दिस प्रोग्राम। बस थोड़ी देर के बाद न्यूज ब्रेक और न्यूज ब्रेक के उस पर रजनीगंधा, सो स्टे ट्यून्ड।

नमस्कार, सुनिए मुख्य समाचार। केंद्र सरकार के गौरवशाली 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर योगी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों को आम जन तक पहुंचाने के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर कल शाम वाराणसी पहुंच रहे हैं। वर्ष 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी और 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बागडोर संभालने के बाद प्रदेश में विकास की गति काफी तेज हो गई। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लखनऊ में कहा है कि जनता एक बार फिर अखिलेश यादव को ठुकराएगी। यूपी की जनता उनको सीरियस नहीं लेती। यूपी की जनता ना तो अखिलेश यादव के ट्वीट को गंभीरता से लेती है और ना ही उन पर विश्वास करती है। पीयूष गोयल मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर लखनऊ महानगर भाजपा की ओर से कराए गए प्रबुद्ध जन विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में पहुंचे। यहां उनके साथ मेयर सुषमा खरकवाल, भाजपा नेता नीरज सिंह, महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी सहित कई नेता मौजूद रहे। प्रदेश में राजस्व विभाग को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से लखनऊ के एनेक्सी भवन में राजस्व विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश के राज्य मंत्री सुरेंद्र दिलेर ने की। इस दौरान विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों एवं विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। राज्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभागीय कार्यों में पारदर्शिता, गुणवत्ता एवं समयबद्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी लाएं। बाराबंकी में मॉनसून और संभावित बाढ़ संकट को देखते हुए रामसनेही घाट तहसील प्रशासन ने आज कोयलावर खेरी तटबंध पर व्यापक आपदा प्रबंधन मॉक ड्रिल का आयोजन किया। अभ्यास के दौरान बाढ़ जैसी आपात परिस्थितियों में राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारियों को परखा गया। मॉक ड्रिल में नदी में नाव पलटने, लोगों के डूबने, पशुओं के पानी में फंसने तथा बाढ़ से उत्पन्न अन्य आपात स्थितियों का वास्तविक प्रदर्शन किया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन अब यहीं समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकेंगे रात्रि 11 बजे। जुड़े रहिए FM रेनबो से।

0: कौन हूँ मैं।
1: ऐसे ही सफर पर ले चलता है हमारा ये खास प्रोग्राम रजनीगंधा। रजनीगंधा हर रोज रात 10 से 12 बजे सिर्फ FM रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

अजब शह है ये महकना भी, अजब शह है ये महकना भी मोहब्बत की गलियों में। चमन में फूल खिलते हैं तो खुशबू दिल में होती है। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। रात की 10:05 और ठीक 27 सेकेंड्स। दिन भर की तमाम मसरूफियतों और शोर को पीछे छोड़कर अब ये शहर सुकून की मखमली चादर ओढ़ रहा है। तो आज की इस महकती रात को बनाते हैं कुछ और खास। बस जुड़े रहिएगा मेरे साथ रजनी गंधा में।

ये दिल की बातें, दिल की पुकार कितनी अजीब होती है ना। दुनिया लाख पहरे बिठाए, कितना भी समझाए, लेकिन अगर दिल किसी की ओर बढ़ने के लिए ठान लेता है तो बस किसी की नहीं सुनता। अजीम शायर असर लखनवी साहब ने इसी बात पर कहा है, मोहब्बत हो जाती है, मोहब्बत की नहीं जाती, ये शोला खुद भड़क उठता है, भड़काया नहीं जाता। और जब दिल में ये शमा जलती है ना, तो इंसान सब कुछ भूलकर बस एक मुसाफिर की तरह निकल पड़ता है, पुकारते हुए अपने दिल के सुकून को, अपनी मोहब्बत को। तो आइए ओपी नैयर साहब की इस जादुई धुन पर

मोहब्बत की इसी पुकार को थोड़े से अलग अंदाज में अब पहुंचाने वाली हूं 1964 की फिल्म राजकुमार के इस गीत के जरिए। पर्दे पर थे साधना देवदास, शिव दासानी और शम्मी कपूर, आवाज लता मंगेशकर की।

ये खूबसूरत गीत था 1964 की फिल्म राजकुमार से, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, पर्दे पर थी साधना। जी हाँ, वही साधना जिनकी वजह से साधना कट हेयर स्टाइल पॉपुलर हुआ था, और उन्होंने कुछ इस तरह से उन बैंग्स को, उस स्टाइल को फैशन में लाया कि आज भी बहुत शौक से इस हेयर स्टाइल को लड़कियां अपनाती हैं। वैसे कि आपको पता है कि ये हेयर स्टाइल जिसने पूरे देश की लड़कियों को दीवाना बना दिया था, दरअसल एक मजबूरी की वजह से शुरू हुआ था। कहा यह जाता है कि फिल्म लव इन शिमला के टाइम डायरेक्टर आर के नैयर

एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे साधना के ब्रॉड फोरहेड के साथ। जी हाँ, काफी चौड़ा माथा साधना का हुआ करता था, जो कि काफी खूबसूरत लगता है, लेकिन उन्हें लगा कि कुछ स्टाइलिश किया जाए। तो उन्होंने हॉलीवुड की अभिनेत्री ऑड्रे हेपबर्न के स्टाइल से प्रेरित होकर साधना जी के बाल माथे पर बिखेर दिए। साधना खूबसूरत तो थी, और बस इस छोटे से एक्सपेरिमेंट ने उन्हें बना दिया इंडियन सिनेमा का एक बहुत बड़ा फैशन आइकन। जी हाँ, एक बहुत बड़ा आइकॉनिक फैशन ट्रेंड शुरू हुआ इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से। चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं उन्हीं की फिल्म वो कौन थी से ये खूबसूरत गाना। मदन मोहन साहब का ये कालजयी गीत अरसा बीत गया, लेकिन इसका जादू, इसकी कशिश आज भी वैसी की वैसी ही है। तो चलिए बातों को यहीं पर रोकते हैं और डूब जाते हैं इस खूबसूरत गाने के जादू में एक साथ।

0: सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: कहते हैं संगीत में वो जादू होता है जो हर तकलीफ हर दर्द भुला देता है। तो चलिए हम भी हर तरह का दर्द, हर तरह की परेशानी भुलाकर कहीं दूर निकल जाते हैं रजनीगंधा के इस मीठे मदमाते मदहोश करते सफर में।

कभी कभी किसी का होना उसका वजूद ही जिंदगी को बदल देता है, एक अलग सा सुकून ला देता है। कोई ऐसा इंसान जिसके पास होने भर से दिल की सारी बेचैनी पल भर में थम जाती है और ऐसा लगता है कि अब तो सब ठीक हो ही जाएगा। किसी शायर ने इसी मखमली एहसास को क्या खूब लिखा है, तुम आए हो तो जैसे आसपास छांव सी हो गई, वरना ये धूप तो सीधे रूह को झुलसा रही थी। और वाकई जब वो खास शख्स साथ होता है ना, तो दिल का चैन और सुकून लौट आता है। आइए 70 के दशक की इस टाइमलेस मेलोडी में डूबते हैं, जहां पंचमदा की धुन पर किशोर दा अपने दिल के सुकून को, चैन को पुकार रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं।

तुम्हारा नाम लिया था, तुम्हारा नाम लिया था कभी मोहब्बत से, मिठास उसकी अभी तक मेरी ज़ुबान में है।

10:46 और ये लीजिए 10:47 और 2 सेकंड्स हो गए। आप हैं

ज्योति के साथ सुनते हुए कुछ ऐसे गाने जो कभी हो ही नहीं सकते पुराने। प्रोग्राम रजनी गंधा में

0: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: अगला गीत आपको सुनाने वाली हूँ 1981 में रिलीज हुई फिल्म कालिया से। कालिया में खूबसूरत जोड़ी थी अमिताभ बच्चन और परवीन बाबी की। दोस्तों, परवीन बाबी एक ऐसा नाम है जिन्हें पहली बार मशहूर अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन टाइम, जी हां टाइम मैगजीन ने अपने मुख्य कवर पेज पर जगह दी थी। वो पहली इंडियन एक्ट्रेस थी जिन्हें टाइम मैगजीन ने अपने कवर पर सजाया था। जुलाई 1976 का वो कवर पेज इस बात का गवाह था कि इंडियन सिनेमा की गूंज सात समंदर पार तक पहुंच चुकी है। परवीन बाबी यानी एक ऐसा नाम जिसने उस वक्त जबकि अभिनेत्रियां पारंपरिक वेशभूषा, पारंपरिक इमेज के साथ ही हीरोइन बनती थी, उस वक्त उन्होंने मॉडर्न और बेबाक किरदारों को जी कर दिखाया और बदलते हुए नए दौर का चेहरा बनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं उनकी सुपर डुपर हिट फिल्म कालिया का ये ब्यूटीफुल लव सॉन्ग।

तो भाई साथ यूं ही बनाए रखिएगा। रजनीगंधा के फर्स्ट पार्ट को वाइंड अप करने का टाइम भले ही आ गया है, लेकिन न्यूज ब्रेक के बाद फिर हमें साथ रहना है पूरे एक घंटे और। सो स्टे ट्यून्ड।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल शामिल हुए। बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकसित और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान